प्रथम सर्वत कालसा जी की अरदास है जी, सर्वत कालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चत आवे चत आवन का सबका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रे आयतन, देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीतन, श्री साहेब जी सहाय खालस जी के बोल बल बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे सिखा नू सिक्की दान केस दान रहत दान दबे कदान विसाह दान प्रसादान दान सरदान नाम दान, श्री अमृत सर साहेब जी दे दर्शन इशनान, चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, कर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो, श्री ननकाना साहेब अते होर गुरुद्वारे गुरुधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान, खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे माण, नेताणिया दे ताण, ले उटिया दी ओट, धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी, आप जी दे पावन पवित्र स्थान, सच खंड श्री हर मंदिर साहिब जी विखे, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास, भुल चुक माफ करनी सच्चे पातशाह जिया, जना जना गुरमुखा प्रेमिया वालों कदाहा प्रसाद भेटा कीता गया है, तना दी अरदास समूह संगत अते पहलिया दी अरदास, सतगुरु जिया सर्वत साध संगत नू अपने दारों करों सिखी सिद्क भरोसा नाम दान बख्शना, शुभ पावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हाजूर, रहा प्रसाद दी देग हाजर है दार परवाना।

प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शा सुख होवे नाम चित आवे सिखां पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

Thank you.

झूठा मुख वसाए लेकिन तो ही खुआर सोचे ना कि बंज पिंडा तो सोचे सही

0: जित हरे आ सब कोई सोत चौंका रखिया सुतक पवै रसोए नानक सुत के ना उतरे ज्ञानों का रह तुहे महला पहला
1: का सुत लोभ है जेवा सुत कूड़ अखी सुतक वेखना परतरिया परतन रूप कन्नी सुत कन पहला तबारी खाए।

पंड पाली है पंड होए बंदान सो क्यों मंदा किया जित मेरा जान पंडो पंड उपजाए पंडा बाजना कोई दान पंडा बाजा को सच्चा सोए जित मुखसरा सलाही है भागरती चार नानक तिमको जले चित सच्चे दरबार।

0: पायो फीका मुर्खा किए आना ले सजाए महला पहला
1: झूठे पैज बार दुनिया अंदर फैल हर सर्दी से जे ना वे उतरे ना ही मैं जिन पट अंदर बार गुदड़ ए पले संसार किन्ने लगा रब सेती देखना विचार
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि
4: मैं खुदा शीशा साफ कीता तो मैं नजर आया ते जब मैं साफ कीता तो तू नजर आया चल बंदिया मैं नु साफ करके उस अल्लाह सोने दे लर लगिए आप प्रोग्राम दा आगाज कर दिया सैदा बेगम दे गाए इस सुफियाना कलाम दे नाल कदी आमिल बिरहू

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोवाट से तंहिं सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन योर मोबाइल एप एंड डिफरेंट डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, तफ़सील कुझु हिन तरह आहिनि। तव्हां हमेशह भगत कराम साहब खे ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदा, पोइ कुझु

डॉक्टर भगत करम साहब जी सदाबहार आवास में कलाम जी रहे आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आए हर पेश आए तबसरो लक्समबर्ग सरकार जे इकोनॉमी एसएमई तवानाई ए सैर सफर जो वजीर लेक्स डेलेस इन वक्त भारत यात्रा ते आए ते भारत जे साइंस ए टेक्नोलॉजी सूबे वजीर इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह से सूमर डे मुलाकात कई ए मुल्क में सहकार के मुख्य क्षेत्र के गोल्ड की आच डी खास कर स्पेस क्षेत्र में गडोग उभरद टेक्नोलॉजीज ए लाइफ साइंसिस में आछल मैकेनिज्म तहत सहकार जहा नवा क्षेत्र गोल्या ते में अची तो वे हथरादू जहन मंदी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम टेक्नोलॉजीज जहित मटेरियल्स ए लाइफ साइंसिस जैसा बई धुरी जनवरी 2027 में लक्समबर्ग के सूबाई भारत यात्रा का अवल ही खास क्षेत्र के गोले वा ए खास इनपुट्स तैयार कर वजीर मंझ थे बितरफी गाल में बाहमी गाल बोल में मौजूदा भारत लक्समबर्ग सहकार खास कर स्पेस में इन अलावा उभर क्षेत्र में तैयार बहस बहसो कर इन सब का अलावा इदाराई ए तजारती सहकार में वजन के वधिक गोल्ण तंखा सवाए आछल सूबाई यात्रा की तैयारी बाबत पिण गाल कई व्यू डॉक्टर जितेंद्र सिंह चाह तो भारत लक्समबर्ग लागापन में पुरजोश ए मजबूत बुनियाद असा के सहकार के नवन ए उन्हें क्षेत्र में वही वन चंगी तो बुनियाद मैसर कराए रो

ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे लक्समबर्ग सानी से 2020 में थे वर्चुअल गठियन जो पिण हवा डनो वजीरी बेतरफी भाईवारी में स्पेस एक अहम थंबो है जैमें भारत लक्समबर्ग अग में एक सुलबुझे चिठे से सही कई है तह तहत आउटर स्पेस में आउटर स्पेस के माना भरे कमन लाय कताब आन लाय सहकार सही कई हुई जैसे फरवरी 2022 में सही कई हुई भाई बार ये एक तजारती डायमेंशन के बरपा कर स्पेस ए लक्समबर्ग स्पेस एजेंसी अग में बिन मुल्क के स्पेस इकोसिस्टम मंज वधिक मशगूली के हथी रही रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत के वसीय स्पेस रोडमैप के वंडो है तें में अची थो वे नेविगेशन ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट खास करे वेझे अरसे लाइ तंहिंजी अहमियत इन खां अलावा मुल्क जी लंबे अरसे जी दौरानदेशी कि भारतीय स्पेस स्टेशन खे 2035 ताईं बरपा करणु इन खां अलावा चंड ते 2040 ताईं हिकु इंसान खे लैंड करायो वञे हुन चयो त भारत जे स्पेस प्रोग्राम में खांगी खेत्र जे वधीक हिसेदारी सां शुमारी सां पिण आलमी ए तजारती भाईवारी जा नवा इम्कान वज खुली रहिया आहिनि ॿिन्ही धुरियुनि लक्समबर्ग स्पेस इंडस्ट्री जो भारत जे तेज़ रफ़्तार ते वधंदड़ खांगी स्पेस इकोसिस्टम में वधीक मशगूली जे वजन ते पैसो पैसो कयो सहकार जा अहम खेत्र आहिनि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐं हाई परफॉर्मेंस कॉपरेटिव टेक्नोलॉजीज़ ॿिन्ही धुरियुनि भारत ऐं लक्समबर्ग कंपनियुनि खे इन ॾिस में पाण में ॻंढण ते ॻाल्हियूं कयूं सहकार लाइ कॉन्डम टेक्नोलॉजीस ते पिण ॻाल्हियूं कयूं वयूं डॉक्टर सिंह चयो त कॉन्डम टेक्नोलॉजीस घणनि खेत्रनि में अप्लाई करे सघिबो आहे तंहिंमें सिहत सेवा सुरक्षा ऐं स्पेस पिण शुमार आहे लाइफ साइंस ऐं बायो टेक्नोलॉजी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ॿुधायो त भारत जी बायो E3 पॉलिसी जेका आहे ऐं मुल्क जो जेको ख़ासि ध्यानु आहे बायो टेक्नोलॉजी आधारित इकोनॉमिक ऐं साइंटिफिक डेवलपमेंट ते हुन चयो त हिन ॾिस में लक्समबर्ग इदारनि सां सहकार ॾेई सघिजे थो जेको लक्समबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड लक्समबर्ग सेंटर फॉर सिस्टम्स बायोमेडिसिन पंहिंजे हिकु करां मुफ़्त फ़ाइदा रखनि था न्यूरो डिजनरेटिव डिज़ीज़िस ऐं एल्ज़ाइमर बीमारी बोरिंग में आछल सूबाई यात्रा लक्समबर्ग जी भारत ॾांहुं जनवरी 2027 तंहिं ते पिण ॻाल्हियूं कयूं वयूं जंहिंमें बाहिमी ताउन खे अञा वधीक ज़ोर वठायो वेंदो मौजूदा गॾिजाणी में भारत लक्समबर्ग सहकार बाबति ख़बर पए थी जेको स्पेस भाईवारी में आहे इन खां अलावा AI क्वांटम टेक्नोलॉजीस लाइफ साइंस एडवांस टेक्नोलॉजीस ऐं तजारती वजहनि ते पिण रोशनी विझे थो तबसरो ॿुधी रहिया हुआ

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: फिल्म नगमा आगाज़ कर रहा हूं महेंद्र कपूर जी आवाज़ सां, फिल्म आहे संत कंवरराम।

प्रोफेसर विनोद महबुद्री, आकाशवाणी जी संदीसर साइंस पेशन, खास खास खबरों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूपीआई एंड सभी रेमिटेंस कॉस्ट के आलमी फैलाव के अगते वधा रहा है। नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट के साइलेंस से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ए रशिया के सदर व्लादिमीर पुटिन मंज रशिया यूक्रेन तकरार इन अलावा बेन घणी मुद्दों से गाल। यूक्रेन वार के खत्म करने लाइ रशिया भारत के अमन कोशिश के हिमायत डी है। मॉस्को इन मुद्दे से नई दिल्ली के बेहक से यकराय रखे तो। हाथीज सऊदी अरेबिया में घणी तेल के सहूलत से हमला कयान, तेमें 73 मानू जख्मी थी पाया। अहमदाबाद में थे वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज में भारत के 5 बिला मिले, तेमें 2 सोने जा बिल आया।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे वरी अव्हां सां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो यानी की भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 बजे तेसि ताईं ॾींदा इजाज़त सदाई कर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के क्षेत्र में जिस गतिविधि की कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी वो अब रोजमर्रा की वास्तविक बन गई है। छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कुख्यात नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के

0: मैडम प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रभाकर और राजे कांगे पर कुल मिलाकर लगभग 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोर्वोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रूपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुल 12,000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं को 6,000 रूपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। बढ़ा हुआ मानदेय सितम्बर से लागू होगा और इसका भुगतान अक्टूबर में किया जायेगा। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमेरिकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात भी शामिल है। अमरीका के लगभग 700 उत्पादों पर 15 से 50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आकर मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल हैं। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉ मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरी रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सामालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सामालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की 6वीं वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। 11वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसिस टियाफो ने 5 सेटों के रोमांचक मैच में अपने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशलिनसन को हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साहिरा मुज्तबा। Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, or UPI, is the undisputed champion of this success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said this is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI.
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: रीटरेटिंग हिज कोर फिलोसफी ऑफ टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, the Prime Minister praised UPI as the ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. Defence Minister Rajnath Singh has said that India will always stand firmly with Sri Lanka in times of crisis, underlining that the relationship between the two countries is based on shared history, culture and faith. Mr. Singh arrived in Colombo yesterday on his maiden 3-day visit to hold talks with Sri Lanka's top leadership. He made the remarks during an interaction with the Indian diaspora.

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आपने सुना नितिन सवनेरी के गाए भजन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंदु प्रस्थ चैनल है। 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और इस प्यारे से गुड मॉर्निंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी होस्ट और दोस्त रिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

रात का सन्नाटा टूटा है, अब सुरों का सवेरा है। मौसम भी बड़ा आशिकाना और बेहद सुनहरा है। उठिए और मुस्कुराइए अपने गमों को पीछे छोड़कर, क्योंकि आज फिर एक नया सवेरा है।

सूरज की किरणें खिड़की से मुस्कुराई है, हवाएं अपने साथ एक नई धुन लेकर आई है। उठकर देखिए सुबह का नजारा, हवा भी ठंडी है और मौसम है प्यारा।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, अपने सपनों को हकीकत में बदलने की बात है। बहानों को पीछे छोड़िए और उठ खड़े हो जाइए, क्योंकि मंजिल पाना अब आपके हाथ है।

बड़ी मंजिल के मुसाफिर दिल छोटा नहीं करते, जो मेहनत करते हैं वो हासिल कर लेते हैं। वक्त और हौसलों के दम पर हर मुश्किल आसान होती है, मेहनत जारी रखने पर एक दिन फतेह उनके ही नाम होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को है, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलिंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेनदेन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।

0: हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
1: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
0: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरेन रेटिंग्स भी है।
1: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेस का सामना कर रही है उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
1: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उपरक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रदान करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल है। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवम मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi, from 12th to 13th September 2000.

0: for resilience, innovation, cooperation, and sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी युद्ध पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमरीका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर यह शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
2: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमेरिकी आयात शामिल है। अमेरिका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15% से 50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिवीजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75 से 80 हजार वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इसे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इसे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
4: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2000 रूपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मॉनसून चक्र को

0: स्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबलेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबलेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगर राज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आर्थिक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देशभर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिन्दुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में अरीना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defence Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as an important bridge between the two countries. US says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Aryna Sabalenka and Francis Tiafoe enter semifinals of US Open in New York. And now the news in detail. Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, or UPI, is the undisputed champion of this success story. Inaugurating the Global FinTech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said, "This is such a massive transformation that whenever FinTech is discussed, it will remain incomplete without UPI."
4: भारत की FinTech story अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा champion है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
3: रीइटरेटिंग हिज कोर फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, द प्राइम मिनिस्टर प्रेज्ड यूपीआई एज द अल्टीमेट टूल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. The Prime Minister pointed out that over 24 billion UPI transactions occurred in August alone, highlighting the global

0: Republic in a thrilling quarter-final. Sabalenka prevailed in a tightly contested match last night. In the men's singles, Francis Tiafoe booked his place in the last four after defeating fellow American Alex Michelson in a five-set thriller. India para archers will be in the hunt for multiple medals at the World Archery Para Series in Ahmedabad today as they compete in several gold and bronze medal matches across different events. In the para recurve mixed team gold medal match, India's Bhavna and Harvinder Singh will take on China's Liang Qirong and Xia Lei in the final. India's Sheetal Devi will have another opportunity to claim gold when she faces Aizada Zeidan of Kazakhstan in the para compound women's individual final. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Saira. Russia says BRICS can bridge Iran-UAE gap, writes Hindustan Times. The Tribune writes Modi-Putin bilateral on September 11, Sukhoi 57 sale, tech transfer on table. The newspapers have widely covered PM Modi inaugurating infrastructure projects. The Asian Age headlines, PM unveils 35,000 crore projects. The Tribune writes India-China holds second LAC flag meet in 2 days. After the tragic incident of building collapse in Satyaniketan area in Delhi, the matter has reached the Supreme Court. The Pioneer writes, safety of PGs in Delhi and a Supreme Court lens. The Hindu writes, Supreme Court mulls plan India's safety regulations for student hostels. And finally, Dimin Express writes, 60 years of Star Trek fans pass down not only shared language but values too, adding that Star Trek functions as connective tissue between fans past and present. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Shakun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defence Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries. US says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Aryna Sabalenka and Francis Tiafoe enter semi-finals of US Open in New York. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला, पहली इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीआई भारत की फिनटेक कामयाबी की एक गैर मुतनाज़े काबिल-ए-ज़िक्र दास्तान है। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय बिरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम पुल करार दिया है। अमेरिका ने कहा है कि उसने अपने जंगी जहाज पर किए गए हमलों के बाद खलीज फारस में ईरान के 5 तेल टैंकर्स को तबाह किया है। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा अशिया पर 50% तक जवाबी महसूल आयद कर दिया है। इम्कान है कि 12 से 21 सितंबर के दरमियान जुनूब मगरबी मानसून खत्म होने से पहले वस्ती, जुनूबी मशरकी और मगरबी भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। और टेनिस में न्यूयॉर्क में आर्याना सवालेंका और फ्रांसिस टियाफो अमरीकी ओपन के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिनटेक में भारत की नुमाया कामयाबी की तारीफ करते हुए कहा है कि मुल्क का रकूम के लेन देन का यूनिफाइड इंटरफेस यूपीआई कामयाबी की दास्तान का एक गैर मुतनाज़े हिस्सा है। मुंबई में फिनटेक आलमी फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये इतने बड़े पैमाने पर तब्दीली है कि जब भी फिनटेक का जिक्र किया जाता है तो ये यूपीआई के बगैर अधूरा रहता है।
3: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी क्योंकि ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
2: टेक्नोलॉजी के जरिए तफवीज़ इख्तियारात के अपने बुनियादी फलसफे को दोहराते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने यूपीआई की माली शमूलियत के एक हतमी आले कार के तौर पर सताइश की। जो ऐसे

0: दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरान की इस घड़ी में हमेशा श्रीलंका के साथ है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और अकीदे पर मबनी हैं। जनाब सिंह श्रीलंका की सरकर्दा क्यादत के साथ बातचीत के लिए कल इस मुल्क के अपने पहले 3 रोजा दौरे पर कोलम्बो पहुंचे थे। उन्होंने भारतीय बिरादरी के साथ बातचीत के दौरान ये राय जनी की। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी तहजीबी और तहजीबी सकाफती रिश्ते हैं, जिससे दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम हुई है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेस का सामना कर रही है, उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
1: भारत और कुवैत ने मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान कल कुवैत में भारत कुवैत दफ्तर खारजा के 8वें दौर का सलाह मशवरा किया गया। वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन और कुवैत की उमूर खारजा की वजारत में एशियाई उमूर के असिस्टेंट वजीर खारजा नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: इस मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों ने सियासी ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी, दिफा, सलामती, तवानाई, टेक्नोलॉजी और अवाम से अवाम के राब्तों समेत मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने बाहमी तआवुन के मुश्तरका कमीशन के तरीकेकार के तहत मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की मीटिंगों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया। वजारत खारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुनासिब तारीख पर नई दिल्ली में दफ्तर खारजा के अगले दौर के सलाह मशवरे से भी इत्तेफाक किया। वजारत ने कहा कि भारत और कुवैत के दरमियान दीरीना रबते हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में स्ट्रेटेजिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। वजारत ने यह भी बताया कि कुवैत में 15 लाख अफराद पर मुश्तमिल भारतीय बिरादरी दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम रबते के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: खवातीन और बच्चों की तरक्की की मरकजी वजारत आज वाराणसी में तग़ज़िये के 9वें कौमी महीने 2026 का आगाज करेगी। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर अन्नापूर्णा देवी वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रुद्राक्ष कन्वेंशन मरकज में इस मुहिम का आगाज करेंगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
4: यह मुहिम सितंबर के महीने में पूरे मुल्क के आंगनवाड़ी मरकजों, स्कूलों, पंचायतों और घरों में समाज के लोगों के साथ मिलकर चलाई जाएगी। इस साल तग़ज़िये के कौमी महीने का मौजू है हमारी आंगनवाड़ियां हमारी जिम्मेदारी। तग़ज़िये के महीने 2026 के दौरान खुराक के तनव्वो और वाफिर प्रोटीन, आंगनवाड़ी मरकजों में ताजा गर्म पका हुआ खाना, समाज की जिम्मेदारी और जवाबदेही, तग़ज़िये और बचपन के इब्तदाई दौर की तरक्की के बारे में तालीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 10 साल की तकमील, वाराणसी में मुनाकिद होने वाली इफ्तिताही तकरीब में तग़ज़िये से मुतालिक एक मेले, मुस्तफ़िदीन के तजुर्बात पर मबनी एक वीडियो प्रेजेंटेशन और मरकजी वजीर आंगनवाड़ी कारकुनों के दरमियान एक मुजाकरे का एहतमाम किया जाएगा। मरकजी वजीर ममलिकत सावित्री ठाकुर और खवातीन के बहबूद और बच्चों की तरक्की और तग़ज़िये की रियासती वजीर बेबी रानी मौर्य भी इस तकरीब में शिरकत करेंगी। लखनऊ से सुशील चंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: नागालैंड भी मुल्क के उन हिस्सों में शामिल हो रहा है जहां 9वां राष्ट्रीय पोषण माह 2026 मनाया जा रहा है। समाजी बहबूद का रियासती महकमा सेहत और खानदानी बहबूद के महकमे के साथ मिलकर इस मुहिम को अंजाम देने में सरगर्म है। सड़क, ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराहों के कौमी वजीर नितिन गडकरी आज गोवा में पुरवीरम एलिवेटेड राहदारी का इफ्तिताह करेंगे। कौमी शाहराह नंबर 66 पर 6 लेन वाले 5 किलोमीटर से ज्यादा के इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 641 करोड़ रुपए की लागत आई है। उम्मीद है कि इससे पणजी और रियासत के शुमाली हिस्से के दरमियान ट्रैफिक और कनेक्टिविटी की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। ये राहदारी आम ट्रैफिक के लिए 11 सितंबर को शुरू कर दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: उम्मीद है कि इस राहदारी से रोजाना 75,000 से 80,000

0: गाड़ियां गुजरेंगी। इस तरह मौजूदा सड़कों से तकरीबन 60% गाड़ियों की आमदोरफ्त कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद मापुसा पाणाजी के मसरूफ रास्ते पर गाड़ियों के हजूम में कमी लाना है। यह उम्मीद भी की जाती है कि इस आम राहदारी से सयाहों और तजारती गाड़ियों की नकलो हरकत में बेहतरी आ जाएगी। पाणाजी से निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मगरबी एशिया में कशीदगी बढ़ गई है क्योंकि अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं। इससे खित्ते मजीद तनाजे का खतरा बढ़ गया है। अमरीका ने कहा है कि उसकी फौज ने पिछले दो दिन के दौरान अमरीकी बहरी जंगी जहाज पर ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाबी इस्लामी IRGC की तरफ से किए गए हमलों के बाद ईरान के खाम तेल के 5 टैंकरों को तबाह कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने उर्दुन में अमरीकी ठिकानों पर मिजाइल हमले किए। अमरीका की मरकजी कमान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले दो दिन के दौरान ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अमरीका के बहरी जंगी जहाज को निशाना बनाने की दो बार कोशिश की, जिसके जवाब में ये हमले किए गए। उधर IRGC ने बहरेन और कुवैत की बंदरगाहों के करीब टैंकरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कनाडा ने 600 से ज्यादा अमरीकी अशिया पर 50% तक जवाबी महसूलात आयद कर दिए हैं। इस तरह दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान एक तिजारती तनाजे को हवा मिल गई है। अमरीकी अशिया पर यह महसूल कल रात से लागू हो गया है। मुतासरा अशिया में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे माद्य, टॉयलेट पेपर जैसी घरेलू लाजमी अशिया शामिल है। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वफाकी एजेंसियों को हुक्म दिया है कि वह कनाडा की अशिया की सरकारी खरीद उस वक्त तक बंद रखें जब तक कनाडा अमरीका के ताजिरों और किसानों को कनाडा की मार्केट में बराबर की रसाई फराहम नहीं कर देता। छत्तीसगढ़ में कंकेर की एक अदालत ने 5 माओनवाजों को सजाए कैद सुनाई है। इनमें खतरनाक माओनवाज प्रभाकर और उसकी अहलिया राजे कांगे भी शामिल हैं। इन लोगों को यह सजा 2015 में हिफाजती दस्तों पर किए गए एक हमले के केस में सुनाई गई है। प्रभाकर डंडा कर्मिया खसूसी जोनल कमेटी DKSZC का एक कारिंदा है और उसकी बीवी राजे कांगे डिविजनल कमेटी मेंबर DVCM दर्जे के साथ इस कमेटी से मुंसलिक है। इन दोनों को 7 साल की सजाए कैद सुनाई गई है। इस केस में मुलविस 3 दीगर माओनवाजों को 5-5 साल की सजाए कैद सुनाई गई है। ये केस 2015 का है जब माओनवाजों के एक ग्रुप ने हिफाजती दस्तों की एक टीम पर हमला कर दिया था। भारत में जुनूब मगरबी मानसून के खत्म होने से पहले इम्कान है कि एक बार फिर मुल्क के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो। बारिश का यह सिलसिला वस्ती जुनूबी मशरकी और मगरबी भारत में 12 से 21 सितंबर के दरमियान जारी रहेगा। मौसमियाती रुझान से पता चलता है कि यह आइंदा बारिश मानसून की वापसी के दौरान आर्जी तौर पर इसके सरगर्म होने की अलामत है, जिसके तहत सितंबर के दूसरे निसफ में मुल्क के ज्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ छींटा पड़ेगा। जुनूब मगरबी मानसून की वापसी का सिलसिला आमतौर पर शिमाल मशरकी भारत से शुरू होता है। इसके बाद यह सिलसिला जुनूब और मशरक की तरफ चला जाता है। महकमे मौसमियात IMD ने आज बिहार, झारखंड, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि अंडमान निकोबार जजाइर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। अमरीकी ओपन टेनिस में खवातीन के सिंगल्स की दिफाई चैंपियन और आला दर्जे की खिलाड़ी एलेना सबालिंका सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। उन्होंने एक सनसनीखेज क्वार्टर फाइनल में 6 दर्जे की लिंडा मास्कोवा को शिकस्त दी। सबालिंका ने कल रात एक जबरदस्त मुकाबले में 7-6, 3-6, 7-6 से कामयाबी हासिल की। मर्दों के सिंगल में 11वें दर्जे के फ्रांसिस तियाफू ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। उन्होंने अपने जोड़ीदार अमेरिका के एलेक्स माइकलसन को 5 सेटों के एक सनसनीखेज मैच में शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्काराज का मुकाबला 8वें दर्जे के अमरीकी शेल्टन वेन से होगा। अहमदाबाद में आज तीरअंदाजी की आलमी पैरा सीरीज में भारत के पैरा तीरअंदाज कई तमगे जीतने की कोशिश में हैं, क्योंकि ये लोग मुख्तलिफ जुमरे में बहुत से सोने और कांसे के तमगे जीतने की तैयारी में हैं। फाइनल में पैरा रिकर्व मिक्स्ड टीम के गोल्ड मेडल के लिए भारत की भावना और हरविंदर सिंह का मुकाबला चीन के लियांग क्युरुंग और जाई ली से होगा। साल 2026 के एशियन गेम्स के लिए भारतीय दस्ते को कल नई दिल्ली में नौजवानों की उम्र और खेलों के वजीर डॉ मनसुख मांडविया की मौजूदगी में शानदार अलविदाइया दिया गया। डॉ मांडविया और ओलंपिक एसोसिएशन के सदर PT उषा, खेलों के सेक्रेटरी हरिरंजन राव और शेफ

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 8:45 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आइए सुनते हैं अपूर्वा तिवारी का गायन राग मियां की तोड़ी में।

मीटिंग 71 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेशे खदमत है प्रोग्राम सुबहगाही। आज के प्रोग्राम में सुनिए भाई दर्शन सिंह निर्मल और साथियों से ये शब्द।

0: भाई दर्शन सिंह और साथियों से अभी आपने शब्द सुना। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश खदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और श्रोताओं, अब वक्त है अतीत में हुई इन प्रमुख घटनाओं के बारे में जानने का जिन्होंने आज के दिन अपनी विशेष पहचान दर्ज की। आज 9 सितंबर है। 1915 में उड़ीसा के काप्टेवाड़ा में प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी जतेंद्रनाथ सान्याल और अंग्रेजों के बीच संघर्ष भी आज ही की तारीख को शुरू हुआ था। 1920 में इसके 5 बरस बाद अलीगढ़ को एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल दिया गया था। 2009 में रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली शुरू करने की घोषणा की थी और इसके बाद एक साल बाद 2010 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने का निर्णय भी लिया गया था। 2011 की अगर हम बात करें तो श्रोताओं, ये एक महत्वपूर्ण साल है क्योंकि पुरावैज्ञानियों ने एक अवशेष ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिबा का इसी साल में पता लगाया था। यह मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज है जो लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाया जाता था। ये बंदर जैसा दिखता था। वैज्ञानिकों को ऑटिज्म से जुड़े 2 अलग अलग जैविक तनाव का पता चला है जिनके बारे में उनका दावा है कि इससे बीमारी के प्रभावी इलाज का विकास हो सकेगा। इन खोजों की तुलना 1960 के दशक में हुई कैंसर के विभिन्न प्रकारों की खोजों से की जा रही है और उम्मीद है कि इनसे ऑटिज्म ग्रस्त बच्चों के संपर्क, सामाजिकरण और अन्य समस्याओं को अधिक सुलभता से और जल्दी से निपटाया जा सकेगा।
0: जी।
1: और अब बात करते हैं उन प्रमुख व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। तो इस कड़ी में शुरुआत करते हैं लाला जगत नारायण से। हम याद कर रहे हैं आज उन्हें। वे प्रसिद्ध पत्रकार और हिंद समाचार समूह के संस्थापक थे। वे कांग्रेस और आर्य समाज के प्रसिद्ध कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। लाला जगत नारायण छुआछूत के विरोधी और महिला अधिकारों के पक्षधर थे। 80 के दशक में जब पूरा पंजाब आतंक की आग से झुलस रहा था, उस दौर में भी कलम के सिपाही और देश भावना से प्रेरित लाला जी ने अपने बेबाक लेखन से आतंकियों के मंसूबों को उजागर किया और राज्य में शांति कायम करने के भरसक प्रयास किए। और आज पुण्यतिथि है भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और नाटककार रामवृक्ष बेनीपुरी की। बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 8 वर्ष जेल में बिताए। इन्होंने कई समाचार पत्र भी निकाले जिनमें वर्ष 1929 का युवक नामक समाचार पत्र प्रमुख है। इसके अलावा आज ही पुण्यतिथि है भारत में दुग्ध क्रांति, जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, उसके जनक माने जाने वाले वर्गीज कुरियन की। भारत को दुनिया का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बनाने के लिए श्वेत क्रांति लाने वाले डॉक्टर कुरियन को देश में सहकारी दुग्ध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखने का श्रेय दिया जाता है। भारत सरकार ने वर्गीज कुरियन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अलंकरणों से सम्मानित किया। इसके अलावा भी विश्व स्तर पर उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। और हम याद कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र सामने आए, तब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। शासन तंत्र से संबंधित संपूर्ण कार्य अंग्रेजी में ही होता था। ऐसे दौर में भारतेंदु ने देशवासियों के मन के भीतर हिंदी की अलख जगाई, तो इसीलिए वे अपने स्वनाम से ही धन्य हैं अगर हम बात करें तो।
0: जी।
1: और श्रोताओं, आज ही जयंती है भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब रमजान खान की। हिंदी सिनेमा जगत के युग पुरुष महबूब खान को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने दर्शकों को लगभग 3 दशक तक क्लासिक फिल्मों का तोहफा दिया। वो युवावस्था में मुंबई आए और एक स्टूडियो में काम करने लगे। महबूब खान ने अपने सिने करियर की शुरुआत वर्ष 1927 में प्रदर्शित फिल्म अलीबाबा एंड 40 थीव्स से अभिनेता के रूप में की। इस फिल्म का ये गीत आपके सामने प्रस्तुत है।

बहुत कम लोगों को ही शगुन पता होगा कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा के लिए महबूब खान का अभिनेता के रूप में भी चयन हुआ था। वर्ष 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया महबूब खान की सर्वाधिक सफल फिल्मों में शुमार की जाती है। सुनते हैं।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। अब खबरें नश्र होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप असदुल्ला से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि UPI भारत की फिनटेक कामयाबी की एक गैर मुतनाज़े काबिले ज़िक्र दास्तान है। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय बरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम पुल करार दिया है। अमरीका ने कहा है कि उसने अपने जंगी जहाज पर किए गए हमलों के बाद खलीज फारस में ईरान के 5 तेल टैंकर्स को तबाह किया है। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा अशिया पर 50% तक जवाबी महसूल आयद कर दिया है। इम्कान है कि 12 से 21 सितंबर के दरमियान जुनूब मगरबी मानसून खत्म होने से पहले वस्ती जुनूबी मशरकी और मगरबी भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। और टेनिस में न्यूयॉर्क में अरियाना सबालिंका और फ्रांसिस टियाफो अमरीकी ओपन के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिनटेक में भारत की नुमाया कामयाबी की तारीफ करते हुए कहा कि मुल्क का रुकूम के लेन देन का यूनिफाइड इंटरफेस UPI कामयाबी की दास्तान का एक गैर मुतनाज़े हिस्सा है। मुंबई में फिनटेक आलमी फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये इतने बड़े पैमाने पर तब्दीली है कि जब भी फिनटेक का जिक्र किया जाता है तो ये UPI के बगैर अधूरा रहता है। टेक्नोलॉजी के जरिए तफवीज़े इख्तियारात के अपने बुनियादी फलसफे को दोहराते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने UPI की माली शमूलियत के एक हतमी आलेकार के तौर पर सताइश की, जो ऐसे शोबों में कामयाबी के साथ दाखिल हुआ जिन्हें रिवायती बैंकिंग तौर तरीकों में नजरअंदाज कर दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने इशारा दिया कि सिर्फ अगस्त के महीने में UPI के जरिए 24 अरब से ज्यादा बार रुकूम का लेन देन किया गया। भारत के अहम डिजिटल लेन देन के निजाम की आलमी पैमाने पर वसत का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब UPI का इस्तेमाल 11 मुल्कों में किया जा रहा है, जिसकी वजह से बैन-अक़वामी सतह पर रुकूम के लेन देन के लिए वो सब कुछ रोजमर्रा की एक हकीकत बन गया है जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरान की इस घड़ी में हमेशा श्रीलंका के साथ है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका तौर पर तारीख, सकाफत और अकीदे पर मबनी है। जनाब सिंह श्रीलंका की सरकर्दा क्यादत के साथ बातचीत के लिए कल इस मुल्क के अपने पहले 3 रोजा दौरे पर कोलंबो पहुंचे थे। उन्होंने भारतीय बरादरी के साथ बातचीत के दौरान ये रायजनी की। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी तहजीबी और सकाफती रिश्ते हैं जिससे दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम हुई है। भारत और कुवैत ने मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान कल कुवैत में भारत कुवैत दफ्तरी खारजा के 8वें दौर का सलाह मशवरा किया गया। वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन और कुवैत के उमूर खारजा की वजारत में एशियाई उमूर के असिस्टेंट वजीर खारजा नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। खवातीन और बच्चों की तरक्की

0: त्रिपुरा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने कहा है कि अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। आईएमडी के मुताबिक साहिली आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अमरीकी ओपन टेनिस में खवातीन के सिंगल्स की दिफाई चैंपियन और आला दर्जे की खिलाड़ी एरिना सबालिन्का सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। उन्होंने एक सनसनीखेज क्वार्टर फाइनल में छठे दर्जे की लिंडा मास्कोवा को शिकस्त दी। सबालिन्का ने कल रात एक जबरदस्त मुकाबले में 7-6, 3-6, 7-6 से कामयाबी हासिल की। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीआई भारत की फिनटेक कामयाबी की एक गैर मुतनाज़े काबिल जिक्र दास्तान है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय बिरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम पुल करार दिया। अमरीका ने कहा है कि उसने अपने जंगी जहाज पर किए गए हमलों के बाद खलीज फारस में ईरान के 5 तेल टैंकर्स को तबाह किया है। कनाडा ने अमरीका की 600 से ज्यादा अशिया पर 50% तक जवाबी महसूल आयद कर दिया है। और टेनिस में न्यूयॉर्क में अरियाना सबालिन्का और फ्रांसिस टियाफो अमरीकी ओपन के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियां जारी हैं। अब पेश खिदमत है अख़बारे ज़र्री का प्रोग्राम शर्मे फरोजा।
2: आम तौर पर लफ्ज फसाद को अंग्रेजी लफ्ज करप्शन का मुतरादिफ करार दिया गया है। अंग्रेजी में अब्दुल्ला यूसुफ अली और मारिया डेविड पख्ताल के कुरान मजीद के तर्जुमों में फसाद का तर्जुमा टू मेक मिसचेफ दिया गया है। बाज क्षेत्राजी में इसका तर्जुमा टू स्प्रेड डिसऑर्डर भी दर्ज है। यह तर्जुमा करप्शन के मुकाबले में वसीतर और बेहतर मफहूम का हामिल है। अंग्रेजी लफ्ज करप्शन ही को लें तो अंग्रेजी की मुस्तनद लुगात में इस पर कई पहलुओं से तारीफ की गई है। मोतबर लुगत मरियम वेबस्टर में जो मफहूम दिया गया है इसे उर्दू में यूं बयान किया जा सकता है, अखलाकियात, समाजी वहदत और सालमियत नीज नेकी की कदरों के जरिए उसूलों की शिकस्त और रेख्त। एक और तारीफ नामुनासिब और गैर कानूनी रास्तों से बुराई की तरगीब देना नीज दुरुस्त और साले समाजी रिवायत और अकदार को पसे पुश्त डाल देना भी दर्ज है। इन मफाहिम को जहन में रखते हुए कुरान हकीम की सूरह बकर की इस आयत पर गौर करें, जब कभी उनसे कहा गया कि जमीन पर फसाद बर्पा न करो तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इसलाह करने वाले हैं। खबरदार, हकीकत में यही लोग मुफसिद हैं मगर उन्हें शऊर नहीं। मुफस्सिरीन ने लिखा कि फसाद फिल अर्ज एक खालिस कुरानी इस्तिलाह है और हर वो कोशिश इसके हुक्म में दाखिल है जो बिगाड़ की जानिब ले जाए, ख्वाह कोशिश बज़ाहिर इस्लाह या नेक इरादे के साथ क्यों न हो। तमाम मुफस्सरीन ने इस आयत की तफसीर में फसाद के माने में कवानीन इलाही को मस करने, निज़ाम फितरत को बिगाड़ने, एतकादी गुमराही और निज़ाम तमद्दुन वगैरह में बिगाड़ने की कोशिशों को शामिल किया है। कुरान हकीम में एतकादी कजरबी, खुदा की इताअत और फर्माबरदारी से बेनियाज होकर जिंदगी गुजारने, शरई व अखलाकी हदूद को पामाल करने, खुदा के आयत करदा समाजी हकूक को नजरअंदाज करने, किसी मामले में खुदा के फैसले के रूबा अमल होने की राह में रुकावट बनने या इसकी मर्जी और मंशा के बरखिलाफ रवैश इख्तियार करने, लोगों को खुदा के दीन से रोकने, दूसरे इंसानों के जानो माल के दरपे हो जाने, उनकी इज्जत आबरू को उछालने और उनके दीन और मजहब की आजादी छीनने, मालो दौलत और हुकूमत की हवस में दूसरी कौमों पर हमले करने और अपनी सरकशी और जुल्म से इंसानी समाज के अमनो अमान को तबाह करने की कोशिश करने को फिसाद फिल अर्ज से ताबीर किया गया है। इस लिहाज से यह खासी वसी इस्तलाह है और इसमें सीखने वालों के लिए दरस इबरत का बड़ा सामान मौजूद है। जमीन में फसाद फैलाने के मफहूम में जहां खुदा के कवानीन की हुक्म उदूली और उसके बंदों पर जुल्म और सितम शामिल हैं, वहीं इसमें वसाइल अर्जी का बेजा और मुसरिफाना इस्तेमाल और उन्हें बेदरेग अंदाज से जाया करना भी शामिल है। ये फिसाद जमीन पर माहौलियात का तवादुन बिगड़ने पर कायम होता है। चुनांचे आज हम अपनी आंखों से इसके खराब नतायज का खुद मुशाहिदा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जमीन पर अफजाइश हरारत यानी ग्लोबल वार्मिंग, मौसमी तगयरात, फजाई और आबी आलूदगी, سمندر کی سطح میں اضافہ، آئے دن مختلف خطوں میں سیلاب، طوفان، سونامی اور شدید زلزلوں کے آنے کا سلسبب انسان کے ذریعے وسائل کا بے دریغ اور بے محابہ استعمال کرنا ہی ہے۔ ارشاد باری ہے، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ قرآن حکیم کے اس ابدی حکم کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ پر عمل کرنا دراصل نہ صرف ہماری روحانی اور سماجی زندگی کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری ہے، بلکہ اس میں ہماری زمین، ماحولیات اور خود ہماری اپنی بقا کا راز بھی مضمر ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ۔ آج کا موضوع تھا زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تحریر تھی جناب عرفان احمد کی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ آج کے پروگرام کی پیشکش ولایت حسین ساگر کی آواز میں، نیر آزمی اور داغ دہلوی کا کلام، اور سیما انیل سہگل سے آپ سنیں گے جانثار اختر اور رفت سروش کا کلام۔

बचपन से ही अली सिकंदर को शायरी का शौक था और कम उम्री में ही शेर कहने लगे थे। कहा जाता है कि इब्तदाई दौर में उनका कोई उस्ताद नहीं था। मकामी मुशायरों में जिगर दूसरे शुआरा का कलाम सुनते और उन्हीं के अंदाज में शेर कहने की कोशिश करते।

ये वो दौर था जब उस्ताद दाग नवाब रामपुर के दरबार से वाबस्ता थे और पूरे मुल्क में उनकी शायरी का जादू सर चढ़कर बोलता था। जिगर को दाग का कलाम बहुत पसंद था। जब जिगर 15 बरस के थे तो उन्होंने उस्ताद दाग दहलवी को अपनी एक गजल दिखाई और दाग ने उसकी इस्लाह की।

0: जिगर मुरादाबादी ने ऐनके बेचने के काम में जी जान से मेहनत की। जब आमदनी बढ़ी और हाथ में एक अच्छी खासी रकम आने लगी तो अपने गम भुलाने के लिए जिगर शराब पीने लगे। चूंकि कोई मोनिसो गमखार आसपास न था इसलिए वो बस शराब के होकर रह गए।
1: बेकैफ जिंदगी है जिए जा रहा हूँ मैं, बेकैफ जिंदगी है जिए जा रहा हूँ मैं, खाली है शीशा और पिए जा रहा हूँ मैं। गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं।
2: शायरे फितरत हूँ मैं, जब फिक्र फरमाता हूँ मैं। शायरे फितरत हूँ मैं, जब फिक्र

0: 1920 से लेकर 1938 का दौर जिगर मुरादाबादी की शायरी और मैखारी दोनों के उरूज का जमाना था।
1: सबको मारा जिगर के शेरों ने, सबको मारा जिगर के शेरों ने, और जिगर को शराब ने मारा।

0: आशिकी इम्तियाज क्या जाने, आशिकी इम्तियाज क्या जाने, फर्क नाजो नियाज क्या जाने।
1: जिगर मुरादाबादी की शायरी वो नगमगी है कि जो रूह से निकले, जिसको रूह सुने और रूह सुनाए। जब वो शेर सुनाते थे तो हाजरीन पर तकरीबन वश्त का आलम होता था और एक एक लफ्ज किसी नगेनी की तरह उनके शेरों में चमकता था। ऐसा लगता था कि उनका तरन्नुम इंसानी आवाज नहीं बल्कि दिल के तारों से निकलती हुई रूह की सदाए बाजगश्त है, जो सुनने वालों के साथ अपने आप एक रूहानी रब्त ताल्लुक पैदा कर

जिगर की शायरी में तसव्वुफ का रंगो आहंग बहुत मुनफरिद अंदाज से झलकता है। चुनांचे कोई मौजू हो या किसी भी किस्म की कैफियत हो, जिगर के शेरों में मोहब्बत की तकरार एक अलग सूफियाना माहौल पैदा कर देती है।

जिगर मुरादाबादी की शायरी ने बारह फिल्मसाजों को भी अपनी जानिब रागिब किया, लेकिन जिगर ने हर बार फिल्मों के लिए लिखने की फरमाइशों को शाने बेनियाजी से नजरअंदाज कर दिया। आजादी से कुछ साल कबल की बात है जब जिगर एक मुशायरे के लिए बम्बई गए तो उनके साथ एक नौजवान असरार हुसैन खां यानी के मजरू सुल्तानपुरी भी थे। मुंबई का मुशायरा जिगर ने ऐसे लूटा कि एक आलम उनका गर्विदा हो गया। जिगर के अलावा हाजरीन को मजरू सुल्तानपुरी की शायरी भी पसंद आई। इस मुशायरे में मशहूर फिल्मसाज ईआर कारदार भी आए थे। कारदार साहब उन दिनों अपनी फिल्म शाहजहां के लिए किसी नगमा निगार की तलाश में थे। कारदार साहब जानते थे कि जिगर तो उनकी दरखास्त कबूल न करेंगे, इसलिए उन्होंने जिगर से कहा कि आप मेरी फिल्म के नगमे मजरू से लिखवा दीजिए। जिगर ने दोनों की मुलाकात करवा दी, लेकिन जिगर की तरह मजरू ने भी फिल्मी गीत लिखने से साफ इनकार कर दिया। कहा जाता है कि जिगर ने मजरू को काफी समझा बुझाकर गीत लिखने के लिए राजी किया। मजरू ने इस तरह अपना मशहूर गाना जब दिल ही टूट गया दरअसल जिगर के

0: पत्तों पर लिखा और देखते देखते मजरू की शोहरत आसमान की बुलंदियां छूने लगी। यही वो दौर भी है जब जिगर का फन अपने उरूज पर था।
1: इस तरह खुश हूँ किसी के वादे फरदा पे मैं, फिर हकीकत जैसे मुझको एक बार आ ही गया।

अभी आप सुन रहे थे जिगर मुरादाबादी के हवाले से फीचर बहार खिजां का वो आखिरी पत्ता। तहरीर डॉक्टर इकबाल उर रहमान की थी। इस फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा 11:30 पर सुना जा सकेगा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

मुकेश की आवाज में ये नगमा था ठोकर फिल्म से। और प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफीक को सुनिए फिल्म है मेरे हुजूर।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये नगमा था दिल एक मंदिर फिल्म से। आज के प्रोग्राम के आखिरी पेशकश आपके नजर कर रहे हैं। महेंद्र कपूर की आवाज में ये नगमा फिल्म है गुमराहा।

गुमराह फिल्म का नगमा भी अपने महेंद्र कपूर की आवाज में सुना। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ॉन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। अब सुनिए जिगर मुरादाबादी पर फीचर बहारे खिजां का वो आखिरी पत्ता। इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा तहरीर डॉक्टर इकबाल उर रहमान की है।

जिगर की शायरी में तसव्वुफ का रंगो आहंग बहुत मुनफरिद अंदाज से झलकता है। चुनांचे कोई मौजू हो या किसी भी किस्म की कैफियत हो, जिगर के शेरों में मोहब्बत की तकरार एक अलग सूफियाना माहौल पैदा कर देती है।

चाहिए बहाना, मैं वो साफ ही न कह दूं जो है फक तुझमें मुझमें, तेरा दर्द दर्द तन्हा, मेरा गम गमे जमाना, मेरे दिल के टूटने पर है किसी को नाज क्या क्या, मुझे ऐ जिगर मुबारक ये शिकस्त है फातेहाना।

0: बनानोशी के सबब जिगर अक्सर होश में न होते, लेकिन शेर फिर भी उनको याद रहते थे और मुशायरों के बाद भी घरों पर देर तक महफिलें चलती। लोग तबर्रुक की तरह उनके शेर सुनते और सर धोते थे।
1: एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। ये किसका तसव्वुर है, ये किसका फसाना है, जो अश्क है आंखों में तस्बीह का दाना है। दिल संगे मलामत का हर चंद निशाना है, दिल संगे मलामत का हर चंद निशाना है, दिल फिर भी मेरा दिल है, दिल ही तो जमाना है। हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, रोने को नहीं कोई हंसने को जमाना है। शायर हूँ मैं शायर हूँ मेरा ही जमाना है, फितरत मेरा आईना कुदरत मेरा शाना है, जो उन पे गुजरती है किसने उसे जाना है, जो उन पे गुजरती है किसने उसे जाना है, अपनी ही मुसीबत है अपना ही फसाना है। आगाज मोहब्बत है आना है न जाना है, अश्कों की हुकूमत है आहों का जमाना है, आंखों में नमी सी है चुप चुप से वो बैठे हैं, आंखों में नमी सी है चुप चुप से वो बैठे हैं, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है। या वो थे खफा हमसे या हम है खफा उनसे, कल उनका जमाना था आज अपना जमाना है। ऐ इश्क जुनू पेशा, हाँ इश्क जुनू पेशा, आज एक सितमगर को हंस हंस के रुलाना है। थोड़ी सी इजाजत भी ऐ बज्म गहे हस्ती, आ निकले हैं दम भर को रोना है रुलाना है। ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। खुद हुस्न शबाब उनका क्या कम है रकीब अपना, जब देखिए तब वो हैं आईना है शाना है। हम इश्क मुजस्सम है लब तशना व मुस्तस्की, दरिया से तलब कैसी दरिया को रुलाना है। तस्वीर के दो रुख हैं जहाँ और गमे जाना, तस्वीर के दो रुख हैं जहाँ और गमे जाना, एक नक्श छुपाना है एक नक्श दिखाना है। ये हुस्न जमाल उनका ये इश्क शबाब अपना, ये हुस्न जमाल उनका ये इश्क शबाब अपना, जीने की तमन्ना है मरने का जमाना है। मुझको इसी धुन में है हर लहजा बसर करना, अब आए वो अब आए लाजिम उन्हें आना है। खुददारी और महरूमी, महरूमी और खुददारी, अब दिल को खुदा रखे अब दिल का जमाना है। अश्कों के तबस्सुम में आहों के तरन्नुम में मासूम मोहब्बत का मासूम फसाना है। आंसू तो बहुत से हैं आंखों में जिगर, लेकिन आंसू तो बहुत से हैं आंखों में जिगर, लेकिन बिन जाए सो मोती है रह जाए सो दाना है। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है।

0: लेकिन जब शादी के बाद भी जिगर मैनोशी से छुटकारा हासिल न कर पाए तो असगर ने कहा कि मेरी हमशीरे निस्बती किसी शराबी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, तुम्हें उसे तलाक देनी होगी। कहा जाता है कि जब कई सालों की मुसलसल कोशिशों और बीमारियों के बाद आखिरकार जिगर ने सचमुच शराब से तौबा की तो असगर ने फिर से अपने हमशीरे निस्बती का उनसे अगदसानी करवा दिया। तरके शराब नोशी के बाद का नमूने कलाम मुलाहजा फरमाई।
1: किसी सूरत नमूदे सोजे पिनहानी नहीं जाती, बुझा जाता है दिल चेहरे की ताबानी नहीं जाती। सदाकत हो तो दिल सीनों से खिसकने लगते हैं वाइज, हकीकत खुद को मनवा लेती है मानी नहीं जाती। चले जाते हैं बढ़ बढ़ कर, मिटे जाते हैं गिर गिर कर, हुजूरे शम्मा परवानों की नादानी नहीं जाती। वही दिल से गुजरते हैं कि आहट

होती। वो यूं आवाज देते हैं कि पहचानी नहीं जाती। मोहब्बत में एक ऐसा वक्त भी दिल पर गुजरता है, मोहब्बत में एक ऐसा वक्त भी दिल पर गुजरता है कि आंसू खुश्क हो जाते हैं, तोयानी नहीं जाती। जिगर वो भी सरतापा मोहब्बत ही मोहब्बत है, मगर उनकी मोहब्बत साफ पहचानी नहीं जाती।

9 सितंबर सन 1960 को बवकाम गोंडा जिगर मुरादाबादी ने दाइये अजल को लब्बैक कहा और उनके इंतकाल के साथ ही क्लासिकी गजल के दौर का भी इख्तिताम हो गया।

0: कि उसने अपने जंगी जहाज पर किए गए हमलों के बाद खलीज फारस में ईरान के 5 तेल टैंकर्स को तबाह किया है। कनाडा ने अमरीका की 600 से ज्यादा अशिया पर 50% तक जवाबी महसूल आयद कर दिया है और भारत और कुवैत ने तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और अवाम से अवाम के राबतों समेत मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक साझेदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। अब पेश है फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम, मिले सुर मेरा तुम्हारा।

गंगा की लहरें है फिल्म का नगमा आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में सुनिए फिल्म है अनारकली।

आशा भोसले और मुकेश की आवाजों में ये नगमा भी आपने सुना, फिल्म थी फिर सुबह होगी। अब सुनिए तलत महमूद और आशा भोसले को फिल्म है 24 घंटे।

मन्ना डे और लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था बसंत बहार। अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को।

सितंबर से मार्च तक सयाहों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ के फितरी मनाजिर, झीलें, तारीखी महलात सयाहों को अपनी जानिब मायल करते हैं। हर साल मुल्की और गैर मुल्की तकरीबन 15 लाख सयाह यहाँ आते हैं। सियाहत के अलावा उदयपुर की इक्तसादी तरक्की में दस्तकारी और घरेलू सनत का अहम रोल है। शिल्पग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मकामी दस्तकारी और हैंडलूम मसनूआत को फरोग दिया जाता है।

0: जस्ता, जिंक और चांदी बड़ी तादाद में पाई जाती है। उदयपुर जिंक पैदा करने में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। उदयपुर का कल्चर और रिवायत सदियों पर मोहित है। यहाँ की झीलें, मंदिर, कले और महलात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अहम बात यह है कि इस शहर ने अपनी कदीम रिवायात और मादी तरक्की के दरमियान एक रक कायम कर रखा है। राजस्थान के दूसरे इलाकों की तरह यहाँ के मकामी रक्स और मौसीकी को काफी अहमियत हासिल रही है। उदयपुर का हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों से फजाई, रेल और सड़क का राबता है, जिसके जरिए यहाँ बआसानी पहुंचा जा सकता है। यहाँ के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और दूसरे शहरों के लिए रोजाना परवाजें हैं। इसी तरह रेल से भी राजस्थान के दूसरे अहम शहरों के अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अहम शहरों के लिए भी ट्रेनें हैं। जहां तक रोड ट्रांसपोर्ट का सवाल है तो यहां से मुख्तलिफ रियासतों के लिए बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सर्विस है। मकामी तौर पर यहां टैक्सियां, ऑटो रिक्शा के अलावा प्राइवेट कैब सर्विसेज भी मौजूद हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे तारीख साज। आज का मौजूद था उदयपुर। तहरीर जनाब सालेह अब्दुल्ला की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

Medium Waves 1071 kHz मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि UPI भारत की फिनटेक कामयाबी की एक गैर मुतनाज़े और काबिले जिक्र दास्तान है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय बिरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम पुल करार दिया है। अमरीका ने कहा है कि उसने अपने जंगी जहाज पर किए गए हमलों के बाद खलीज फारिस में ईरान के 5 तेल टैंकर्स को तबाह किया है। कनाडा ने अमरीका की 600 से ज्यादा अशिया पर 50% तक जवाबी महसूल आयद कर दिया है। भारत और कुवैत ने तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और अवाम से अवाम के राबतों समेत मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक साझेदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। और टेनिस में न्यूयॉर्क में रैना सवालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने को है। हमारी आज की उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज की फिल्म भरोसा। भरोसा, वो भरोसा जो कि भाई हर किसी की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। और दो दोस्तों के बीच में भरोसा, दो कोई भी रिश्तों के बीच में भरोसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि जरा सी गलत फहमी होती है और पूरा रिश्ता डगमगा जाता है। और इसी गलत फहमी और इसी भरोसे के ऊपर आधारित है साल 1963 में आई फिल्म भरोसा। जी हाँ दोस्तों, इसी ताने बाने में बुनी गई है ये फिल्म, जहां पर एक दोस्त किसी काम से बाहर जाते वक्त अपनी सारी धन दौलत और अपनी बेटी सीता यानी कि आशा जी को अपने जिगरी दोस्त शिवचरण के पास छोड़ के चले जाता है। और जो शिवचरण है वो सीता को अपने बेटे रामा यानी कि गुरुदत्त साहब के साथ अपने ही बच्चे की तरह बड़ा करता है। वक्त बीतता है, रामा सीता बड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, भाई इसमें भरोसा कहाँ से टूटा या गलत फहमी कहाँ से आई? तो कहानी में आता है छोटा सा ट्विस्ट। जब रामदास वापस लौटता है तो वहां पर शिवचरण का जो लालची साला रसिक होता है यानी कि महमूद साहब होते हैं, वो थोड़ा सा जो स्थितियां हैं वो गड़बड़ कर देते हैं और कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि रामदास को लगता है कि उनके दोस्त शिवचरण ने उनकी जायदाद, उनके पैसे और उनकी बेटी के साथ धोखा किया है। और वहीं पर यही सब चीजों को या जो भी उनके जो रामा के पिता हैं शिवचरण, उन पर जो इल्जाम लगे उन सबको मिटाने के लिए रामा आगे आते हैं और अपने प्यार सीता को हासिल करने के लिए बहुत सी मुश्किलों से गुजरते हैं। और जैसा कि हमेशा होता है, लास्ट में होती है फिल्म की हैप्पी एंडिंग, सच सामने आता है, सारे शक सारी गलत फहमियां दूर हो जाती हैं और वापस से जो भरोसा है वो बन जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, जो सच्चा भरोसा होता है ना वो कभी भी नहीं टूटता है, इसीलिए सच्चा भरोसा हमेशा बना के रखिए। फिल्म के बारे में जुड़ी और भी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक और ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, बिल्कुल, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, यही सब होता है अगर आपका भरोसा टूटता है। वैसे आज हम बात कर रहे हैं फिल्म भरोसा के बारे में, और इस फिल्म में जो किरदार निभाया है अहम, वो है गुरुदत्त साहब। और वैसे जब भी हम गुरुदत्त साहब के बारे में सोचते हैं या उनका नाम हमारे दिमाग में आता है, तो सबसे पहले हमारे सामने एक जो इमेज बनकर आती है वो प्यासा फिल्म या कागज के फूल फिल्म में जो उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा गंभीर और बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर निभाया, हमें वो नजर आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक अभिनेता के तौर पर गुरुदत्त साहब ने हर तरह के रंगों का किरदार निभाया, और वही इस फिल्म में भी उन्होंने मस्ती भी की है, मजे भी किए हैं, और शायद ये गीत सुन के भी आपको लगा होगा। वैसे गुरुदत्त साहब के बारे में एक चीज और मानी जाती है कि वो डायरेक्टर खुद भी बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छे एक निर्देशक के रूप में माने जाते हैं, लेकिन ये पूरी फिल्म उन्होंने के शंकर साहब के साथ बनी। और के शंकर साहब दक्षिण भारत के एक काफी बड़े निर्देशक रहे हैं, और गुरुदत्त साहब उनकी काबिलियत से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना ये जो पूरा प्रोजेक्ट था वो उनको सौंपा और कहा कि भाई अब आप बनाइए, हम आपके साथ हैं। और जिस भरोसे के साथ गुरुदत्त साहब ने के शंकर के हाथ में ये फिल्म सौंपी थी, वो भरोसे पर पूरी तरह से सफल हुए, और इस फिल्म में उनकी जोड़ी आशा जी के साथ में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रही। वैसे ये फिल्म जो है, ये एक चीज और

आप बनाइए, हम आपके साथ हैं। और जिस भरोसे के साथ गुरुदत्त साहब ने के शंकर के हाथ में ये फिल्म सौंपी थी, वो भरोसे पर पूरी तरह से सफल हुए। और इस फिल्म में उनकी जोड़ी आशा जी के साथ में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रही। वैसे ये फिल्म जो है, ये एक चीज और साबित करती है कि गुरुदत्त साहब जो हैं वो सिर्फ ट्रेजेडी किंग या फिर बोले कि एक बहुत ही सैड फिल्मों के मास्टर नहीं है, बल्कि वो

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म भरोसा के बारे में। इस फिल्म में गुरुदत्त साहब ने जहां बिल्कुल अपनी इमेज से अलग किरदार निभाया, वहीं दूसरी तरफ उनके साथ जो जोड़ी बनी वो आशा पारिक जी की बनी। और आशा पारिक जी को आपने देखा होगा, वो बहुत ही ज्यादा एकदम चुलबुले और बहुत ही ज्यादा हसमुख डांसिंग टाइप के जो उनके कैरेक्टर हुआ करते थे, बहुत चुलबुली होती थी वो अपने हर किरदार में। लेकिन इन सब के इतर इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही संजीदा किरदार निभाया है। एक बहुत ही मैच्योर लड़की का किरदार इतनी शिद्दत के साथ उन्होंने निभाया कि हर किसी की आंखें नम हो गई उनके इस कैरेक्टर को देखकर। और दूसरी बात, भाई गुरुदत्त साहब के साथ उनकी ये जोड़ी पहली बार, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि गुरुदत्त साहब आशा जी के साथ में आए हैं और उन दोनों ने इन किरदारों को निभाया। और वाकई में जब ये जोड़ी स्क्रीन पर आई तो हर किसी ने उनको प्यार दिया और लोगों के भरोसे पर ये जोड़ी बहुत ही खूबसूरती के साथ में उतरी। और वैसे भी जो 60 का दशक था, उस वक्त में आशा जी को हिट गर्ल कहा जाता था।

को जुबली गर्ल बोलते थे, वो जिस फिल्म में होती थी उस फिल्म का हिट होना या जबरदस्त सफलता पाना ये साबित कर देता है कि आशा जी जिस फिल्म में होंगी वो तो हिट होगी ही होगी, क्योंकि वो सभी के दिलों में राज करती थी। तो लीजिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा प्यारा सा गीत।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हमारी फिल्म है आज की भरोसा। भरोसा फिल्म जिसमें एक और ऐसा किरदार था जिसने इस फिल्म को हिट बनाने में पूरा साथ दिया। जी हाँ दोस्तों, वो किरदार था कॉमेडी के किंग महमूद जी का। जी हाँ दोस्तों, महमूद साहब जब भी पर्दे पर आते तो भाई उनके लिए तालियां बजने लगती और लोग ठहाके लगाने लगते। वो इस तरह से अपने किरदार में पूरी तरह से डूब जाते हैं ना, ये तो हर कोई जानता है। और ऊपर से इस फिल्म में शोभा खोटे के साथ जो उनकी जोड़ी बनी, वाह, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भाई उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है ना, उसका कोई भी जवाब नहीं है। और साथ ही साथ उन दोनों की जुगलबंदी ने तो लोगों का दिल पूरी तरह से जीत लिया। फिल्म में जहां दूसरी तरफ गुरुदत्त साहब, आशा पारिक जैसे दिग्गज कलाकार थे, वहीं दूसरी तरफ महमूद साहब की जो अदाकारी थी, उनकी जब भी स्क्रीन पर एंट्री होती तो वो एक अलग और अपनी अलग पहचान, अपनी मजबूत पहचान के साथ आते। मतलब कह सकते हैं कि आप बड़े बड़े कलाकारों के रहते हुए महमूद साहब ने अपनी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो हर किसी को मनवाई। तो लीजिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म से।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ, और आपके साथ हूँ मैं आपके उस दोस्त प्रीति, और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। संदीप मकर, ज्योति मकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, और ये जुड़े हमारे साथ कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरैया जलंधर पंजाब से, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम, कृष्णा देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, और ये जुड़े हमारे साथ सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह के साथ, पद्मा टॉकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से, जलालाबाद वेस्ट से जुड़े हैं सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा के साथ, मेरठ कैंट से जुड़े हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी के साथ में, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, इसके अलावा गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा जी, जसवीर, जसी, सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमलकांत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमती दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता के साथ पिपरिया से, इसके अलावा

हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राम नागर कोहरा जिला नंदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं गांव फनासी जिला हसार से जुड़े हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत खूबसूरत जानकारी इन्होंने हम तक पहुंचाई है। लिखते हैं कि फिल्म में संगीत रवि का और गीतकार राजेंद्र कृष्ण, मोहम्मद रफी, आशा जी की आवाज में सभी नगमे थे जी। बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत जानकारी के लिए। बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया के साथ, सुदर्शन मुखी, अनिता सिमरन जी हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से, और डीबी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं नेहरू विहार दिल्ली से, पोटिया कला दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हैं संजय कुमार साहू जी, और हीरामणि वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं दतरंगी भट्टापारा से, जनकपुरी सहारनपुर से जुड़े हैं जोन डिकेस्ट्रो, रोजी पाल और विलिस डिकेस्ट्रो के साथ में। और दोस्तों ये अगला संदेश आया जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता निहारिका और सुशांत नायक का। निसार अली जी का हमारे पास ये संदेश है धनोरी तेली वाला उत्तराखंड से, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू के साथ ये हमसे जुड़े हुए हैं। नंदेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल नवानकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मनहरेकर हमारे साथ।

शंकर तामुरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर के साथ। और ये जुड़े हैं डूंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। अगला जो संदेश है उसको हम तक पहुंचाने वाले हैं, ये है चूड़ी लाइन मुंगेली से, छत्तीसगढ़, मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज हमारे साथ जुड़े हैं, ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और समस्त विश्वकर्मा परिवार के सभी सदस्य, पश्चिम सिंह भूप चाईबासा, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप के साथ। तो दोस्तों ये थे वो सभी संदेश जिनके जरिए आप सभी हम तक जुड़े, हमसे जुड़े और इस कार्यक्रम से जुड़े, अपनी जो बातें हैं वो आपने हम तक शेयर की। और देखो बातों बातों में वक्त कितनी तेजी से गुजर गया कि पता ही नहीं चला। और हमारी जो आज की फिल्म भरोसा है जिसमें आशा जी, गुरुदत्त साहब, महमूद साहब की अदाकारी थी, वैसे दोस्तों इस फिल्म को देखकर भी और वैसे भी हम यही कहेंगे कि रिश्ते चाहे कोई भी हो उनकी सबसे बड़ी ताकत भरोसा होता है। और उम्मीद है आज का ये सफर, ये जो गीत हैं, ये सब आपके दिल को जरूर छुए होंगे। तो अब वक्त हो चला आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि 2:30 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी विदा लेना, लेकिन छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए इसी फिल्म से एक और खूबसूरत सा गीत। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर 1:40 होने को है। लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनतक सेवा च 25 साल पूरे होने मौके 17 सितंबर उन्होंने जन्मदिन से एक महीना चलने वाली सेवा संकल्प मुहिम शुरू करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसनायक मीटिंग की। दोनों नेताओं ने दोहराया कि दोवें देश विकास और अपने लोगों की भलाई लिए रल के काम करना जारी रखेंगे। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की 2 दिन मीटिंग अज

0: हासिल करते हुए अवामी खिदमत के अपने सफर को मजबूती से मुसलसल जारी रखा। बीजेपी के सदर ने जोर देकर कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में भारत की पेशरफ्त सिर्फ तरक्की तक महदूद नहीं रही बल्कि भारत की सकाफती शिनाख्त और विरसे को भी मजबूती मिली। उन्होंने मजीद कहा कि जिस वक्त जनाब मोदी ने मुल्क की क्यादत संभाली भारत को मफलूज पॉलिसी का सामना था और उसका शुमार दुनिया की 5 कमजोर मईशतों में होता था, लेकिन आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है।
1: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के लिए सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
0: सेवा संकल्प अभियान खून अथिया कैंप के साथ शुरू होगा। जनाब नबीन ने बताया कि वजीर आजम को तशक्कुर का इजहार करने के लिए गांव और शहरी इलाकों को जोड़ते हुए 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम आज से रवा माह की 15 तारीख तक भारत के दौरे पर होंगे। ये दौरा नायब सदर सीपी राधाकृष्णन की दावत पर हो रहा है। वो कल नायब सदर से मुलाकात करेंगे। इस्माइली बिरादरी के 50वें इमाम की हैसियत से मनसब संभालने के बाद प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम का यह भारत का पहला दौरा है। नई दिल्ली में क्याम के दौरान आगा खान सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेन्द्र मोदी, वजीर दाखिला और वजीर खारिजा जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। राजस्थान में शहरी मकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 162 शहरी मकामी बल्दियाती इदारों के लिए वोटिंग सिक्योरिटी के वसी इंतजाम के दरमियान हो रही है। बिहार में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है क्योंकि गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दीगर दरियाओं में पानी की सतह में कमी आ रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गंगा नदी पटना में गांधी घाट के मकाम पर खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर ऊपर, दीघा घाट के मकाम पर खतरे के निशान से 109 सेंटीमीटर और हाथीदह के करीब खतरे के निशान से 165 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में नदी की सतह में इजाफा देखा जा रहा है, जिससे नशीबी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। आबी वसाइल का महकमा और रियासती इंतजामिया की टीमें पुश्तों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। पटना से निधिश्री की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने कल तक बिहार, झारखंड, ओडिशा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरक के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे ने कहा है कि आइंदा 2 दिन के दौरान उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार जजायर में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायकी के साथ मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सिक्योरिटी, अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा किया। ब्रिक्स वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की हतमी मीटिंग मुंबई में शुरू हो गई है। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत का कौमी तख्सिया महीने का आगाज वाराणसी में हुआ। बीजेपी वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के अवामी जिंदगी में 25 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए इस महीने की 17 तारीख से एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। और भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 24 घंटे के दौरान मुल्क की मशरकी और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Defence Minister Rajnath Singh holds meeting with Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake in Colombo. Both leaders reaffirm to work for security, peace and prosperity of region. Final BRICS finance ministers and central bank governors meeting kicks off in Mumbai. Ministry of Women and Child Development National Nutrition Month launched in Varanasi. BJP to launch month-long Seva Sankalp Abhiyan from 17th of this month to mark 25 years of Prime Minister Narendra Modi in public life. Forecast of heavy rain over East

0: क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दीक्षानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। ये कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त

0: भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
1: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है इसमें। राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की। वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पर बाल वाटिकाएं चलती है। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
2: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, वे केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
2: प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
2: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के लिए सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन, दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
0: दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जांच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बम्बई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुद्दुचेरी में

0: सांवरी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए news.air.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस टियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूं। मैं आप सभी के होस्ट दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज है तारीख 9 यानी कि 9 सितंबर और आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे सितारे का जन्मदिन है। अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है डिसिप्लिन की। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, बेमिसाल

और बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में देने की जिद और मार्शल आर्ट। जी अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल आपने सही पहचाना, क्योंकि अगर मार्शल आर्ट और अनुशासन की बात होती है तो सबसे पहले हमारे जहन में एक ही नाम आता है और वो नाम होता है राजीव हरिओम भाटिया, यानी कि हम सबके चहेते अक्की या कहें कि अक्षय कुमार। जी हाँ दोस्तों, 90 के दशक में खतरनाक स्टंट करने वाला वो एक्शन हीरो जो कि सन 2000 आते आते हम सबको पेट पकड़कर हंसाने पे मजबूर किया और बन गया कॉमेडी किंग, या फिर देशभक्ति की फिल्मों को उसने किया, या फिर सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने वाला जिम्मेदार नागरिक का किरदार निभाया। आप कह सकते हैं कि अक्षय ने हर किरदार में जान फूंकी। तो चलिए आज उन्हीं की बातों को करते हैं और उन्हीं के इस शानदार सफर के बारे में हम बात करते हैं। तो करते हैं शुरुआत उन्हीं की एक खूबसूरत से फिल्म तू खिलाड़ी मैं अनाड़ी से। ये खूबसूरत सा गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में।

जी दोस्तों, दिल्ली के चांदनी चौक की तंग गलियों से सफर शुरू हुआ अक्षय कुमार का, जो कि उतना आसान भी नहीं था। जी, अमृतसर में वो पैदा हुए और उनका बचपन बीता दिल्ली के चांदनी चौक की तंग गलियों में। पढ़ने के बाद मार्शल आर्ट सीखने की उनको बहुत इच्छा हुई और वो पहुंच गए बैंकॉक। वहां उन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल की और अपने गुजर बसर के लिए वहां पर उन्होंने साथ साथ काम किया शेफ और वेटर का। वहां पर सीखने के बाद वापस आए, सीधे पहुंचे मुंबई और यहां पर उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। लेकिन किस्मत ने करवट तब बदली जब उनके एक स्टूडेंट के फोटोग्राफर पिता ने उन्हें मॉडलिंग का सुझाव दिया। जी हाँ, क्योंकि उस स्टूडेंट के फादर ने बोला कि भाई, आप तो दिखने में हीरो जैसे लगते हो, तो क्यों नहीं फिल्मों में ट्राई करते या फिर मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो। और ये सोचकर अक्षय कुमार पहुंच गए अपना फोटो शूट कराने के लिए, क्योंकि उन्हें लग गया कि भाई खाली इस ये मार्शल आर्ट सिखाने से तो उतना काम नहीं चलेगा कि आप अपना अच्छे से गुजर बसर कर सकें या अच्छे से पैसा कमा सकें। और यही सोचकर उन्होंने फोटोग्राफर का काम शुरू किया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अक्षय कुमार, जो कि आज के टाइम पर बहुत डिसिप्लिन और बहुत टाइमिंग को लेकर मशहूर हैं कि भाई वो एकदम जो टाइमिंग है उसके बहुत पक्के हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। वो

बड़े हीरो हैं और उनकी सफलता का जो सबसे बड़ा राज है वो है उनका अनुशासन, यानी कि उनका डिसिप्लिन। वो सुबह 4 बजे उठते हैं, रोजाना वर्कआउट करते हैं, कोई लेट नाइट पार्टियां नहीं करते और साल में 3 से 4 फिल्में पूरी करते हैं। और ये टाइम टेबल आज के नए कलाकारों के लिए तो वाकई में एक मिसाल के रूप में है। और आप ये देखेंगे कि जिस तरह से वो एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं उसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल जब वो सिखाया करते थे कराटे, उस वक्त में उनके एक स्टूडेंट के फादर ने उन्हें मॉडलिंग के ऑफर दिया, कहा कि भाई आप मॉडलिंग कीजिए और फोटोशूट कराइए। उसके बाद में अक्षय ने काफी ज्यादा कोशिश की और वो एक जगह पर उन्हें मौका मिला मॉडलिंग के लिए जाने के लिए। वहां पर उन्हें फोटोशूट कराना था, लेकिन वहां पर वो थोड़ा लेट से पहुंचे, थोड़ा नहीं बल्कि काफी ज्यादा लेट से पहुंचे थे। दरअसल वहां पर वो पहुंचे 1 घंटे से ज्यादा लेट, और 1 घंटे से ज्यादा लेट पहुंचने की वजह से उन्हें वहां पर बहुत कुछ सुनने के लिए मिला, बहुत कुछ उनको बातें बोली गई। और वही एक वक्त था वो जो बातें थी वो पूरी तरह से उनके दिल को छू गई, और उसके बाद से उन्होंने वादा किया अपने आप से कि मैं कभी भी वक्त को बर्बाद नहीं करूंगा, यहाँ तक कि मतलब टाइम की वैल्यू करूंगा। और वो दिन है और आज का दिन है अक्षय कुमार, जो अक्षय कुमार हैं वो अपने हर जगह पर हर काम पर बिल्कुल टाइम से पहुंचते हैं, बल्कि टाइम से पहले ही पहुंच जाते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि आज उनका बर्थडे है, तो वो अपने बर्थडे पे भी कुछ बहुत बड़ा तामझाम, बहुत बड़ी पार्टीज नहीं करते जैसा कि नॉर्मली हर कोई करता है, बल्कि अक्षय कुमार टाइम से रात को 9 बजे सो जाते हैं और सुबह अगले दिन जल्दी उठते हैं, 4 बजे उठते हैं और उसके बाद अपना केक काटते हैं। कहते हैं ना कि सूरज को जगाना आसान नहीं होता, लेकिन अक्षय कुमार हर रोज सुबह सूरज के उगने से पहले उठ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज इतने साल के बाद में भी आप देखिए ना, 50 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं, उसके बाद भी जब वो पर्दे पर 100 फीट की ऊंचाई से जंप लगाते हैं तो जो यंग एज के बच्चे हैं, जो कि 20-20 साल के लड़के हैं, वो भी उनके सामने पानी भरने लगते हैं और उनको अपना फिटनेस आइकन मानते हैं। वैसे वो किस्सा जब उनको टाइमिंग के लिए डांट पड़ी, उसके बाद उन्होंने पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की और उसके बाद वो बन गए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में खिलाड़ी नंबर 1।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ, और आपके साथ हूं मैं आपकी होस्ट और दोस्त प्रीति। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे अक्की कुमार यानी कि अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार जो कि भाई आज बहुत ज्यादा सफल

ये दोस्तों सन 1991 में फिल्म सौगंध से अक्षय कुमार हीरो बन गए और फिर वाकई में हर किसी ने वो तमाशा देखा। जी हाँ, क्योंकि सन 1992 में आई उनकी एक और फिल्म, 1991 में जो फिल्म आई सौगंध, उसे उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन उनको वो पहचान नहीं मिली जिसके अक्षय कुमार हकदार थे। और फिर 1992 में आई उनकी एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, और खिलाड़ी फिल्म आने के बाद तो मतलब ऐसा हुआ कि अक्षय कुमार का नाम खिलाड़ी कुमार ही पड़ गया, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक खिलाड़ी नाम वाली फिल्मों में काम किया, चाहे वो खिलाड़ी फिल्म हो, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ी 786, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। जी हाँ, और यही वजह है कि अक्षय कुमार का नाम खिलाड़ी कुमार हो गया। लेकिन 90 के दशक में, जी हाँ दोस्तों 90s में, जब हर कोई एक्शन सीन्स के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया करते थे, उस वक्त अक्षय कुमार ने अपने सभी स्टंट खुद किए, चाहे वो 100-100 फीट ऊंची इमारतों से छलांग लगाना हो या फिर हेलीकॉप्टर से लटकना हो। जी हाँ, हर तरह के स्टंट जो हैं वो अक्षय कुमार खुद किया करते थे, और शायद यही वजह है कि उनका ये जो खिलाड़ी कुमार नाम पड़ा वो बिल्कुल सही पड़ा।

जी दोस्तों, बिल्कुल हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि वो अक्षय कुमार जो कि एक्शन कुमार बन गए थे, जो कि खिलाड़ी कुमार बन गए थे, वो एक्शन से अलग भी कुछ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 2000 में आई फिल्म, प्रियदर्शन की फिल्म हेरा फेरी, जिसने अक्षय कुमार के करियर को एक नया रास्ता दिया, एक नया रूप दिया। इस फिल्म में राजू का किरदार निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि भाई उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो लाजवाब है, उसके बराबर कोई नहीं। और इसके बाद तो उन्होंने कॉमेडी फिल्मों की छड़ी ही लगा दी। गरम मसाला, वेलकम, सिंह स्कीम, भागम भाग जैसी बहुत सी फिल्मों में उन्होंने इस तरह के किरदार निभाए, इस तरह की एक्टिंग की कि देखने वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। फिर वापस से एक बार और बदलाव आया। वो बदलाव क्या था वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे ये खूबसूरत सा गीत फिल्म हेरा फेरी से। लेकिन उससे पहले कुछ हमारे श्रोताओं के जो संदेश है वो भी हम शामिल कर लेते हैं। और ये हमारे साथ जुड़े हैं ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, नितेश कुमार देवांगन हमारे साथ जुड़े हैं दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर के साथ पलारी छत्तीसगढ़ से, स्वर्ण सिंह गिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज के साथ, और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरमीत सिंह नीता हमारे साथ जुड़े हैं साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से जुड़े हैं अशोक कुमार सहगल जी, गुलाम साबिर राही मेरा जहां हमारे साथ जुड़े हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, सैयद मसरूर जुड़े हैं शाइना हसन के साथ, नाजिया इब्राहिम के साथ सहारनपुर कुमार हेड़ा से, ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी और सीता गीता हमारे साथ जुड़े हैं, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी, लवली आरती अरोड़ा, भवरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा नेहा राजू जगदीश देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिवा प्रेम कपिल शिवांश संगीता गोप हमारे साथ जुड़े हैं पश्चिम सिंह भूप चाईबासा झारखंड से, अस्तुपुरा जिला मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी और बहादुरगंज गाजीपुर से भी जुड़े हैं, बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना आशीष राजा डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशु रिदान खुराना हमारे साथ जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं कराची से अमर रमेश कुमार खत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नाभा जिला पटियाला पंजाब से जुड़े हैं सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु के साथ में, और पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप गुगलानी जी के साथ में, और ये संदेश इन्होंने हम तक पहुंचाया है मॉडल टाउन करनाल से, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये संदीप जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं कमल सहानी जी के साथ पिंगावाला चौक गुरैया जालंधर पंजाब से, तुलसी मस्कीन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये अगला जो संदेश है उसको हम तक पहुंचाने वाले हैं संजय ढींगिया जी, नमन अपार ढींगिया के साथ बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, फारूक अली खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पी एस नवानकर, निर्मला विशाल नवानकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, और ये जो अगला संदेश है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी जी हमारे साथ जुड़े हैं डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, चिरमेरी कोरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ राम सौदा, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, गांव फरासी जिला हिसार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी दोस्तों, और भी बहुत से संदेश हैं, निसार अली जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वर्ण सिंह गिल जी एक बार फिर से जुड़े हैं, सुदर्शन मुखी शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये थे वो संदेश, और लीजिए अभी हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत फिल्म हेरा फेरी से।

जी दोस्तों, आज कार्यक्रम में एक ही कलाकार में हमने बात की अक्षय कुमार जी के बारे में, जो कि चांदनी चौक की तंगलियों से निकलकर बॉलीवुड के शहंशाह अक्षय कुमार बने। और दोस्तों, यहां तक बनने का जो उनका सफर था वो बहुत ही ज्यादा एक अनुशासन के साथ में था। और उनका जो ये डिसिप्लिन है वो हमें यही सिखाता है कि अगर आपको दुनिया में कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो आपको डिसिप्लिन तो बिल्कुल लाना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में शामिल करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों, ये सफर हमारा यहीं तक था और हमने आज अक्षय कुमार जी के बारे में ढेर सारी बातें की। तो आप मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की, क्योंकि ये सफर हमारा यहीं तक है। और 3 बजे हमारे साथ होंगी अर्चना गोयल जी, जो लेकर आएंगे कार्यक्रम मैटरनी मेलेडी। तो अब मैं उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत से गीत के साथ आपको छोड़े जाती हूँ फिल्म धड़कन से। मुझे दीजिए अनुमति और इंतजार कीजिए अर्चना गोयल जी का। नमस्कार।

आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। सामने आपको बता दें, फिर कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। 3:30 हम पेश करेंगे महबूब खान की यौम पैदाइश के हवाले से उनकी शख्सियत और खिदमत के रेफरेंस में हिंदुस्तानी सिनेमा का पहला शोमैन, ये फीचर तहरीर डॉक्टर इरशाद परवेज की होगी। 4:00 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5:00 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: एम बी 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डी डी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हो जाते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, शगुफ्ता यास्मीन से खबरें सुनिए। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी जिंदगी में 25 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए इस महीने की 17 तारीख से एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ब्रिक्स वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की हतमी मीटिंग मुंबई में शुरू हो गई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कोलम्बो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सिक्योरिटी, अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा किया। मशरक वस्ता में तनाजे की शिद्दत इख्तियार कर लेने के सबब आज आलमी सतह पर तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावुज कर गई हैं और भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटे के दौरान मुल्क की मशरकी और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर अवामी जिंदगी में उनके 25 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए इस महीने की 17 तारीख से एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। कल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने कहा कि वजीर आजम आइंदा 7 अक्टूबर को अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लेंगे। 2001 में इसी दिन जनाब मोदी ने गुजरात के वजीर आला के तौर पर

0: लगातार मुहिम जारी रखे हुए है। इसराइल ने ब्रितानिया की जानिब से इसराइली बस्तियों से आने वाली अशिया पर पाबंदियां लगाने के जवाब में मशरकी यरूशलम में वाकई बरतानवी कौंसल खाने को बंद करने का हुक्म दिया है। इसराइल के वजीर खारजा ने जिन इकदाम का ऐलान किया है उनमें मुतअद्दिद बरतानवी एमपीज के इसराइल में दाखिले पर पाबंदी भी लगाई गई है। भारत ने सऊदी अरब के खुदमुख्तार इलाके खासतौर पर सिविलियन और इक्तिसादी मराकज को निशाना बनाने वाले हौसियों के हमले की मजम्मत की है। सऊदी अरब पर हमलों से मुतालिक मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को जख्म पहुंचाते हैं। आज आलमी सतह पर तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावज कर गईं। इसकी वजह मशरक़ वुस्ता में तनाजे में शिद्दत और मशरक़ वुस्ता से तवानाई की सप्लाई में मजीद रुकावट पड़ने का खदशा है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $2.15 या $2.2 का इजाफा हुआ और यह $100.07 फी बैरल तक पहुंच गई। इसी तरह अमरीका में वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में $1.70 या $1.83 का इजाफा दर्ज किया गया और यह $94.73 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमतों में पिछले महीने के अवाइल से एक चौथाई का इजाफा दर्ज किया गया। इसकी वजह अमरीका और ईरान के दरमियान 6 माह पुराने तनाजे के मुस्तकिल हल का नजर न आना है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कल तक बिहार, झारखंड, ओडिशा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरक के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 दिन के दौरान उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार जजायर में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने आज साहिली आंध्र प्रदेश, केरला और माहे में गर्मी और हब्स की सूरत हाल रहने की पेशगोई की है। बिहार में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है क्योंकि गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दीगर दरियाओं में पानी की सतह में कमी आ रही है। ताहम कई दरियाओं में पानी खतरे के निशान से अब भी ऊपर बह रहा है। सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। दरियाए गंगा पटना में गांधी घाट के मकाम पर खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर ऊपर, दीघा घाट के मकाम पर 109 सेंटीमीटर और हाथीदह के करीब खतरे के निशान से 165 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में दरिया की सतह में इजाफा देखा जा रहा है जिससे नशीबी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। बीजेपी वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के अवामी जिंदगी में 25 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए इस महीने की 17 तारीख से 1 माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ब्रिक्स वजरा खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की हतमी मीटिंग मुंबई में शुरू हो गई है। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारादेसनायके के साथ मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की सिक्योरिटी, अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1073 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में पुलिस पब्लिक फिल्म का नगमा जिसे मौसीकी सजाया है राम लक्ष्मण ने।

मेरी जान और आनंद राज आनंद की आवाजों में आप सुन रहे थे कांटे फिल्म का ये नगमा जिसे मौसीकी सजाया था आनंद राज आनंद ने। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है महबूब खान की शख्सियत और खिदमत के हवाले से डॉक्टर इरशाद परवेज का तहदीर करदा फीचर हिंदुस्तानी सिनेमा का पहला शोमैन। ये फीचर आज उनके यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत है। ये फीचर का पहला हिस्सा है।

खान का असल नाम रमजान खान महबूब खान था। उन्होंने बड़ौदा के पास वाके सरार नाम के एक छोटे से गांव के एक निस्बतन गरीब खानदान में सन 1907 में आंखें खोली। महबूब के वालिद पुलिस में सिपाही थे और उनके दादा भी पुलिस के जमादार थे। उस जमाने में सरार और आसपास के कस्बों में कभी कभी सफरी सिनेमा वाले आते थे और अपनी गाड़ी की दीवार पर पर्दा लगाकर खामोश फिल्में दिखाया करते थे। उन टूरिंग थिएटर वालों के साथ मौसीकार और साजिंदे भी होते थे जो मनाजिर की मुनासिबत से दोने बजाते थे। कंसिल महबूब को खामोश फिल्मों की जादुई और तिलिस्माती फिजा बहुत भाती थी और वो वहां खींचे चले आते थे।

16 साल की उम्र में महबूब खान घर से भागकर मुंबई आ गए, लेकिन उनके बाप भी पक्के पुलिस वाले साबित हुए। उन्होंने थोड़े ही अरसे में मुंबई में अपने बेटे को ढूंढ निकाला और कान पकड़कर वापस गांव ले आए। उस जमाने के वालदैन हर चीज का एक ही इलाज तजवीज किया करते थे, इसलिए पास के गांव काशीपुरा की फातिमा बी नाम की एक कमसिन लड़की से उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उनकी शादी कर दी गई।

0: लेकिन इस शादी से कोई फायदा ना हो सका। महबूब खान अपने आप में गुम रहने लगे। वो ना कुछ बोलते ना किसी की सुनते। ज्यादातर वक्त वो पास के बिली मोरा नामी मकान के एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठे हसरत से मुंबई जाने वाली रेलगाड़ियों को बस घंटों तकते रहते।
1: वो सोचते रहते थे कि वो दिन कब आएगा जब उनके पास मुंबई का टिकट खरीदने के पैसे होंगे। इस्माइल जीवा अपने कंपार्टमेंट की खिड़की से रोज महबूब को प्लेटफॉर्म पर बैठे देखते थे। कई महीनों तक महबूब को उदास और तन्हा प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठे देखकर इस्माइल जीवा को एक दिन तरस आ गया। उन्होंने महबूब को बुलाया और कहा, तुम्हारा अज्म और इस्तेखलाल बताता है कि तुम्हारा जैसा लड़का एक दिन कुछ न कुछ बड़ा जरूर करेगा। क्यों जिंदगी खराब करते हो, जाओ और कुछ काम काज करो। महबूब ने कहा, इस्माइल चचा, मैंने अपनी जिंदगी का मकसद तय कर लिया है। मुझे बस फिल्मों में काम करना है, चाहे जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने शौक के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। चचा, आपने बीसियों बार मुझे अपनी रेलगाड़ी में मुफ्त सफर कराया है, एक आखिरी एहसान ये कर दीजिए कि बस एक बार मुझे मेरे ख्वाबों की नगरी पहुंचा दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस्माइल जीवा तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोले, तुम्हारा बाप पूरी जिंदगी मुझे माफ नहीं करेगा। वो कहते हैं ना कि पुलिस वालों की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। फिर कुछ सोचकर बोले, चलो इतनी पुरानी दोस्ती के बाद तुम्हारे बाप को दुश्मन भी बना लेते हैं। कब जाना चाहोगे मुंबई? महबूब ने कहा, अभी इसी वक्त। इस्माइल चचा ने कहा, बैठ जाओ। और ट्रेन चल पड़ी। मुंबई पहुंचकर इस्माइल चचा ने महबूब को पहले गले लगाया और फिर कहा, देखो गरीब आदमी हो, मेरी कुल बचत ये 3 रुपए ये जेब में है, ये रख लो।

इस तरह दिल में सैकड़ों ख्वाब और 3 रुपए लेकर सन 1929 में महबूब अपने ख्वाबों के शहर मुंबई आ गए। याद रखने की बात यह है कि महबूब पढ़े लिखे नहीं थे और इस पर सितम बालाए सितम ये कि गुजराती जबान के सिवा कोई और जबान बोल ही नहीं सकते थे। मुंबई पहुंचकर महबूब खान ने जिंदा रहने के लिए पहले कई तरह के छोटे छोटे काम किए, लेकिन अपने दरीना ख्वाब की ताबीर तो उनका असल मकसद था। और ख्वाब की ताबीर का मरहला तब शुरू हुआ जब महबूब खान एक फिल्म कंपनी में मुलाजमत के लिए जा पहुंचे। अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने इस फिल्म कंपनी के लोगों का दिल जीत लिया। अर्देशिर ईरानी की कंपनी इंपीरियल स्टूडियो कहलाती थी, जिसमें एक जमाने में महबूब खान को 30 रुपए हर माह तनख्वाह मिला करती थी। महबूब खान ने अर्देशिर ईरानी की कई फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट यानी के बहसियत एक्स्ट्रा काम किया। इंपीरियल स्टूडियो में एक मरहला वो भी आया जब महबूब मुल्क की पहली बोलती फिल्म आलमारा के हीरो बनते बनते रह गए।

बाद के दौर में यानी 1931 में एक मोड़ उनकी जिंदगी में तब आया जब महबूब खान और उनके कई दूसरे दोस्तों ने सागर मूवी टोन्स में काम करना शुरू किया और ये ताल्लुक उनके लिए एक फाले नेक साबित हुआ। देखते ही देखते महबूब खान ने फिल्मों की तकनीकी चीजों की जबरदस्त महारत हासिल कर ली। दूसरी जानिब वो फिल्म के तकनीकी पहलुओं पर भी खातिर ख्वाह तवज्जो देते थे और फिल्म की कहानी और मंजरनामा खुद लिखा करते थे। उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री की बागडोर गुजराती फिल्म साजों के हाथ में थी। तिजारती महारत रखने वाले ये लोग निहायत शरीफ, नेक और ईमानदार हुआ करते थे। उस दौर के नुमाया नाम थे सागर मूवी टोन के अंबालाल पटेल, चमनलाल देसाई और चुन्नी भाई शाह वगैरह।

महबूब जिस दौर में सागर मूवी टोन में एक्स्ट्रा के तौर पर काम करते थे वो फरीदून ईरानी से अक्सर कहते थे, मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ और एक दिन जरूर बनूंगा। फरीदून ईरानी जवाब में कहते, अबे दस्तखत करना तो पहले सीख ले।

0: 대라 잡고자 엄마임에 자 와인님에 내가 도저히 좋대라
1: मेरी आंख खुल गई, देखा तो आसपास कोई नहीं था। मेरे ख्याल आया जरूर ये मेरे लिए ख्वाजा साहब की बशारत थी।

0: महबूब अजमेर से लौटे तो सागर मूवी टोन में काम करने वाले दोस्तों ने कहा, जब भेजा अंदर तो बगैर बताए गायब हो गया था। इस बात से सेठ बहुत नाराज है, कहीं ऐसा न हो तुझे काम से निकाल दे, तो जाकर फौरन माफी मांग ले। महबूब जब वहां पहुंचे तो देखा कंपनी का मालिक अपने फिल्म डायरेक्टर पर गर्म हो रहा था। उसने गुस्से में कहा,
1: तुम अपने को क्या समझता है, मैं एक एक्स्ट्रा को लेकर फिल्म बनाऊंगा लेकिन तेरे जैसे आदमी के साथ काम नहीं करूंगा, क्या समझता है अपने को।
0: बड़ी असना महबूब वहां जा पहुंचे, सेठ सांस लेने के लिए रुका तो उन्होंने फौरन कहा, सेठ मेरे को माफ कर दो, मैं अजमेर गया था और इसी वजह से इतने दिन गैर हाजिर रहा। सेठ की कुछ समझ में नहीं आया कि ये लड़का कौन है। उसने पूछा, वो कौन है और क्या करता है। महबूब ने कहा, सेठ मैं एक एक्स्ट्रा हूं। सेठ जी जिस डायरेक्टर को डांट रहे थे उससे बोले,
1: यो देखो मिल गया, ये एक्स्ट्रा है, मैं इसके साथ फिल्म बनाऊंगा, जा कोई स्टोरी सोच, तुझे फिल्म बनानी है।

कहा जाता है तब से फिल्म इंडस्ट्री में रिवायत चली आ रही है कि बड़े बड़े फिल्मसाज और हिदायतकार अपनी फिल्मों की कामयाबी के लिए ख्वाजा के दरबार में हाजिरी देते हैं और अपनी मुरादे पाते हैं। महबूब ने सेठ जी की कंपनी सागर मूवी टोन के लिए जजमेंट ऑफ अल्लाह अलमारूफ अल हिलाल नाम की फिल्म बनाई जो एक कामयाब फिल्म साबित हुई। कंपनी के मालिकान ने इस कामयाबी से मुतासिर होकर इस नौजवान को दूसरी फिल्म वतन बनाने के लिए दी। ये फिल्म भी कामयाब साबित हुई।

जिस दौर में महबूब ने काम शुरू किया, उस दौर में बुलंद बांग मुकालमों, मार धाड़ और तिलस्माती और मस्नूई अंदाज की फिल्मों का दौर था। महबूब खान ने भी अपनी कई इब्तदाई फिल्में इसी अंदाज में बनाई, जिनमें जजमेंट ऑफ अल्लाह और अली बाबा 40 चोर जैसी फिल्में शामिल थीं, जिन्हें फिल्म वेंचर्स के जौक की फिल्में कहा जा सकता है।

हारे हैं, सच तो ये है कि गम के मारे हैं।

0: रहे आबाद ये वतन अपना।
1: लेकिन इन फिल्मों में भी महबूब एक पसे पर्दा और बैनुस्सुतूर पयाम रखना नहीं भूलते थे। महबूब इन फिल्मों को अपने दूरस्थ मकसद की तकमील का रास्ता और वसीला समझते थे। उनके नजदीक मस्नूई से मस्नूई फिल्म को भी एक बामकसद फिल्म बनाया जा सकता था। जैसे जैसे उनकी पकड़ नाजरीन की नब्ज पर बढ़ती गई, हकीकत पसंदाना फिल्मों की पेशकश का उनका रास्ता भी हमवार होता चला गया।

अपनी पे दर पे कामयाबियों से हौसला पाकर महबूब खान ने खुद अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोल ली और उसके बाद एक से बढ़कर एक ऐसी बेमिसाल फिल्में नाजरीन को दी जो आज भी याद की जाती हैं। जल्द ही उन्होंने एक ही रास्ता नाम की एक फिल्म बनाई और उसके बाद कई ऐसी फिल्में तख्लीक की जिनमें हिंदुस्तानी मुआशरे के सुलगते मसाइल, अमीरों के जरिए गरीबों का इस्तेहसाल और समाज में औरत के मकाम को उजागर किया गया था। जागीरदार, बहन, रोटी और औरत उनकी ऐसी ही बामकसद फिल्में थी।

महबूब खान की फिल्मों का इब्तदाई लोगो आज भी लोगों को याद होगा। फिल्म के पर्दे पर सबसे पहले हंसी हथौड़ी यानी कि हैमर और सिकल पेश करने का काम भी महबूब ने ही अंजाम दिया। वो नजरियाती एतबार से खुद को मेहनत कश तबके से

बदतर तस्वुर करते थे और इसीलिए उन्होंने हैमर और सिकिल का लोगो अपनी फिल्मों के लिए मुंतखब किया। उनकी फिल्मों की शुरुआत इसी हंसी और हथौड़ी के साथ होती थी और इसी के साथ ही रफी गजनवी की बारूब आवाज में आगा हश्र कश्मीरी का ये शेर सुनाई देता था, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। शायरों, अदीबों और फनकारों की जितनी कदर महबूब खान करते थे, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है।

कहा जाता है कि जब तनवीर नकवी ने अनमोल घड़ी के लिए ये गीत लिखा, आवाज दे कहा है, तो महबूब खान को यकीन न आया कि 20 बरस का एक नौजवान ऐसा बाकमाल गीत लिख सकता है। उन्होंने नौशाद से कहा कि इस लड़के से कहो कि वो दूसरा गीत मेरे दफ्तर में आकर लिखे। इस पर नौशाद ने तनवीर नकवी को महबूब के दफ्तर में बुलाया, जहां महबूब ने उन्हें दूसरे कमरे में बिठा दिया। तनवीर नकवी ने 20 मिनट के अंदर अंदर दूसरा गीत लिख दिया, जिसके बोल थे, जवा है मोहब्बत, हसी है जमाना। महबूब खान ने यह गीत पढ़ा तो फौरन तनवीर नकवी को गले लगा लिया और इस तरह तनवीर नकवी अनमोल घड़ी के गीतकार बन गए।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म थी जीवन मृत्यु। और समझ लीजिए सुनिए लता मंगेशकर के बाद भी प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म है यादगार, नगमनिगार इंदिवर, मौसीकार कल्याण जी आनंद जी।

अशरफ रफी और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे कश्मीर की कली फिल्म का नगमा। नगमा गाते सिच बिहारी मौसीकार ओपनियर। और लीजिए सामने सुनिए मुकेश की आवाज में प्रोग्राम की अगली पेशकश जिंदगी और तूफान फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जाने माने उम्र की वजारत पिछले 30 साल से जवो जवाहर नवोदय विद्यालयों में यूथ पार्लियामेंट मुसाबिके का इनेकाद कर रही है। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए कौमी यूथ पार्लियामेंट मुसाबिके की स्कीम के तहत मुल्क भर के नवोदय विद्यालय के इलाकों में पहले 100 विद्यालयों में 2025-26 के लिए 27वां मुसाबका मुनाकिद किया गया था। बीजेपी वजीर आजम ने मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर आवामी जिंदगी में उनके 25 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए इस महीने की 17 तारीख से 1 माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। कल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी सदर नितिन नवीन ने कहा कि वजीर आजम आइंदा 7 अक्टूबर को आवामी खिदमात के 25 साल मुकम्मल कर लेंगे। 2001 में इसी दिन जनाब मोदी ने गुजरात के वजीर आला के तौर पर अपनी मुद्दत कार का आगाज किया था। उन्होंने मजीद कहा कि इन बरसों के दौरान जनाब मोदी ने अवामी खिदमत से कौमी खिदमत के मंत्र से रहनुमाई हासिल करते हुए अवामी खिदमत के अपने सफर को मजबूती से मुसलसल जारी रखा। बीजेपी के सदर ने जोर देकर कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में भारत की पेशरफ सिर्फ तरक्की तक महदूद नहीं रही बल्कि भारत की सकाफती शनाख्त और विरसे को भी मजबूती मिली। उन्होंने मजीद कहा कि जिस वक्त जनाब मोदी ने मुल्क की बागडोर संभाली भारत को मफलूज पॉलिसी का सामना था और उसका शुमार दुनिया की 5 कमजोर मीशतों में होता था, लेकिन आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मीशत है। सेवा संकल्प अभियान खून अतिया कैंप के साथ शुरू होगा। जनाब नबीन ने बताया कि वजीर आजम को तशक्कुर का इजहार करने के लिए गांव और शहरी इलाकों को जोड़ते हुए 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस महीने की 17 तारीख से 17 अक्टूबर तक आवाम की शमूलियत के साथ सेवा मेरा योगदान प्रोग्राम भी मुनाकिद किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आज आलमी सतह पर तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावज कर गई। इसकी वजह मशरक़ वस्ता में तनाजे में शिद्दत और मशरक़ वस्ता से तवानाई की सप्लाई में मजीद रुकावट पड़ने का खदशा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक ब्रेंड खाम तेल की कीमत में 2.15 डॉलर या 2.2% का इजाफा हुआ और ये 100.07 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई। इसी तरह अमरीका में वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 1.70 डॉलर या 1.83% का इजाफा दर्ज किया गया और ये 94.73 डॉलर फी बैरल हो गई। ब्रेंड खाम तेल की कीमतों में पिछले महीने के अवायल से 1/4 का इजाफा दर्ज किया गया है। इसकी वजह अमरीका और ईरान के दरमियान 6 माह पुराने तनाजे के मुस्तकिल हल का नजर न आना है। भारत इस महीने की 22 से 27 तारीख तक चीन के शंघाई में मुनाकिद होने वाले 48वें आलमी स्किल्स मुकाबले में पहली मरतबा हुनरमंदियों के 11 नए जुमरों में हिस्सा लेगा। हुनरमंदी के फरोग और सनतकारी की वजारत ने कहा कि तकरीबन 70 अफराद पर मुश्तमिल टीम स्किल इंडिया 64 स्किल में से 63 में हिस्सा लेगी। नेपाल में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,365 हो गई है। सैलाब से मुतासर इलाकों से मजीद लाशें बरामद हुई हैं। बचाव टीमें 5,326 अफराद के लिए लगातार तलाशी मुहिम जारी रखे हुए हैं। इनमें कम से कम 589 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं जो अब भी लापता हैं। अब तक 102 लाशों को शनाख्त का अमल मुकम्मल करने के बाद उनके अहल खाना के सपुर्द किया जा चुका है। सिक्योरिटी अहलकारों ने नामालूम अफराद की 1,147 लाशों को महफूज तरीके से रख रखा है। इसके लिए तमाम मुकर्रा जाब्तों का ख्याल रखा जा रहा है। वज़ीरे ख़ारिजा ने आज कहा कि काठमांडू में मौजूद भारतीय फॉरेंसिक टीम ने अपने काम में नुमाया पेशरफ की है और अब तक 1,400 से ज्यादा डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है। वज़ीरे ने बताया कि टीम ने अब तक 378 डीएनए प्रोफाइल्स तैयार किए हैं। इसी दौरान भारत की मुश्तरका तकनीकी टीम ने आज चेलिमी सुरंग में पानी निकालने और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। ताहम सुरंग की ढलान और महदूद रसाई की वजह से टीम को जदीद तरीके इस्तेमाल करने के बावजूद मुश्किलात का सामना है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि हालिया सिफारती कोशिशों से यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन मुज़ाकरात की बहाली में मदद मिलेगी। जनाब गुतेरेस ने अमरीका के आला सफीरों के रूस और यूक्रेन के हालिया दौरे के बाद यह बयान दिया है। इसराइल ने बरतानिया की जानिब से इसराइली बस्तियों से आने वाली अशिया पर पाबंदियां लगाने के जवाब में मशरक़ी यरूशलम में वाक़ई

ऑल इंडिया रेडियो दासराय की प्रोग्राम है हरजीत कौर हाजरे तुहाडे कीते आज दा प्रोग्राम घेन के आज असा तुहाको सूफी संत शेख फरीद बारे दसे सा ते नाल ही सूफियाना कलाम दा आनंद भी माणे सा। सूफी संता विच भगत शेख फरीद जी दा नाम अगो थी के गिदा वेंदा इन्हा को कई नामा नाल पछाणा वेंदा जिए भगत शेख फरीद जी बाबा फरीद जी शेख फरीद जी बाबा फरीद जी शकरगंज। शेख फरीद जी का जन्म वेला 1173 ईस्वी तो 1266 ईस्वी है। जिला मुल्तान विच शेख जमालुद्दीन सुलेमान ते कुरशम बीबी दे घर इन्हा दा जन्म थिया। बचपन विच ही आप बहु गुणी है बहु उच्चे संस्कारां दा पालन करेंदे हुए इन्हा विच गुण भरे दे गए। पहला कुछ पढ़ाई कीती है उस तो बाद कुछ वेला मौलाना मिनहाजुद्दीन तिरमिजी दी मस्जिद दे मदरसे विच भी पढ़ाई प्राप्त कीती है। तुहाको इना बारे वया बहु कुछ दसे सा इस तो पहला एक कलाम सुनेंदे हा गावन आले हिन गुलाम अली।

शेख फरीद दी अगू गल करें दे हां फरीद जी को सारी कुरान याद है हिक दे इन्हा दी मुलाकात ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दे चेले शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाल थी आखा वेंदा कि मसूद मस्जिद विच बैठे अपनी पुस्तक नाफे पढ़ेंदे पाई है नाफे दा मतलब है फायदे आली जदन बख्तियार काकी उस तो पुछा कि तुसा के पढ़सो ता इन्होंने उसी वेले आखा नाफे गुरुजी वाला पुछा है नाफे नाल नफा थिया के ना ता बहुत प्यार नाल फरीद बोले हजूर नफा ता मेको तुहाडे कोल आवन विच ही थिएगा जबकि ए इन्हां दी पहली मुलाकात है पर काकी जी विच इन्हां को अपने गुरु मुर्शिद दे दर्शन थी गए है इन्होंने अपने आप को उन्हां दे चरणा विच समर्पित कर दिता मुर्शिद दे शरीर त्याग देवन दे बाद ए चिश्ती घराने दे 17वें वारस बने हवे 1237 ईस्वी विच इन्हां को फरीदुद्दीन बल मिल्लत दी उपाधि नाल नवाजिया गया जिसका मतलब है धर्म ते जाति दी माला दा मिलान इस उपाधि मिलन तो बाद ए फरीद नाम तो जाने गए हई लोग इन्हां को फरीद कहावन लगे ते आओ एक

विद्वान रहे हैं। कुरान दिया मुश्किल आयतों को फरीद आसान तरीके लोगों को समझा दे, इंज कोई सूफी संत क्या नहीं समझा सकते। इथे इन्हों की मशहूरी थी दी गई। इथो टिकन हजरत निजामुद्दीन औलिया भी इन गल को स्वीकार करें नहीं कि कुरान औखी है, पर कुरान दी सौखी ते नाल ही भाव भरा मतलब दसेना उन्हें अपने मुर्शिद भगत शेख फरीद जी शकरगंज तो सुना है। उन्हें जिहा बहु विस्तार नाल समझावना उन्हें

सुना, भगत शेख फरीद जी आखा करते हैं कि परमात्मा को नरमाई नाल ही प्राप्त किया वेंदे। हे बंदे, तू वेले को समझ, वेले दा मूल पछाण। हर बंदा एक नियत वेले किते ही संसार विच आउंदा है, ते ओ वेला सिर्फ परमात्मा ही जान सकसे। बंदे को चाहिदा है कि ओ वेले को सही इस्तेमाल करे, सिर्फ संसार दिया शेयर इकट्ठिया करने ची ना गवावन जे। फरीद आखते, पता ही कहनी कद उसके साह मुक जावन। संसार दे भव सागर को पार करन कीते परमात्मा नाम दे कश्ती वेला रहन दे बड़ा गिननी चाहिदी है। ते हुण वला एक कलाम सुनें दे हां, नहीं मैनू इश्क हुलारे देंदा आवाज लाग सचती बाटिए।

रची गई बाणी बहु उच्ची ते सुची है। इन्हां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच भी दर्ज है, जो प्रेरणा देवण वाली है। जिवे फरीदा जी तो अकल लतीफ काले लिख न लेख, अपना रे गिरिवान मह सिर नीवा कर देख। फरीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भूख, जिन्ना खादी चोपड़ी घने सहनगे दुख। काले मैडे कपड़े काला मैडा वेस, अवगुण भरिया मैं फिरा मुख कहन दरवेस। हिकना दा बहु वधिया श्लोक है, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगई पल्ले सब किच पाए। बाबा फरीद ने क्या खूब आखा है, एक मिसाल है घिनो सुनो। देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डोली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी, चार दिनां दा मेला दुनिया वना बन गई मिट्टी दे ढेरी। तू वी मिट्टी मैं वी मिट्टी, जात पात दी गाल ना कर तू, जात वी मिट्टी पात वी मिट्टी, जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। इंज शेख फरीद साकू जिंदगी जीवन दी जात दसे नहीं कि किसी को भी बुरा ना आखो, बुरे दा भला करो, सवेरे सवेरे उस मालिक को याद करो, किसी दा दिल ना दुखावना, जिथा लालच है उथा सच्चा प्यार नहीं थी सकता। फरीद जी की जिंदगी बाणी विचार बहु उच्चे है, जे हर कोई इस तरह दे संतां दी वाणी को जिंदगी विच उतार घिने ता किथे नफरत ना थी सी। ते प्रोग्राम दे आखिर विच सुनेंदे हां बरकत सिद्धू दी गाई ए काफी, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू।

Mama, kitty.

वारस शाह फिल्म दा हुणे तुसीं एक गीत सुनिया। इस गीत नूं आवाज दित्ती सी अलका याग्निक ते कविता कृष्णा मूर्ति ने। इस फिल्म दे विच जूही चावला गुरदास मान होना ने मेन लीड रोल निभाया सी। इस दे नाल ही अगला गीत फिल्म एक कुड़ी पंजाब दी, गीत नूं आवाज दित्ती पैमेला जैन ते अमरिंदर गिल ने।

0: ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ।
1: ਮਤਲਬ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ
0: ਸਰ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ।
1: ਅੱਛਾ ਏਕਮ ਜੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ। ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਹਦੇ ਚ?
2: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ੀ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
3: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में 400 गोड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रूपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
2: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया।
3: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक से मुलाकात की और भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने पुष्टि की कि भारत और श्रीलंका क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से काम करते रहेंगे। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। इसके अलावा भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, डीजी फिनिक्स, पायोनिक्स, वाइट बिट, फिक्स्ड फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय

0: महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने दो और लोगों को जबरन गायब कर दिया है। इससे बलूच लोगों के गायब होने और प्रभावित परिवारों को जानकारी न मिलने को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। अहमदाबाद में शीतल देवी ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में तथा हरविंदर और भावना ने पैरा रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज। और अब समय हो गया है कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम,
1: राम। कुसुम बहन कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और आज के हमारे कार्यक्रम में जानकारी भी होगी और साथ साथ मनोरंजन भी होगा।
0: जी बिल्कुल, और बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम समय समय पर बताते रहते हैं लोकेंद्र भाई। एक ऐसी ही योजना है संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना, किसानों को सस्ते कृषि ऋण उपलब्ध कराने की एक केंद्र सरकार की ये योजना है। इसके तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अल्पकालिक फसल ऋण बहुत कम ब्याज दर पर दिए जाते हैं।
1: बिल्कुल कुसुम बहन, और इसके साथ साथ हम अपने भाइयों को ये भी बता दें कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत 3 लाख तक के अल्पकालिक ऋण पर ब्याज सहायता का प्रावधान भी है और इसके साथ साथ ऋण की सामान्य रीति ब्याज 7% है। सरकार पात्र ऋणदात्री संस्थाओं को 1.5% की ब्याज सहायता प्रदान करती है।
0: बिल्कुल, और अब हम बता दें कि कौन कौन हो सकता है इसका पात्र। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र वही लोग हो सकते हैं जैसे जो भी सभी व्यक्ति संयुक्त किसान जो अपनी जमीन पर खेती करते हैं, पट्टेदार और बटाईदार किसान जो दूसरों की जमीनों पर खेती करते हैं, स्वयं सहायता समूह, किसानों के समूह या संयुक्त सेवा वाले समूह, पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन करने वाले किसान भी इसके पात्र हैं।
1: बिल्कुल कुसुम बहन, और देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है, हम अपने भाइयों को ये भी बता दें कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को समय पर और सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, साहूकारों पर निर्भरता कम करना, कृषि उत्पादन बढ़ाना और इसके साथ साथ छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
0: बिल्कुल, और इसके लिए प्रक्रिया ये होगी कि कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो आप अपनी नजदीकी वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक में जा सकते हैं, दस्तावेज जमा करवा सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पहचान पत्र, आधार कार्ड जो होता है, पैन कार्ड होता है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की आवश्यकता होती है, और ये सभी आप जमा करवा सकते हैं और आप इसके पात्र बन सकते हैं। तो ये तो हुई संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के बारे में। तो अब हम चलते हैं, आपको बातचीत सुनवाते हैं आपको कृषि समाचार दर्शन। इसके अंतर्गत आपको सुनवाते हैं सुगंधित फसलों का खेती और प्रसंस्करण। किसानों से बातचीत कर रही हैं संध्या गुप्ता।
1: देखिए, उन्होंने अनुभवी किसानों से बातचीत की है, वो अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, तो आइए सुनते हैं उनके अनुभव।
0: जी
2: नमस्कार, मैं संध्या कृषि समाचार दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के अंक में सुगंधित फसलों की खेती और प्रसंस्करण करने वाले किसान अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
3: हमारा नाम राम परवेश वर्मा, ब्लॉक हमारा मसौली, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। खेती से

0: तो हम बचपन से जुड़े हैं भाई, मंथन तो हमारे बचपन से हो रहा है। 1 से 1.5 हेक्टेयर में हम लोग कर रहे हैं। बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त था इसके लिए, और समय मार्च महीना पहला हफ्ता या फरवरी का दूसरा सप्ताह, जिस हिसाब से नर्सरी तैयार हो जाए। एक आध हफ्ता 10 दिन के लिए तो खैर कोई बात नहीं है, 15 मार्च तक तो हर हालत में लग जाना। ज्यादातर देहाती भाषा में पिपरमिंट कहते हैं। खेत बराबर करके पाटा करके क्यारी बना के क्यारी पे, अब तो इस समय हमारे यहाँ करीब करीब 5-6 साल से सब नाली पे लग रही है, और नाली बना के उसे नाली के ऊपर लगता है। नाली वाले में खर्चा कम आता है, खाद का पानी का थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि सारी अच्छी मिट्टी उमेड़ में आ जाती है, उमेड़ में पौधा लगता है। मान लो अगर बारिश हो गई तो पानी भरने की समस्या, उसमें पेड़ जो है रुकता नहीं है, जड़ लगती है, जड़ की नर्सरी बनती है। अब इस समय जो है नर्सरी के लिए जड़ के लिए पौधा लग रहा है, बारिश में लग चुका है, और वो जड़ तैयार हो जाएगी वही फरवरी में। उसके बाद उसको महीन काट के एक एक इंच का, 1 से 1.5 महीने का समय लगता है नर्सरी में। पौधा 5 से 6 इंच पे पौधा, हमारे यहाँ तो 18 इंच पे लाइन, 18 से 20, कुछ लोग 15 पे लगा दे रहे हैं। तो 1 बीघा हम निकल रहा है हेक्टेयर में, मान के चलिए 150 केजी कम से कम। मेन चीज जो इसमें है, जो कीड़ा लग रहा है ना सुंडी, उसकी दवा 15 से 20 दिन में हर हालत में पड़नी चाहिए, पौधा लगने के 15-20 दिन से बाद से। सिंचाई तो मौसम के ऊपर है, 8 से 10 दिन, उसमें कोई निराई का विशेष महत्व तो नहीं है, फिलहाल दवा से काम चल जाता है। क्योंकि नाली पे लगती है तो उसमें गुड़ाई का कोई मतलब नहीं, एक निराई या मान लो कोई किसान दो कर रहा है। इसकी कटाई मान के चलिए 90 से 92-95 दिन पे होती है। बाकी तो सब छोटे छोटे किसान प्लांट अपना खुद का लगाए हैं ज्यादातर, मान लो जिसके 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर है वो अपना खुद का प्लांट लगा लेते हैं, कोई विशेष खर्चा नहीं प्लांट में। 1.25 लाख रुपए में प्लांट लग जाता है, करीब करीब 5-6 साल वो चलेगा। तो इस समय तो 1350 रुपए केजी का बिक रहा है, ज्यादातर दवा में इस्तेमाल होता है। आप मान लीजिए कि एकड़ का 40,000 के आसपास खर्चा, अब उसमें ये मान के चलिए कि एकड़ में 60 केजी 65 केजी इससे कम नहीं होता है। वो तो बारिश हो जाए तो बात अलग है, या कोई दैविक आपदा आ जाए तो फिर बहुत कम हो या ना निकलेगा। हाँ सुगंधित तो है, महक तो बहुत ज्यादा है इसमें।
1: नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी त्यागी है, मैं रहने वाला जिला बुलंदशहर पुर्जा, मेरे गांव का नाम ग्राम गवाह है, और मैं सुगंधित पौधों की खेती करता हूँ। जो मैं खेती करता हूँ, मेरी पीपरमेंट की खेती हरदोई में है, तो बाकी मेरी लेमन का जो खेती मेरे गांव में ही है, और जो स्पेयरमेंट है वो भी मेरे गांव में ही है। स्पेयरमेंट पुदीना, पहाड़ी पुदीना हो जाता है, पहाड़ी पुदीना होता है ये, जो फरवरी से मार्च के महीने में बोया जाता है। बूढ़ा मिट्टी होती है जो पानी को जल्दी सूख लेती है, उस मिट्टी में बोया जाता है। समय जो इसका होता है वो फरवरी मार्च में होता है, फरवरी मार्च में इसकी रुपाई की जाती है। रुपाई जो करते हैं तो जड़ों से तोड़ के जो खेत करते हैं, जड़ों से उसको तोड़ते हैं और उसको खेत में गाड़ते हैं, आधे से 1 फुट की दूरी पर इसको लगाते हैं, गहरा इसका 2 इंच होता है। जब भी क्रॉप हो जाती है तो इसकी पत्तियों को तोड़ा जाता है, इसकी पत्तियों को तोड़ने के बाद स्टीम डी इंस्टॉलेशन होती है भाप आसमान से, उसके भाप आसमान से ही इसेंशियल ऑयल निकलता है। अगर मैं आपको एक एकड़ का मोटा मोटा हिसाब बता दूं, ये कम से कम 10 से 15 टन एक एकड़ में हो सकती है। ये खेत की तैयारी होती है 3 से 5 हजार में हो जाती है, सामग्री इसकी 6 हजार तक आ जाती है, खाद को लगाएं तो 5 हजार तक का खाद हो जाता है, सिंचाई हो जाती है 6 हजार की साल की, और निगरानी के लिए इसके मजदूर को आपको छोड़ना ही पड़ेगा निगरानी के लिए, वो भी 4-5 हजार का आ जाता है, कटाई और धुलाई 5 हजार, टोटल जो ना 32 हजार प्रति एकड़ हो जाता है। किसान को लाभ इसका, मैम लाभ इसका जो ना, इसकी एक जो क्रॉप होती है, एक क्रॉप से एक एकड़ में 15 टन आराम से निकल जाता है। जैसे इसकी खेती वर्ष में एक ही बार मिलती है, सीजन के हिसाब से इसकी खेती होती है, मैम 4 से 5 महीने की हो जाती है, इसकी जड़ें अलग हो जाती हैं, इसकी जड़ों को जो ना टाइम लगता है फैलने में। तो मैंने पौधे नर्सरी से खरीदे थे और ये 4 महीने पूरी खेती तैयार हो जाती है। ये थोड़ा इसेंशियल ऑयल वाला पौधा हो जाता है, बहुत आसान खेती है। भाई उसमें चुनौतियां क्या है, तो कीड़ा नहीं लगना चाहिए और ऊपर से जो जंगली जानवर है वो नहीं आने चाहिए बस। तो हमने जो ना बाउंड्री कर रखी है, क्योंकि जंगली जानवर का काफी नुकसान हो जाता है। अब पानी लिमिट से लगना चाहिए। मार्केट में इसका अलग अलग रेट है, वेराइटी के ऊपर है, तो 1200 रुपए किलो से ये स्टार्ट हो जाता है। डी इंस्टॉलेशन यूनिट है हमारी, उसको हम उसी पत्तियां देते हैं, चैम्बर में उसको डाल देते हैं, नीचे से हल्की भाप से, मतलब आग लगा के हल्की हल्की भाप से उसका जो भाप ऊपर आता है उसी से वो ऑयल निकलता है। हम मैन्युफैक्चर हैं इसेंशियल ऑयल के, अरोमाथेरेपी फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्ड ऑयल के, श्री यमुना एसेंस प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद। कुछ हमारे क्लाइंट है तो उनको भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है एक्सपेरिमेंट की, तो मैंने यही चीज देखते हुए एक्सपेरिमेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है उनको, तो मैंने सोचा मतलब इसका भी मैं खुद करूँ, क्योंकि मैं पिपरमेंट भी अभी खुद करता हूँ, लेमनग्रास मैंने इसी साल चालू कराया अपना खुद का जी। मैं खेती भी करता हूँ, मैं मार्केटिंग भी करता हूँ और मैं खुद का बिजनेस भी देखता हूँ।
2: नमस्कार, मैं नागनाथ भगवंत पाटील, हेड पोस्ट लिम्बावाड़ी, तालुका साकोर, डिस्ट्रिक्ट लातूर, महाराष्ट्र। मैंने 2018 से एरोमेटिक में काम कर रहा हूँ। थोड़े जमीन पर पहले जेरेनियम लगाया था, अभी लगभग मेरा 8 एकड़ जेरेनियम है। 2020 में खुद का डिस्टिलेशन यूनिट लगवाया, अच्छा एक्सपीरियंस 2020 से है। तभी लगभग जेरेनियम का रेट 12,500 पर केजी था। जेरेनियम उसका जो ऑयल है वो इसेंशियल ऑयल है। जेरेनियम में मेजर दो वैरायटी है, एक चाइनीज रोज वैरायटी है और दूसरी है इजिप्शियन वैरायटी। इंडिया में जो है हम कर रहे हैं, ज्यादातर करते हैं, वो चाइनीज रोज वैरायटी है। इसका पहले नर्सरी करना पड़ता है, नर्सरी के लिए 2,000 स्क्वायर फुट की भी जगह हुई, उसपे हम नेट लगा के उसकी नर्सरी कर सकते हैं। जो नर्सरी है 1 एकड़ में लगभग 10 से 12 हजार पौधे लगते हैं 1 एकड़ के लिए। मैंने जो खुद किया है वो पूरा ड्रिप इरिगेशन पे किया है, उसमें पहले सेंद्रिय खाद डालते हैं, बाद में उसके बेड तैयार करते हैं, बेड करने के बाद ड्रिप इरिगेशन करते हैं, सिस्टम लगवाते हैं, बाद में नर्सरी करके पौधा खेत में लगवाते हैं। 1 एकड़ में कम से कम 10 से 12 हजार पौधे लगते हैं। बाद में फर्स्ट जो कटिंग आती है वो जेरेनियम की लगभग 4 से 5 महीने में आती है, उसमें थोड़ा बहुत हम फर्टिगेशन भी कर सकते हैं। मेजर इसके लिए नाइट्रोजन की ज्यादातर मात्रा में जरूरत है, फॉस्फोरस की है और माइक्रोन्यूट्रेंट की है। इसका एनुअल कटिंग जो आता है लगभग 4 कटिंग आती है, मुझे जो आया वो 4 कटिंग आया, और हर मौसम में कम ज्यादा उसका ऑयल भी निकलता है। 4 कटिंग भी पकड़े तो 1 कटिंग का 5 टन भी ऑयल पकड़ा तो लगभग साल में 20 से 22 केजी ऑयल निकलता है। कभी कभी 1 टन पाला में 1 केजी से एवरेजली 1.5 केजी तक जाता है, लेकिन मिनिमम 1 केजी तो ऑयल निकलता ही है। आज लगभग उसका जो मार्केट रेट है, हमने जब शुरू किया था 2018 में तब 12,500 था, 2021 में भी 12,500 आया, 2022-23 में रेट थोड़े डाउन होने लगे, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गए इंडिया में, तब से रेट थोड़े थोड़े कम होते गए और रेट 8,000 तक गए। फिर भी हमने एक खेत का नाम नहीं बंद किया, बाद में वो रेट बढ़ते गए बढ़ते गए, आज जेरेनियम ऑयल का रेट लगभग 17,000 रुपये पर केजी है। अभी देखो हमारी खेती का 1 एकड़ में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए एनुअली हमको प्रॉफिट हो रहा है जेरेनियम ऑयल में, और इसके साथ साथ हम दूसरी भी करती है खेती करते हैं, चिया सीड्स है और एरोमेटिक में तुलसी करते हैं, लेमन ग्रास करते हैं, पामोरजा करते हैं, और एवरेजली पकड़े तो जेरेनियम का खेती हमें प्रॉफिटली लगता है। देखो जेरेनियम के जैसा ही पामोरोजा का है, पामोरोजा का बोले तो जेरेनियम में एक प्रॉब्लम दिक्कत है, जेरेनियम में एक दिक्कत है अगर ज्यादा बारिश हुई तो इसके ऊपर फंगल अटैक होता है, लेकिन पामोरोजा है, पामोरोजा के ऊपर फंगल अटैक का हमें अब तक कोई डिसीज नहीं दिखी। ऐसा नहीं है, पामोरोजा के ऊपर बीज आते है, वो बीज आने के बाद कुछ लोग डायरेक्ट वो खेती में बुवा देते है। हमने क्या किया, वो नर्सरी तैयार किया, नर्सरी तैयार करने के बाद वो खेत में लगाया और एवरेजली वो भी पकड़े तो 2 महीने में कटिंग आती है वो पामोरोजा की भी, और मार्केट रेट पकड़ा तो पामोरोजा का भी 4,000 रुपए लीटर केजी रेट है उसका, और 1 एकड़ में लगभग 40 से 50 केजी ऑयल वो भी निकलता है, हमें तो 40 केजी अब तक तो निकला है। ये है कि फंगिसाइड या कोई अटैक के कोई चांसेस नहीं है पामोरोजा में, जैसे जेरेनियम में मेजर है, ज्यादा बारिश हुई तो फंगल आना ही आना है 100%, ये दिक्कत है, ये पामोरोजा में हमें दिक्कत नहीं मिली। तुलसी का हमने ट्रायल बेसिस भी किया, अभी तीसरा सीजन है तुलसी का हमारा, करते हैं 1 एकड़ में लगभग 200 या 300 ग्राम बीज लगता है उसका, नर्सरी तैयार करते है ओपन पे, नर्सरी तैयार करने के बाद हम खेत में लगाते है, हम एक ही कटिंग करते है, 4 महीने में कटिंग आती है उसका, 35 से 40 केजी ऑयल निकलता है उसका, 2,000 रुपए केजी का रेट है, लेकिन खर्चा लगभग नहीं के बराबर है तुलसी का।
3: मैं बंसराज कुमार, ग्राम दुधार पोस्ट सुंदर।

0: का जिला औरंगाबाद बिहार से हूँ। मैं लेमन ग्रास की खेती पिछले 15 वर्षों से कर रहा हूँ। लेमन ग्रास एक बहुवर्षीय पौधा है जो एक बार लगाने के बाद 4-5 सालों तक चलता है और हर 3 महीने पर उसकी कटिंग होती है और उसका तेल निकाला जाता है। एक कटिंग में 1 बीघे में 20 केजी तेल आता है। मार्केट वैल्यू देखें 1200 से 1500 रुपए केजी रेट रहता है। ये खेती बहुत आसान है और सिंचित क्षेत्रों में 4 बार उसकी कटिंग हो जाती है और असिंचित क्षेत्रों में कम से कम 2 बार कटिंग होती है। ऑयल भी निकाल सकते हैं और आप हर्बल भी बेच सकते हैं जो आसानी से अभी मार्केट में उपलब्ध है। लेमन ग्रास की कई वेराइटियां हैं जो समय समय पर रिसर्च होकर के आती हैं। सीमेप की वेराइटी एक कृष्णा वेराइटी है जो कुछ दिनों तक ज्यादा प्रचलित थी, लेकिन अभी जोरहाट ICMR की एलेट वेराइटी है वो भी ज्यादा प्रचलित धीरे धीरे हो रही है, नया रिसर्च है वो। किसान भाई अगर लेमन ग्रास की खेती करते हैं असिंचित क्षेत्रों में भी तो उनको अच्छा मुनाफा होता है, कोई जानवर इसे बर्बाद नहीं करता, इसलिए ये सब तरफ से सुरक्षित खेती है। हमारे पास 2 एकड़ की खेती है, इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। 1 हफ्ता तक पानी में भी डूबा रहे तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, उससे ज्यादा होने पर नुकसान हो सकता है। इसमें स्लिप के द्वारा लगाया जाता है, जैसे एक पौधा लगाते हैं तो एक पौधे से लगभग 50-60-100 स्लिप बन जाते हैं, उसी स्लिप को निकाल करके फिर आगे आप उसको लगा सकते हैं। ये 2.5 फीट से 3-3.5 फीट तक ऊंचाई पहुंचती है और इसका जब हम लोग कटिंग करते हैं लगभग 6 इंच छोड़ करके इसका हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और उससे ऑयल निकालते हैं। तेल निकालने के लिए 12 से 24 घंटा के अंदर आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। चाय में अगर बनाना है तो उसको कटिंग करके पत्ते को और छाया में सुखा करके छोटा छोटा पीस करके आप उसको हर्बल टी के रूप में उपयोग कर सकते। और अभी प्रगति मैदान में जो 9th इंटरनेशनल जो एक्सपो है तो उसमें हमारा स्टॉल लगा था, इसमें जनता ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उसमें लेमन ग्रास की खेती में स्लिप लगाने में ही शुरू में थोड़ा खर्च होता है, 4 सालों तक बहुत ज्यादा उसमें देख रेख नहीं रहता है, केवल उसको समय से सिंचाई कर देना पर्याप्त होता है। बहुत ज्यादा तो महंगा नहीं पड़ता है, 1 हेक्टेयर में 55,000 पौधे लगते हैं। इस पौधे का कॉस्ट करीब करीब 1 से 2 रुपए पौधा पड़ता है। तेल निकालने के लिए मशीन जो है कई एक प्रकार का बाजार में है, जिसमें SS का भी है और लोहे का भी है। 3 से 4 लाख रुपया वो मशीन का पड़ता है जो किसान अपना लगा करके और उससे तेल निकाल सकते हैं। इसकी काफी संभावनाएं हैं मार्केट में। हर्बल टी के रूप में आजकल सभी कोई उसको स्वास्थ्यवर्धक के रूप में पीना चाह रहे हैं तो इसका डिमांड काफी जोरों से चल रहा है। बाजार में अभी ऑनलाइन भी मार्केटिंग चल रही है, अच्छा रिजल्ट है उसका हर्बल टी के रूप में।
1: कृषि समाचार दर्शन का यह अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिव नंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: कुसुम बहन, अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे ये कृषि समाचार दर्शन के अंतर्गत सुगंधित फसलों की खेती और प्रसंस्करण, किसानों से बातचीत की और उन संध्या गुप्ता ने, और उन्होंने अपने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया।
3: बिल्कुल लोकेंद्र भाई, हमारे जो किसान भाई बहन है वो बहुत ही हमारा जो कार्यक्रम है ध्यान से सुनते हैं और जितनी जानकारी हम बताते हैं वो भी बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। और ये शाम का वक्त है और इस समय हमें भी चाहिए कि थोड़ा सा मनोरंजन करा दे, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे होते हैं कि जानकारियों के बाद कुछ मनोरंजन होना चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: तो आइए हम सुनवाते हैं उनको। एक उपदेश कलाकार है ब्रजेश,
2: तो आइए सुनते हैं ये उपदेश।

0: तो अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे, ये उपदेश कलाकार थे ब्रजेश
1: जी लोकेंद्र भाई। और देखिए बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय बारिश के जो मौसम में नमी और कीचड़ बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे में पशुओं की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उनको बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो किस तरह से पशुओं का हम इसकी सुरक्षा कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, तो सबसे पहले तो देखिए पशुशाला जो होती है वहां को सूखा रखें, बाड़े या शेड में पानी ना भरने दें और उसे हमेशा सूखा और हवादार बनाए रखें। निकासी की व्यवस्था रखें, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों को दुरुस्त करते रहना चाहिए और कीटनाशकों का छिड़काव

0: करना चाहिए ताकि मक्खी मच्छर और जो जो भी कीटनाशक कीट पतंगे होते हैं उनको उनसे बचाव हो सके, और फिनाइल या उचित कीटनाशक का छिड़काव करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कुसुम बहन, और इसके साथ साथ हम अपने भाइयों को ये भी बताते चलें कि टीकाकरण और कृमि नाशक दवा का जरूर करें, और क्योंकि पशु पशु चिकित्सक की सलाह पर उनके अनुसार समय पर टीकाकरण और कृमि नाशक उपचार कराएं, और इसके साथ साथ कई संक्रमण और परजीवी रोग जो होते हैं उनसे भी बचाव हो सकता है, और इसके साथ साथ मच्छर मक्खी और परजीवियों से भी बचाव करें। पशुशाला में नियमित, जैसे कि आपने कहा, नियमित सफाई करें और मक्खी मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए उचित स्वच्छता बनाए रखें।
0: बिल्कुल। और लोकेंद्र भाई, एक जब आहार की बात आती है तो उसको भी संतुलित रखना चाहिए। हरे और सूखे चारे का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए ताकि पशुओं को दस्त और अफरा जैसी शिकायत ना हो। और इसके अलावा सुबह की जो गीली घास होती है उससे बचना चाहिए, और क्योंकि उनके बीमार रहने का खतरा हो जाता है। तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं उसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो बरसात के मौसम में भी अपने पशुओं की उचित देखभाल कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और चलते चलते अपने भाइयों को सुनवाते हैं ये भजन, कलाकार हैं जगदीश नागर।

0: तो अभी आप सुन रहे थे भजन कलाकार थे जगदीश नागर।
1: और इसी के साथ आज हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज और स्टूडियो के घड़ी के मुताबिक समय हुआ है 7:35। और आइए सुनते हैं, ये कार्यक्रम है कवाली और गजल का। तो लीजिए सुनिए सबसे पहली पेशकश आपके समक्ष।

0: तो साथियों, अभी आपने जफर खान बदायूनी और साथियों की आवाज में सुनी ये कव्वाली, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज की। राजधानी में ब्रिक्स देशों की व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों का विकास शिखर सम्मेलन आयोजित। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रतिनिधिमंडल और पर्यावरण विभाग के साथ बैठक की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के निर्देश भी दिए। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जांच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच करने को कहा है। वहीं दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने भी राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसका उद्देश्य असुरक्षित भवनों, अवैध निर्माण और भवनों के दुरुपयोग के कारण होने वाली घटनाओं को रोकना है। संवाददाताओं से बातचीत में एमसीडी साउथ जोन के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि इसके लिए पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिल्डिंग का निरीक्षण करें और उनकी स्थिति का आकलन करें।
2: मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दे दिया है। सभी बिल्डिंगों की सभी मालिकों से भी निवेदन किया है कि आप भी सब बताएं और सारे अधिकारी जाकर इसको देखें कि कौन सी बिल्डिंग कितनी पुरानी है और कितनी पुरानी नहीं है, और जो अगर मरम्मत से ठीक हो सकती है तो उसे मरम्मत करवाएंगे, मरम्मत से ठीक नहीं होगी तो उसे डिमोलिशन करवाएंगे।
1: राजधानी में आज ब्रिक्स देशों के व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों के विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज शामिल हुए। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों की व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, इनोवेटर्स और उद्यमियों को एक साथ लाया गया। इसके अलावा सभी प्रतिनिधियों ने मिलकर ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक मजबूती को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच शुक्रवार से आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास जारी है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 7 बजे से शुरू हो गई है और रात 10 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया गया है और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, जनपद अशोका रोड, बाराखंबा, सरदार पटेल मार्ग और मथुरा रोड सहित कई प्रमुख मार्ग परिवर्तित रहेंगे। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर चलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो सेवा का उपयोग करने और वाहन चालकों से निर्धारित स्थानों पर ही पार्किंग करने तथा मौके पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। यात्री यातायात पुलिस के आधिकारिक पोर्टल पर मार्गों की जानकारी भी देख सकते हैं। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: वहीं दिल्ली नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी द्वारा राजधानी में आयोजित होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर अपने हरित क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण, सुधार और रखरखाव के लिए एक व्यापक योजना लागू करते हुए कार्य कर रही है। इसी कड़ी में एनडीएमसी द्वारा हरित सौंदर्यीकरण योजना के अंतर्गत क्षेत्र में व्यापक बागवानी और लैंडस्केपिंग कार्य किए जा रहे हैं। एनडीएमसी द्वारा 15 प्रमुख स्थानों पर पुष्प बोर्ड स्थापित किए जाएंगे, जबकि 9 प्रमुख स्थानों पर पुष्प फव्वारे लगाए जाएंगे।

0: साथ ही एनडीएमसी की नर्सरी में तैयार किए गए 15,000 से अधिक गमलेदार पौधों को प्रमुख सड़कों, चौराहों, गोल चक्करों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित किया जा रहा है। एनडीएमसी ने चाणक्यपुरी स्थित ब्रिक्स फ्रेंडशिप रोज गार्डन में बागवानी और सौंदर्यीकरण कार्यों को भी तेज कर दिया है। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री संदीप कुमार के साथ आज ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर राजधानी के प्रमुख स्थानों का विस्तृत संयुक्त निरीक्षण किया। इसकी शुरुआत ब्रिक्स सम्मेलन के आयोजन स्थल और भारत मंडपम के आसपास के क्षेत्रों से की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: से जुड़े रहिए जहां भी हो expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें।
0: भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
2: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज छात्रों के लिए वैकल्पिक आवास के विकल्पों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एन सरवाना कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उपराज्यपाल ने डीडीए को निर्देश दिया कि वे पीजी के लिए उपयुक्त जमीन की पहचान करने का काम तेजी से करें, साथ ही एक ठोस योजना बनाने और हॉस्टल सुविधाएं विकसित करने के लिए नए मास्टर प्लान के प्रावधानों पर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ बातचीत करें। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में छात्रों को सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक आवास मिले। उपराज्यपाल आज एक निजी मीडिया समूह के वरिष्ठ नागरिक क्लब द्वारा आयोजित मेगा हेल्थ और सेवा कैंप में शामिल हुए। ये कार्यक्रम देश के प्रसिद्ध पत्रकार और हिंदी समाचार समूह के संस्थापक लाला जगत नारायण के 45वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि एक प्रगतिशील समाज अपने युवाओं की ऊर्जा को बुजुर्गों के अनुभव और समझदारी के साथ जोड़ता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का सीनियर सिटीजन ऐप और नियमित संपर्क जैसी पहल उनकी सुरक्षा और भलाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। दिल्ली नगर निगम में नेता सदन और स्थायी समिति सदस्य जय भगवान यादव ने आज होलंबी कला वार्ड नंबर 3 का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण कार्यक्रम दिल्ली को कुएं से आजादी मुहिम के अंतर्गत चलाया गया। इस दौरान श्री यादव ने मेट्रो विहार होलंबी कला में अतिक्रमण हटाने और नालियों की सफाई कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। श्री यादव ने एक पेड़ माँ के नाम पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण किया और उपस्थित नागरिकों तथा कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ भी दिलाई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली सचिवालय में यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रोफेसरों, छात्र प्रतिनिधिमंडल और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान छात्रों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वच्छ वायु को बढ़ावा देना शीर्षक से अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। इसमें क्षेत्र की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए विचारपूर्ण सुझाव और व्यवहारिक समाधान साझा किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि उन्होंने वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन, बायोमास जलाने, नदी पुनर्जीवन, बेहतर तकनीक और नवाचार जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। श्री सिरसा ने कहा कि युवाओं को इस मिशन में सच्चे साझेदारी के रूप में आगे बढ़ते देखना रहा। पर्यावरण मंत्री ने छात्रों को ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करते रहने, नए क्षितिजों की खोज करने और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में आयोजित स्टूडेंट्स इंडक्शन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। इस दौरान श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार विद्यार्थियों के लिए पीजी सुविधाओं को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में मजबूत नियामक व्यवस्था पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य पीजी में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नए दाखिला वाले विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर डॉ महेश वर्मा ने राजधानी में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पहुंच को और व्यापक बनाना है। स्टूडेंट्स इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन नए दाखिले लेने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, शोध, नवाचार, छात्र कल्याण और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से परिचित कराने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि ये अत्यंत उत्साहजनक है कि आज की युवा पीढ़ी लोकतांत्रिक संस्थाओं को नजदीक से जानने और समझने में विशेष रुचि ले रही है। उन्होंने कहा कि जेन जी भारत की जागरूक, जिज्ञासु और ऊर्जावान पीढ़ी है तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के 3,214 स्वीकृत इंजीनियरिंग पदों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कैडर सीपीडब्ल्यूडी से अलग कर स्वतंत्र दिल्ली पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग कैडर के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव 30 वर्षों से लंबित रहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय राजधानी को तेजी से विकसित, सुरक्षित और विश्व स्तरीय राजधानी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के एस्केप ड्रेन 1, बिहारीपुर ड्रेन, बंड ड्रेन और गोकलपुर ड्रेन सहित कई क्षेत्रों का निरीक्षण कर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जलभराव से निपटने के लिए ड्रेन की सफाई तथा पंपिंग व्यवस्था मजबूत करने और इन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज की। राजधानी में ब्रिक्स देशों की व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों का विकास शिखर सम्मेलन आयोजित। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी और दिल्ली के पर्यावरण

0: मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रतिनिधिमंडल और पर्यावरण विभाग के साथ बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स। और अब स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 8 बज चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम गीत मालिका का। तो श्रोताओं, गीत मालिका कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ प्रीति। और ये जो कार्यक्रम है जहां सिर्फ गीत सुनाई नहीं देते बल्कि दिल के किसी कोने में उतरकर पुरानी यादों के दरवाजे भी खुल जाते हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी जब आप कोई गीत सुनते हैं तो आपको याद आती है आपकी पहली मोहब्बत या कभी दोस्तों के साथ बिताए वो बेफिक्र दिन, और या कभी कभी किसी गीत के बोल बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाते हैं। तो सुनते हैं सबसे पहला ये गीत जो अपनी जुबान में बहुत सारी मोहब्बत लेकर आपके सामने है।

तो साथियों, अभी जो आपने गीत सुना वो फिल्म गदर 2 से था और इसके गायक विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर और शहनाज अख्तर रहे। तो कुछ गीतों की खासियत इतनी अलग होती है कि उन्हें सुनते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया है, और यही संगीत की खूबसूरती भी होती है। जो बात हम शब्दों में नहीं कह पाते उसे एक गीत हमारे लिए सब कुछ कह देता है। तो ऐसा ही एक गीत लेकर मैं हाजिर हूँ, फिल्म रॉकस्टार, और आवाज है AR रहमान और जावेद अली की।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका और मैं हूं आपके साथ प्रीति। और इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं इश्क, मोहब्बत और दोस्ती की। और फिर बात है कुछ ऐसे संगीत की जो आपको आपकी पुरानी यादों में लेके जाता है। और जहां बात पुरानी यादों की होती है तो वहां कुछ खट्टे मीठे एहसास जो होते हैं वो जिंदगी के साथ जुड़े होते हैं। और उनमें एक एहसास है दोस्ती का। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिसे किसी नाम, उम्र या फिर किसी रिश्ते की मोहर की जरूरत तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि एक सच्चा दोस्त वो होता है जिसके सामने हमें खुद को साबित करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम वक्त के लिए आपके जिंदगी में आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके साथ होते हैं, आपके साथ नहीं भी होते हैं, यानी उनकी जो यादें हैं वो उम्र भर आपके साथ रहती हैं। और क्योंकि अब दोस्ती की बात है तो कुछ चुलबुली बातें भी होती हैं, क्योंकि खट्टे मीठे एहसास शायद ऐसे ही मिलकर बनते हैं। तो हमारा जो गीत अगला है वो ऐसा ही एक एहसास लेकर आपके सामने है। फिल्म है दिल चाहता है और गायक शंकर महादेवन।

जी बिल्कुल, इस गीत ने जो कहा है हमसे कि जब हम नए हैं तो अंदाज क्यों पुराना हो, और सच में अंदाज तो कभी भी पुराना होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी का नाम ही है नयापन लाना, हर दिन कुछ नया सोचना और अपने आप को पिछले दिन से आगे बढ़ाना। तो शायद कहते हैं ना कि जो गीत होते हैं और उनके जो बोल होते हैं वो आपसे बहुत कुछ कह जाते हैं, फिर चाहे दोस्ती हो, प्यार हो, इश्क हो, मोहब्बत हो। और रही बात जब प्यार के इजहार की, तो शब्दों से हो ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्यार में हो तो उसकी आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। और कभी खामोशी या कोई गीत जो आपकी भाषा बनकर सामने वाले को ये एहसास जरूर दिला देते हैं कि कुछ तो खास है। और शायद मोहब्बत के गीत हमेशा से संगीत की दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा रहे हैं। तो इसी बात पर आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत, और फिल्म है तमाशा।

तो साथियों, कितनी ही प्यारी ये लाइन है कि अगर तुम साथ हो तो ये हो और ऐसा हो और वैसा हो, यानी कि जब आपके जज्बात बहुत ही कहते हैं ना खूबसूरती के साथ जब सामने आते हैं तो वो कुछ अलग ही अंदाज में आते हैं। इस गीत में भी ऐसा ही कुछ था जिसे लिखा था इरशाद कामिल ने, और शब्दों में वो जादू होता है जो बहुत कुछ कह जाता है, और गाया भी अलका याग्निक ने इस अंदाज में कि हर शब्द का मतलब सामने ही रख दिया। ऐसा ही होता है और जिंदगी में भी हमें ऐसा ही देखने और सुनने को मिलता है, जहां हम कई बार एक नई शुरुआत करते हैं खुद को फिर से खोजने की, और वहां वो साथ बहुत मायने रखता है जो आपके साथ होता है। ऐसा ही एक गाना है जो आपके सामने लेकर आ रही हूं, जहां दिल

जो है ना उड़ने की ख्वाहिश रखता है, कभी मन दूसरी दुनिया में जाता है। तो सुनते हैं चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाज में फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम है गीत मालिका और मैं हूं आपके साथ प्रीति। और इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपको अगला गीत जो सुनवाने जा रहे हैं वो है फिल्म जब वी मेट और आवाज है मोहित चौहान की।

तो दोस्तों हमारा कार्यक्रम गीत मालिका देखते ही देखते अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच ही गया है और आज इस कार्यक्रम के बहाने गीतों के बहाने हमने प्यार और दोस्ती को महसूस किया, उन्हें याद किया, कुछ पुरानी यादों को ताजा भी किया और जिंदगी को एक बार फिर से मुस्कुरा कर देखने की कोशिश की। तो कहते हैं ना कि गीत जरूर खत्म हो जाते हैं लेकिन उनका एहसास हमारे दिल में हमेशा बना रहता है। तो आइए चलते चलते कार्यक्रम में एक ये और गीत सुनते हैं, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से।

0: इसी गीत के साथ श्रोताओं, ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल

0: संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया, कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
1: वापसी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पर आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress. सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवान

0: किसानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
3: मेरी एक्सलेंसी के प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूँ कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने को कंट्रीब्यूट करेगी।
2: श्री राजनाथ ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास सहयोग शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जनभागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इन कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
2: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: नामांकन करें।

0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए news.air.gov.in पर जाएं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और बीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। यूके एमटीओ ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
2: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
4: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
2: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के मौके में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
5: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 30,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 1 डॉलर की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रूपये पर बंद हुआ।
2: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashwani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states to boost connectivity. New Delhi and Colombo sign MOUs on upgradation of L-70 guns and defense cooperation. Sri Lanka assures it will never allow its territory to be used against India. India condemns attacks by Yemen's Houthi rebels on Saudi Arabia, says strikes threaten freedom of navigation in Bab al-Mandeb Strait. In sports, India end campaign at stage 3 of World Archery Para Series with 15 medals comprising 4 gold in Ahmedabad. And in Junior Asia Cup Hockey, Indian men's team enters semi-final with 15-0 victory over Chinese Taipei. Indonesia advance to quarter-final after goalless draw against hosts China. The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 kilometers and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes, and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi today. Mr. Vaishnav said the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. The total estimated cost of these 5 projects is more than 10,021 crore rupees. Mr. Vaishnav said the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The minister further informed that the government has decided to undertake 4-laning and quadrupling of all 7 high-density railway corridors.
7: The 7 high-density railway corridors along with several other corridors that are expected to carry significant traffic in the future are being upgraded to 4-9. This also includes the Golden Quadrilateral, Delhi to Mumbai, Mumbai to Chennai, Chennai to Kolkata and Kolkata to Mumbai routes. In addition, its 2 diagonals, the Delhi to Chennai and Mumbai to Chennai routes, are also being quadrupled along with the Delhi to Guwahati corridor.
6: In reply to a question on the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, Information and Broadcasting Minister informed that the bullet train service will commence next year.
8: The inauguration of the bullet train is scheduled for 2027, with construction work progressing at a very rapid pace. Initially, the plan was to open a 50-kilometer section between Surat and Bilimura. However, this has now been extended to a 100-kilometer section from Surat to Vapi. At the same time, work on the bullet train itself is also progressing rapidly. The first coach for testing was completed and made ready last week, and the train is expected to be brought onto the tracks for testing by May or June next year.
9: अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी टेस्टिंग के लिए.
6: Prime Minister Narendra Modi in a social media post highlighted that the 5 railway projects approved today will foster better rail connectivity in South India and also benefit lakhs of people. Mr. Modi said the decision pertaining to 3 multi-tracking projects will encourage tourism, especially heritage and wildlife-related tourism, and lower logistic costs. New Delhi and Colombo today exchanged memoranda of understanding on upgradation of L-70 guns for the Sri Lankan Air Force and cooperation between National Cadet Corps and National Defence Colleges of both the countries. The upgradation of these air defence guns will strengthen the air defence architecture of critical assets in Sri Lanka. The MOU on academic cooperation will facilitate knowledge sharing to further strengthen the academic bonds between them and formalize the NCC Youth Exchange Program between India and Sri Lanka. The pacts were signed in the presence of Defence Minister Rajnath Singh and President of Sri Lanka Anurakumara Rajasenayake in Colombo. Both leaders virtually inaugurated three Bailey bridges constructed by the Indian Defence Forces. During the meeting, the two sides reaffirmed their commitment.

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में मुराद लखनवी, एजाजुल्लाह खां गालिब, बशीर बद्र और कतील शिफाई की लिखी हुई गजलें।

0: ऑर्गन से है जो हमारे पेट के पिछले हिस्से में होती है, रीढ़ की हड्डी के सामने पिछले हिस्से में पेट के होती है। और इसका दो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं, दो अहम फंक्शन होते हैं। पहला कि शरीर का जो पाचन शक्ति है उसको मेंटेन करने में इसका सबसे बड़ा हाथ होता है।
1: जो खाना खाते हैं,
0: जो गजा हम खाते हैं,
1: हजम करने में इसका बहुत,
0: बिल्कुल हजम करने में उसमें तीन किस्म के पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उन सबको डाइजेस्ट करने के लिए जो केमिकल्स और एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है वो पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है। ये सबसे अहम फंक्शन है। तो दूसरा अहम फंक्शन है जो बॉडी का ग्लूकोज, बॉडी का जो ग्लूकोज मेटाबोलिज्म है, ग्लूकोज बैलेंस है बॉडी का, उसको मेंटेन करने के लिए जो दो अहम हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में
1: जी।
0: एक तो इंसुलिन, आपने नाम सुना ही होगा, दूसरा ग्लूकागॉन, ये दोनों इंसुलिन पैनक्रियास में ही प्रोड्यूस होते हैं। तो ये दो मेन फंक्शन है पैनक्रियास के।
1: जैसे इंसुलिन की बात कर रहे हैं आप, इंसुलिन मतलब शुगर जो है वो बढ़ जाती है,
0: पैनक्रियास के डिजीज में शुगर से बहुत अहम ताल्लुक रहता है
1: जी। तो आपको ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि हमारा जो पैनक्रियास है ठीक तरह से काम कर रहा है, इसके लिए कैसे मतलब सिम्पटम्स होंगे
0: जी? सबसे इम्पोर्टेंट, पैनक्रियास की खराबी तभी पता लगती है जब मरीज को यूजली कुछ सिम्पटम्स होते हैं
1: जी, जी।
0: अगर वो शांत रहे तो ठीक काम करता रहे तो कोई तकलीफ नहीं होती, काम चलता रहता है। तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस भी दो किस्म का होता है, एक एक्यूट जो अचानक होता है
1: जी,
0: और क्रॉनिक जो महीनों या सालों से चल रहा होता है
1: जी, जी।
0: तो सबसे अहम सिम्पटम, सबसे अहम साइन जो पैंक्रियाटाइटिस डिजीज का होता है वो है पेन या दर्द। पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द होना, जो बहुत तेज दर्द होती है, पेट के पिछले के हिस्से में दर्द जाती है, जैसे मैंने बोला कि पेट के पिछले हिस्से में होता है, तो दर्द आगे से शुरू होकर पीछे शूट करती है
1: जी।
0: और साथ में मरीज को उल्टी आ सकती है, लैटर निकलनी बंद हो सकती है, एक्यूट स्थिति में जो अचानक होता है उस स्थिति में, और आगे चल के इसकी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है
1: जी, जी। वो बाद में भी क्रॉनिक बन जाएगा बाद में,
0: ऐसा नहीं है कि एक्यूट क्रॉनिक बन जाता है, क्रॉनिक के अपने अलग कारण होते हैं, एक्यूट के अलग कारण होते हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो ये जो हमारे आसपास के जो हिस्से हैं जिस्म में, क्या उससे ये वो भी मुतासिर हो जाते हैं इसके?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जो है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का सबसे कॉमन कारण, सबसे अहम कारण होता है पित्त की थैली की पथरी
1: जी, जी।
0: पित्त की थैली की पथरी जब पित्त की थैली के रास्ते के नीचे से गुजरती है तो पैंक्रियास भी उसी रास्ते से गुजरता है
1: जी।
0: तो वहां पर जब वो फंसती है तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस करती है, तब एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है। तो जो आसपास का ऑर्गन है, जैसे मैंने पित्त की थैली, तो उसकी पथरी के कारण पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है।
1: होता है, मतलब आमतौर पर इसकी खराबी की मतलब मेन वजह क्या होती है जैसे?
0: ठीक, जो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, मैंने जैसे बताया कि पित्त की थैली की पथरी, तो सबसे अहम कारण है पित्त की थैली की पथरी। दूसरा कारण है शराब। जो लोग सालों साल से शराब का सेवन डेली बेसिस पे करते हैं उनको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है
1: जी, जी।
0: नंबर तीन होता है कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो पैंक्रियास को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके कारण होता है। तीसरा होता है, हमारे देश में स्पेशली कश्मीर एरिया में ये देखा गया है, जो वर्म्स होते हैं पेट के कीड़े, राउंड वर्म जिसको कहते हैं, वो स्पेशली कश्मीर के हिस्से में बहुत कॉमन कॉज है, बहुत अहम कॉज है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का।
1: अच्छा, ऐसा क्यों? कश्मीर में ही क्यों?
0: कश्मीर में उस पहाड़ी इलाके में वॉर्म्स के इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: पेट में वॉर्म्स बहुत कॉमन रहते हैं
1: जी, जी, जी।
0: तो ये जो कीड़ा है ये मूव करता है
1: जी।
0: तो पैंक्रियास का जो एक डक्ट होता है, पैंक्रियास के अंदर जो रास्ता होता है, उस रास्ते में जाके इन्फ्लेमेशन सूजन करता है, इसलिए एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस करता है
1: जी, जी।
0: और एक और अहम कारण है ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब चोट लगना। पेट के ऊपर के हिस्से में कुछ ऐसी चोटें होती हैं जो मरीज को याद भी नहीं रहती, जैसे किसी ने कभी मुक्का मार दिया या किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जोर से पेट के ऊपर के हिस्से में झटका लगा
1: जी, जी।
0: उसके कारण भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है
1: जी, जी। अच्छा, इसमें कोई ये जो पैंक्रियास है अपना जो आपने बताया, इसमें किस तरह के मादे मतलब खारिज ये करते हैं,
0: जो किस तरह के
1: प्रोड्यूस करते हैं?
0: मैंने आपको शुरू में भी बताया कि पाचन क्रिया को उसको अंजाम देने में इसका बहुत अहम हाथ है
1: जी, जी।
0: तो वो पाचन क्रिया को करने के लिए जो जूसेस होते हैं वो पैंक्रियास में प्रोड्यूस होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में तरह तरह के एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं
1: जी, जी। तो उनका रोल ये है कि आपकी डाइजेशन जो है, आपकी जो हाजमा है, जो खाना आप खाएंगे उसको डाइजेस्ट कर,
0: जो आपने रोटी खाई, आपने दूध पिया, वो ऐसे का ऐसे तो खून में नहीं गया था उसके टुकड़े होते होते हैं फिर वो डिजोल्व होते हैं वो फिर हजम होते हैं बॉडी में, तो ये टुकड़े करना उनको डिजोल्व करना ये इन एंजाइम्स का रोल होता है।
2: हमें अभी आप सुन रहे थे पेनक्रेटाइटिस के हवाले से कुछ जरूरी बातें। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इसी के साथ प्रोग्राम हेल्थ टिप्स अब खत्म होता है। शब के 10:01 हो चुके हैं। आप हमारे नशे समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए और DD फ्री डिश पर। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: This is Akashwani. Namaskar, good evening and welcome to Market Mantra. I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं और स्टूडियो में आज हमारे साथ तमाम खबरों पर चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल जी।
1: और सबसे पहले डालते हैं नजर मुख्य समाचारों पर।
0: यस, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन अराउंड 1%, सेंसेक्स प्लंजेस ओवर 800 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,450। Global crude oil prices surge. Brent crude crosses $100 per barrel mark. And Union Cabinet approves multi-tracking railway projects across 9 states.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 1% की गिरावट। सेंसेक्स 800 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 23,450 से नीचे आया। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। ब्रेंट कच्चे तेल का दाम $100 प्रति बैरल से ऊपर गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 राज्यों में मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी।

0: Well, friends, before we move ahead, here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग तीन महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक यानी 1.1% लुढ़क कर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक यानी 0.9% नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में भी आधा आधा प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
0: Benchmark domestic equity indices ended lower for the third consecutive session today. The Sensex plunged 813 points or 1.1% to close at 74,764. The Nifty also shed 204 points or 0.9% to settle at 23,432. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 and the small-cap 100 indices also declined 0.5% each.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों के शेयरों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली कंपनियां एचसीएल टेक 4.5%, इंफोसिस 4.4% और टेक महिंद्रा 3.9% रही। वहीं सबसे ज्यादा लाभ वाली कंपनियों में अडानी पोर्ट्स 3.7%, टाटा स्टील 2.4% और ट्रेंड 1.1% की बढ़त में थी।
0: Look at the sectoral indices. Well, in the sectoral indices on the BSE, 20 out of 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, IT fell 3.2%, focused IT dropped 3%, and realty lost 2%. In contrast, middle advanced 1.9%, hospitals gained 1.4%, and utilities added 1.1%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,600 companies declined, 1,792 advanced, and 196 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर के तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रूपये पर बंद हुआ। विभिन्न एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अगर बाजार को हम देखें तो तीन महीने पहले किस स्तर पर हम मार्केट में पहुंच चुके हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जिस तरह का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, ये आपको क्या लगता है, ये चिंता का विषय है या ये एक मार्केट में सर्टेन ऐसी स्थिति जिस पर आगे आकर के हम बढ़त पा सकते हैं या इससे भी नीचे जाने की संभावना है?
2: देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत ही ऑब्वियस है कि तेल के बढ़ते दामों की वजह से जो खाड़ी में संघर्ष चल रहा है उसके वजह से तेल के दामों में जो उछाल आया है और एक $100 प्रति बैरल का जो साइकोलॉजिकल मार्क है उसको मेरे ख्याल से आज रीच किया गया है, तो वो एक चिंता अपनी जगह में बनी हुई है। और इसको अब जो बाजार है विश्व स्तर में लोगों का अब ये मानना हो रहा है कि ये जो संघर्ष है ये अब बहुत जल्दी ये रुकने वाला नहीं है। और जो दाम है सबसे इम्पोर्टेंट है, कच्चे तेलों के दाम में जो एक कमी जो एक सस्टेन्ड कमी है वो शायद देखने को फर्स्ट हाफ ऑफ 2027 अगले साल में शायद तब तक का इंतजार करना पड़े। और ये आपूर्ति से जुड़ी हुई बात है और जब तक वो संघर्ष खत्म नहीं होगा तो आपूर्ति में जो जो कैपेसिटी में जहां भी रिफाइनरी होती जो मालवाहक जहाज है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ये सप्लाई रिलेटेड इश्यूज है, ये रातों रात ठीक नहीं होते हैं, तो हमें वक्त लगेगा। तो वो बात अब मार्केट्स फैक्टर इन कर रहे हैं। दूसरी बात आपने बताया कि ये निफ्टी 50 तो कई मुझे एक सोच जो काफी विश्लेषक कर रहे हैं वो मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है। वो ये है कि वो उनका ये कहना कि आप हम लोग निफ्टी 50 को देख के मार्केट्स को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं जो कि कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक नहीं काफी हद तक सही है क्योंकि सबसे ज्यादा कैपिटलाइजेशन वाले जो है उसी से डिपेंड वो वहीं से निकलता है। पर लोगों का दावा नहीं ये तर्क है और वो उसमें डेटा भी है कि दूसरी जो कंपनी जो वो निफ्टी 50 से आगे जो मिड कैप की टेरिटरी में चली जा रही है तो उनके अगर आप रिजल्ट देखें, उनके अगर फाइनेंशियल देखें, वहां पे काफी प्रगति नजर आ रही है और वो आपके शेयर प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इंडियन जो वित्तीय संस्थान है जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह, वो भी वहां पे खरीदारी कर रहे हैं, तो वो लार्ज कैप में नहीं कर रहे हैं जो कि निफ्टी 50 तो है ही वो, पर वो उधर उस साइड में जा रहे हैं। तो क्योंकि वहां पे बेहतर हो रहा है, क्योंकि वहां पे निवेश हो रहा है, तो आप पाएंगे कि वो जो इंडिया, हालांकि आज प्रभावित वो भी हुए नेगेटिवली जैसे कि आपने खबरों में पढ़ा, पर वहां पे लोगों को लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। तो आप 1 ईयर 6 मंथ अगर रिटर्न देखें, जो कि देखना नहीं चाहिए इक्विटीज में, 3 ईयर देखें, 2 ईयर देखें, 5 ईयर देखें, तो सारे पीरियड्स में अगर देखें, रिस्क एडजस्टेड देखें, सब में वो आप बेहतर करते हुए पाएंगे। तो उनका तर्क यह है और ये मेरे को काफी आकर्षक लगता है, तो ये श्रोताओं को बताने लायक बात है।
3: लेकिन इन सब के बीच में आईटी शेयर्स में गिरावट हम जो देख रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, क्योंकि आईटी के फील्ड ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, उसके बाद भी हम लगातार इसमें गिरावट देख रहे हैं।
2: तो वो कारण सीधा तो मैं नहीं बता पा रहा, क्योंकि मैंने विश्लेषण किया नहीं है
3: जी जी।
2: पर मेरे को ताज्जुब ना होगा कि अगर ये इसका कारण जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर्स है उनकी सेलिंग की वजह से हो, क्योंकि वो भी बाहर लेके निकल रहे हैं। हमें याद रखना पड़ेगा कि भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट वो कहते हैं, तो जब वो आ रहे हैं तो एक रिस्क ज्यादा होता है, फिर करेंसी से जुड़ी हुई रिस्क होती है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल से जुड़ी हुई रिस्क होती है, जो कि हमारे केस में नहीं, हमारी करेंसी के केस में है और हमारी करेंसी को दबाव में है। तो वो जब आप देखते हैं तो एक हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट है, और यील्ड्स जो है लोअर रिस्क यील्ड्स जो अमेरिकन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, जो कि बहुत सेफ माने जाते हैं, क्योंकि यील्ड वहां पे बेहतर हो रहे हैं, तो कोई फंड मैनेजर होगा इंटरनेशनल, वो ये देखेगा कि ये रिस्क लेके मैं ये उठाऊं या मैं इधर लगाऊं, तो वहां पे एक जो कंपैरिजन है वहां पे वो फेवरेबल हो रहा है। तो कई बार जो पुल आउट हो रहा है वो कुछ दूसरे मार्केट्स में भी जा सकता है, जैसे आप साउथ कोरिया में आप दिलचस्पी रख सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल फंड मैनेजर है साउथ कोरिया दूसरे मार्केट्स में, पर बाकी जो है आप इस तरफ भी देख सकते हैं, आपको लग सकता है कि नहीं भाई रन अप काफी हो गया गोल्ड और दूसरे एसेट क्लासेस में हम यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाए, तो मुझे ना ताज्जुब हो कि ऐसी बात हो रही हो और जिसके वजह से आप ऐसे रिजल्ट्स देख रहे हैं।
0: But then Nikhil mentioned IT. I think he touched a raw nerve, so to speak. Could it also be because of the fact that US much of our IT export is in the US and Europe, and they are having high inflation? It's about 3.4% in US, which is much beyond their digestible limit. Do you think that could be a factor as well?
2: It could be, but you know. See, you will not. I'm an eternal optimist, but one has to also give. One has to look at it also with equanimity,
0: uh-huh,
2: right?
0: Uh-huh.
2: See, is the whole whiplashing that has been happening about Indian IT is that they are not coming up with foundational models and it's only the Mag 7 or whatever names you want to give. They are not into making chips, they are not coming up with the AI foundational models, or they are not adapting like the way Chinese are doing. Is that the only part of the chain that will exist in AI? Okay, who are the people who are going to be using AI? We have got the largest population and we have got the largest mobile penetration. Who do we think are going to be using the AI, right? And who do we think, where will the innovation will be happening? Where people are using it, do you think there the innovation will happen, or where there are just 20 million, 40 million, 50 million people, that's where it's going to happen? Where do we think data centers are going to come about? Where do we think chips will have to be made on the ground because users are using it? So if we start looking at it from that point, then this whiplashing, you start to discount it quite a bit. And it's okay. I mean, these things move in circles. Tomorrow, if Sarvam does a grand job, which it is, and there are others, you might see the story change. It doesn't take much time.
0: Right. All right. sorry. Well, global crude oil prices surged today as escalating conflict in West Asia heightened concerns over disruptions to oil flows. Brent crude was trading 2.9% up at $100 and 81 cents per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.7% up at $95 and 55 cents per barrel when reports last came in. And friends, now we go over live to our correspondent who is currently in Dubai for the latest updates from the region. Manish Shiva Zuri is with us. Manish, hello.
4: Hi, Ralima.
0: Hi, Manish. Firstly, could you tell us what is the current situation in the region?
4: The situation remains tense. We've seen direct confrontation between US and Iran off late, but yesterday it was at a sharply escalated levels. So, I think it was one of the biggest attacks on ships, direct ships, since the beginning of the current conflict. I mean, we've seen other infrastructure being attacked earlier, but Iran, US claimed to have hit 5 ships, Iran claimed to have hit 10 ships directly. So, which I think is not such a good news for the maritime transport thing. Another news that that was reported yesterday is the Houthis attacking Saudi energy infrastructure, mm-hmm. including some of their oil facilities. So if you look at it, it's not a great news in terms of not just shipping, but also in terms of general energy infrastructure in the region.
0: Mm-hmm. Right. Manish, today Brent crude has crossed the $100 per barrel mark. How is the current situation impacting the world from an economic perspective?
4: So Brent crude crossing 100 is always a warning sign for the global economy, because higher oil prices would mean higher costs for transport, electricity, manufacturing, and if we extrapolate that, almost inflation for almost every goods that we consume. Now the problem here is back in July also we saw Brent rising beyond 100, and we have seen in the past also Brent spiking beyond 100 but then coming back to the normal. The problem is the underlying causes this time around. The conflict doesn't seem to be dying down. There has not been any concrete diplomatic solution to it, and this whole uncertainty is what is making

0: the situation tense. Because only this week, if I remember, if I see seven core OPEC plus countries decided to keep the output in October same as September. So that means there is no new oil coming in to the system.
1: Right.
0: Plus the uncertainty of this US-Iran conflict means a lot of issues in terms of oil prices.
1: Right. Thank you, Manish, for giving us an insight into the current situation in West Asia. That was Manish Shivazuri from Dubai. And moving on.
2: Udinji, abhi hum jab oil ki baat kar rahe hain, to kachche tel ki kimaton ka is tarah $100 se upar jana, bharatiya arthavyavastha ke according agar is cheez ko samajhne ki prayas kare, to kya lagta hai aapko ki kaisi sthiti hamare samne utpann ho rahi hai?
3: सबसे पहली बात तो इमीडिएटली मुद्रास्फीति के जो दबाव है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, वो सीधे आ जाते हैं और ऑलमोस्ट इमीडिएटली एडजस्ट करना पड़ता है. तो वो क्योंकि वो एक लाइफ ब्लड की तरह है, अब अपने शरीर में रक्त जो है सारे अंगों में जाती है, तो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में इम्पैक्ट होगा, चाहे वो एनर्जी जनरेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो. ट्रांसपोर्ट में अगर होगा तो सारी चीजों में आ जाएगा. तो वो एक प्रेशर है और हम अधिकतर बहुत ज्यादा आयात करते हैं, हमारे पास डोमेस्टिक जो सोर्सेज हैं वो है नहीं उस हिसाब से, जिस हिसाब जितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी हो गई है. और यूं तो हम रिन्यूएबल्स, हमारे जो नॉन पेट्रोलियम वाले जो हमारे सोर्सेज हैं वो हम वहां पे बेहतर कर रहे हैं रिन्यूएबल्स में, पर अभी भी हमारा डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है. तो वो सीधा इम्पैक्ट करेगा और वो क्योंकि ये मार्केट मंथ प्रोग्राम है, तो आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल्स में असर होने के अलावा मेरे को तो कोई वो नजर नहीं आता कि उसमें असर आप देखेंगे. और कुछ दिन तक रहा तो वो तो आप जरूर पाएंगे, हो सकते हैं इन कुछ केस में इमीडिएटली देखें, कुछ केस में कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, आगे चल के वो मिलेगा, और कुछ तो ऑब्वियसली पास ऑन हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा तो अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे कंपनीज. तो वो इम्पैक्ट है. बट ये भी मैं कहता चलूं, भारत क्योंकि हम ऐसे पीरियड से गुजर चुके हैं जब मुद्रास्फीति होती रही, तो हमारे जो मैनेजर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में फिस्कल को मैनेज करें या मॉनेटरी मौद्रिक नीति को मैनेज करें या कॉरपोरेट सेक्टर में मैनेज करें या लघु उद्योग में करें, हमें आदत है, प्रैक्टिस है. ये प्रैक्टिस बाकियों को नहीं है दुनिया में. तो वो टीका जो है ना मुद्रास्फीति के विरुद्ध जो टीका है, वो हमें लग चुका है. तो इसमें से हम बेहतर उभरेंगे और उभर जाएंगे.
2: उधर एक निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आज की स्थिति को देखें, यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 महीने के पहले के स्तर पर, यानी नीचे के स्तर पर आ चुके. मार्केट में इन्वेस्ट करने के हिसाब से या मार्केट में कुछ खरीदने के हिसाब से कैसा समय है?
3: फैंटास्टिक समय है, पर आप वो सब ना करें. आप कोई भी वक्त जो है, निवेश जो है, वो डिसिप्लिन तरीके से, जैसे हम हर रोज सुबह व्यायाम करते हैं
2: जी.
3: कुछ चीजें जो है नियमित रूप से करते हैं, तो जैसे पौष्टिक खान पान करते हैं, ये वो आदत की तरह है. आपको ये नहीं कि आपने एक दिवाली या दशहरे के भोज की तरह आपने निवेश किया कि हमने साल में एक बार करा, वो अगर करेंगे तो वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है. आप नियमित रूप से करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज हर मार्केट में मिलती हैं. और ये जो दो साल वाली बात है, ये इट इज 2 साल 2 महीने, वट एवर आप कहेंगे, इट इज डजेंट लुक नाइस. देखने में लगता नहीं कि ऐसा लगता है हम वहीं बैठे हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा रिस्क ले लिया, फिर कहीं और डाल देते तो अच्छा होता. पर दिक्कत यह है कि अगर आप अगर फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, उसकी अपनी यूटिलिटी होती है, अगर फिक्स डिपॉजिट में डालते, मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति को लड़ने के लिए हथियार सिर्फ इक्विटी ही है. इसलिए आपको जो पैसा आपको फौरन नहीं चाहिए, आप वहां लगाएं, उसको छेड़े मत. मैं कई लोगों को देख चुका हूं, वो ना क्या करते हैं, हर घंटे देखते रहते हैं, वो नहीं करना. डाल के जैसे आप एक पौधे के वो प्लांट डालते हैं और वेट करते हैं, पानी देते रहते हैं, वही काम निवेश के साथ करना है.
1: राइट, सो हैव अ डिसिप्लिन इन इन्वेस्टमेंट. राइट, ओके, मूविंग ऑन. सॉरी, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ मोर देन 10,700 करोड़ रूपीज. ब्रीफिंग मीडिया इन न्यू दिल्ली, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट Casting Minister Ashwini Vaishnav said that these projects cover 14 districts across West Bengal.

0: Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of the Indian Railways by about 656 kilometers. But the Union Cabinet also approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana, increasing the existing network of the Indian Railways by about 540 kilometers. The total estimated cost of the projects is more than 10,021 crore and they are planned to be completed by up to 2029-30. Well, Mr. Vaishnav also informed the government has decided to four lining of all the 7 high density railway corridors. These routes are Delhi to Howrah, Mumbai to Howrah, Delhi to Mumbai, Delhi to Guwahati, Delhi to Chennai, Howrah to Chennai and Mumbai to Chennai route. In reply to a question on the Mumbai Ahmedabad bullet train project, Minister Ashwin Vaishnav informed that the bullet train service will commence next year.
1: बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन 2027 में फिक्स है. कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ही अच्छी स्पीड से चल रहा है. पहले सूरत से बिलीमोरा का 50 किलोमीटर्स का सेक्शन का प्लान था, अब उस प्लान को और बढ़ा के 100 किलोमीटर्स है. सूरत से वापी, वापी से सूरत का 100 किलोमीटर्स का सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में. कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कम्प्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है. टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है. अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी.
0: So then, talking about these developments on infrastructure, particularly the railways and the four-lining of the 7 high-density railway corridors, do you think it will add to the PM or it will enhance the PM Gati Shakti mission?
2: Of course it will. The good part is that we need these freight corridors where the freight will move. See, the whatever we produce, it needs to move very fast.
0: Yes.
2: Through the road and also through the rail. Hmm. Now what happens is same track is being used by both freight and passenger, then one cannot be going up at the cost of the other. Mm-hmm. So we need these dedicated stuff so that if one gets affected, the other doesn't. So you will need these kind of expansion because, you know, if you produce something, you need to get to the port fast so that you can export fast.
0: Absolutely.
2: And compete better.
0: Yeah.
2: So these are all things which foreign direct investment is also dependent on.
3: आगे बढ़ते हैं. ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले 9 और 10 सितंबर को मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक हो रही है. इस वर्ष ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक की थीम है मजबूती, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण. इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं. केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में होने वाली इस बैठक से पहले ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक के मुख्य नतीजों की समीक्षा भी की थी. उस दिन ब्रिक्स की इतनी बड़ी मीटिंग हमारे यहां देश में होने जा रही है. कई सारे मुख्य बिंदु हैं जिन पर चर्चा होने की संभावना है, खासतौर पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और ट्रेड के हिसाब से देखें. खासतौर पे इंडियन ओशियन की हम जब बात करते हैं तो काफी कुछ नजर आता है कि यहां पर हमें नजर आएगा आगे चल करके. इंडो पैसिफिक की भी यहां पर बात होती है.
2: देखिए, ब्रिक्स में जो है एक समन्वय करने की कोशिश की जा रही है फाइनेंशियल सिस्टम्स के बीच में. एक तो ट्रेड है जो कि हो रहा है और वो होता रहेगा, पर फाइनेंशियल सिस्टम मान लीजिए एक कंट्री ब्रिक्स में, एक कंट्री दूसरी कंट्री को पेमेंट करती है, आदान प्रदान हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो क्या खुद की करेंसी में, खुद के पेमेंट सिस्टम में इंटरनेशनल स्विफ्ट सिस्टम है, पर क्या हम दूसरे सिस्टम्स हैं जो कि हम डेवलप कर सकते हैं? कुछ कंट्रीज अपने हिसाब से कर रही हैं, म्यूचुअली आपने किया. हमारे जो जैसे यूपीआई इस्तेमाल होता है, क्या हम यूपीआई जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं बाकी दूसरे देश हमारे यहां इस्तेमाल किया, हमने उनके देश में किया? अगर ऐसा हो जाता है, ब्रिक्स इतनी बड़ी मानवता का इतना बड़ा हिस्सा को कवर करता है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी भी हम जो सिस्टम और प्लेटफॉर्म में डिपेंड करते हैं वो यूरोप अमेरिकन सेंट्रिक है. तो वहां से थोड़ा सा अगर एक कुछ हमें अल्टरनेटिव विकल्प और मिल जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम अपने स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस जो है उसको मेंटेन करके पॉलिसी पोजिशन और इजिली हम ले सकते हैं.
3: आगे बढ़ते हैं. एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में आज 1.4% की बढ़त रही, जबकि जापान का निकेई 225.02% गिरकर बंद हुआ. उदिन जी, अभी अगर हम बात करें चाइना की इन्फ्लेशन की, तो लगभग 3.8% टू 3.5% तक की बात हो रही है आगे बढ़ने की. किस तरह के हालात हैं, मतलब 3.5% से 3.8% तक जाने के जो हालात है, इनका क्या असर देखने को मिलेगा?
2: देखिए ये उनका कंज्यूमर के हिसाब से और प्रोड्यूसर के हिसाब से अलग अलग चल रहा है। कंज्यूमर में लोगों की आर्ग्यूमेंट है कि उनका भी, उनके भी डोमेस्टिक डिमांड चैलेंजेस हैं कुछ कुछ इलाकों में, जो उनके भी जो यूथ जनरेट हो रहा है, यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, वो उनकी आकांक्षाओं के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो वर्ल्ड ओवर ये एक चैलेंज है। कई लोगों का आर्ग्यूमेंट, मतलब कॉन्वर्सेशन में होता है, ऐसा लगता है कि जैसे भारत को ही ये चैलेंज है। ये चैलेंज हर जगह है और सरकारें अपने हिसाब से वो डील कर रही है। तो डोमेस्टिक में जो आप अगर उनका रिटेल देखेंगे, मेरा हंच ये है कि वहां पर आपको इतना ज्यादा नहीं दिखेगा। ये कुछ और इनपुट कॉस्ट है उसके वजह से हुआ होगा, या कुछ और इश्यूज हैं उन जिनके वजह से हुआ होगा। अगर आप चाइनीज इकोनॉमी को देखें, वो बहुत दिलचस्प सिचुएशन, दिलचस्प मतलब हमारे लिए, अगर हम वहां रह रहे होते वो उतना दिलचस्प नहीं होता। वो ये है कि उनके एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं, पर उनका डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक इंटरनल जो डायनेमिक्स है, वो उसका जो अगर हेल्थ चेकअप लेंगे वो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो उनके, क्योंकि उनके एक्सपोर्ट्स एक्सेस कैपेसिटी है, दूसरी जगह में उन्होंने एक्सपोर्ट किया, हर जगह में उन्होंने उनका ट्रेड बैलेंस उनकी तरफ और मूव कर गया, क्योंकि वो यूएस से हटके दूसरी जगह कर रहे हैं, वो वहां पे ब्रिलियंट कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारे देश में और दूसरे देशों में वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, पर आपको जो पिक्चर है वो संतुलित एक बैलेंस्ड वे में देखना पड़ेगा। तो इंटरनल डिमांड का वहां पर चैलेंज है। तो ये जो प्रोड्यूसर प्राइसेस, मेरे को ताज्जुब नहीं होगा कि अगर इनपुट प्राइसेस जो उनके पास पहुंची है, ऑल्दो वो सोर्सिंग बहुत अच्छा करते हैं, मेटल्स वगैरह जो है वो सीधे अफ्रीका, इंडोनेशिया जहां से सोर्स है, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चेन बना, सप्लाई चेन बना रखे हैं, पर फिर भी इसका इम्पैक्ट जरूर हो रहा होगा।
3: भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य आज समाचार तैयार किए जाने तक 0.3% की बढ़त के साथ 1,53,486 रूपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, और चांदी 0.6% बढ़कर 2,35,249 रूपये प्रति किलोग्राम पर थी। उनके इस वक्त निवेशकों को कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, निवेश करने की या सब्र करने की या थोड़ा बढ़ाने की?
2: नॉर्मल काम करने के, कुछ स्पेशल नहीं करना। निवेश जब आप करते हैं वो बोरिंग होना चाहिए, एक्सरसाइज की तो डेली एक्सरसाइज जो करते हैं, हर रोज आप नया एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वही प्राणायाम करेंगे, जो वही जो भी आसन करते हैं, जो भी जिम में जाते हैं, तो जो रेगुलरली करते हैं वही कीजिए, और बोरिंग चीजें करेंगे तो ब्रिलियंट रिजल्ट मिलेंगे।
0: सो समटाइम्स डूइंग नथिंग यू कैन ऑल्सो बी अ स्ट्रेटजी।
2: एब्सोल्युटली।
0: ऑलराइट फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बिफोर दैट, यस, थैंक यू वेरी मच उदयन फॉर ज्वाइनिंग अस एट आकाशवाणी एंड giving us an insight into the markets. All right, the headlines now. Benchmark domestic indices decline around 1%. Sensex plunges over 800 points. Nifty settles below 23,450. Global crude oil prices surge. Brent crude crosses $100 per barrel mark. And Union Cabinet approves multi-tracking railway projects across 9 states. And that's all, friends, we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Nikhil Kumar, signing off. So, namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
6: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 10:30 हो चुके हैं। पेश है आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामील इरशाद। सामईन की खिदमत में मेजबान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। आप हमारी नशरियात समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए और DD फ्री डिश पर। भेज दीजिए अपनी फरमाइश हमें लिखकर, हमारा ईमेल आईडी है उर्दू सर्विस ESD@gmail.com। हाजिर इस प्रोग्राम की पहली पेशकश आप सबकी नजर।

कामयाबी आप सुन रहे थे आर पार फिल्म से ये नगमा शमशाद बेगम की आवाज में, जिसके मौसीकार थे ओपी नैयर और नगमानिगार थे मजरू सुल्तानपुरी। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश ताजमहल फिल्म से, जिसको सुना चाहे अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और भव्या कुमारी ने मधुबनी बिहार से, और सुनने की ख्वाहिश में है हाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और दीपक जायसवाल। सुनना चाहते हैं इंतजार अंजुम आलामारा जाफरगंज जहानाबाद बिहार से, और सुभाष योगी, राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू हांसी से सुनना चाहते हैं, और राम दुला

प्रजापति और रामशरण प्रजापति सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ से, और सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं क्या साहू, आकाश, कमलेश, गुगललाल रजक भाटापारा छत्तीसगढ़ से, नंद कुमार सिंह, अनिकित कुमार सिंह और संदीप कुमार सिंह सुनना चाहते हैं बिहार से।

राम वैष्णव ने कहा कि काबीना ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 अजला का अहाता करने वाले 5 तौसीली प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में तकरीबन 540 किलोमीटर का इजाफा होगा। इन 5 प्रोजेक्टों की कुल तखमीना लागत 10,021 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 2029-30 तक इनका काम मुकम्मल होने का इम्कान है। मंजूरशुदा तौसीही प्रोजेक्टों से तकरीबन 2,100 गांवों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिनकी मजमूई आबादी तकरीबन 52 लाख है। जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल तखमीना लागत के रेलवे के 3 तौसीही प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट मगरबी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 अजला का अहाता करेंगे और रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में तकरीबन 656 किलोमीटर का इजाफा होगा। इन तौसीही प्रोजेक्टों से रेल खिदमात के मौसर होने और मसरूफ रास्तों पर भीड़ भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। वजीर मौसूफ ने मजीद मुतला किया कि हुकूमत ने ज्यादा भीड़ भाड़ वाले सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन या उससे भी ज्यादा करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर ये रूट रेलवे नेटवर्क के तकरीबन 11,000 किलोमीटर का अहाता करते हैं। नए मंजूर करदा प्रोजेक्ट ज्यादा भीड़भाड़ वाले रेलवे नेटवर्क पर सलाहियत को बढ़ाने और रेल खिदमात की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाने की हुकूमत की कोशिशों का हिस्सा हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर एक सवाल के जवाब में इत्तलात नशरियात के वजीर ने मुतला किया कि बुलेट ट्रेन खिदमात का आइंदा बरस आगाज होगा। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर पर तामीराती काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और शुरुआत में गुजरात में सूरत से वापी तक 100 किलोमीटर के हिस्से पर खिदमात दस्तियाब होंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना के आज के फैसले मुसाफिरों की तेज नकल व हरकत, मुस्तहकम कनेक्टिविटी और इजाफी माल बरदार सलाहियत को यकीनी बनाते हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इससे खासतौर से विरासती मकामात और जंगलाती जिंदगी से मुतालिक सियाहत को फरोग हासिल होगा और लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आएगी। नई दिल्ली में इस हफ्ते होने वाले ब्रिक्स लीडर्स समिट से पहले मुंबई में ब्रिक्स वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की आखिरी मीटिंग हो रही है। इस साल ब्रिक्स के मालियाती मामलों का मौजू है लचक, जिद्दतराजी, इश्तराक और पायदारी की तामीर। इससे पहले गुज़िश्ता महीने जयपुर में वज़राए खजाना और गवर्नरों की मुलाकात हुई थी। मुंबई में होने वाली आखिरी मीटिंग से पहले खजाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक के कलीदी नतीज का जायजा लिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर रुखी शराकत दारी के वसी तर पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान तरफैन ने खित्ते में सलामती, सिक्योरिटी, अमन और खुशहाली को यकीनी बनाने की खातिर मिलकर काम करने के साथ साथ दोनों मुल्कों के तरक्याती कामों के सिलसिले में इश्तराक के अपने अहद का भी इरादा किया। दोनों ममालिक ने श्रीलंका की फजाइया के लिए L-70 तोपों को बेहतर बनाने और दोनों मुल्कों के नेशनल कैडेट कोर और नेशनल डिफेंस कॉलेजों के दरमियान इश्तराक के सिलसिले में मफाहमतनामों का भी तबादला किया। मीटिंग के दौरान सदर दिसानायके ने यह बात दोहराई कि श्रीलंका कभी भी अपनी सरजमीन को ऐसी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा जिनसे भारत के सिक्योरिटी मफादात को खतरा लाहक हो। जनाब राजनाथ सिंह ने श्रीलंका के वजीर आजम हरिनी अमारासूरिया से भी मुलाकात की और भारत और श्रीलंका के दरमियान तरक्याती इश्तराक, तालीम और करीबी सकाफती और तहजीबी राबतों से मुतालिक मामलात पर नजरियात का तबादला किया। कॉमर्स और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में थाईलैंड के नायब वजीर आजम और कॉमर्स के वजीर सुभाजी सुथुमपुन से मुलाकात की। कॉमर्स और सनअत की वजारत ने कहा है कि दोनों वज़रा ने भारत और थाईलैंड के दरमियान इक्तिसादी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जिसमें बाहमी तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा करने, कारोबारी इम्कानात में वसअत पैदा करने और दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबार से कारोबार के राबते मजबूत करने पर तवज्जो

मालवीय और अनमोल मालवीय श्लोक। गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी छत्तीसगढ़ से सुनना चाहते हैं, और अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम और रुबीना वसीम सीतामढ़ी बिहार से सुनना चाहते हैं। लखनऊ से सुनने के ख्वाहिशमंद है रानी मुकेश गुप्ता, नीलम लक्ष्मी गुप्ता और रूपा इलाहाबादी, और मधुबनी बिहार से सुनना चाहते हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता। अनिल मोहन, उषा मोहन और टेलो नायक डांडा से सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद है एफएम जावेद शगुफ्ता अंजुम कुमला झारखंड से। मोहम्मद करीम जख्मी ने जय गुमनाज और बेबी फातिमा शेख रेलवे रोड गंजनवाड़ा से सुनना चाहते हैं।

हमें अभी आप सुन रहे थे गीता रॉय की आवाज में नगमा दो भाई फिल्म से। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश यानी कि आखिरी पेशकश मदर इंडिया फिल्म से मनडे की आवाज में, जिसको सुना चाह है डॉक्टर वंदना कुमार नीलू मेघ नीलम ने राजधानी रायपुर से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम, मरियम जैनब, कस्बा बिलराम से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं विनोद बंडालकर, वीना बंडालकर, विविधा बंडालकर छत्तीसगढ़ से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सुरेंद्र संधू, अनीता संधू नवाज शहर से।

0: साहब आप सुन रहे थे प्रोग्राम तामीले इरशाद मोहम्मद शाहरुख के साथ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 11:30 हो चुके हैं, यानी कि 31 मिनट भी होने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व और मध्य रेलवे विभाग के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और आकाश

0: आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: ललित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जिक्र करते हुए कहा कि रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर करीब 11,000 किलोमीटर लंबे हैं। इनमें 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर भी शामिल हैं। इन कॉरिडोरों को चौगना और 4 लाइन बनाने के साथ कई अन्य कॉरिडोर पर भी काम किया जा रहा है।
2: रेलवे के जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है 11,000 किलोमीटर के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर, उनको अगर हम देखें, जैसे आप कल्पना करो, श्रद्धेय अटल जी ने स्वर्ण चतुर्भुज बनाया था हाईवे का, वैसा ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, उन सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
1: ललित जी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय लिए गए हैं, इनमें अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं पर करीब 20,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इस तरह की जो परियोजनाएं हैं और इतना धन खर्च किया जाता है, आपको क्या लगता है कि किस तरह के बदलाव करने के प्रयास किए जा रहे हैं रेलवे के नेटवर्क में, कैसे परिवर्तन हमें आगे चलकर देखने को मिलेंगे?
3: ये आज जो अनाउंसमेंट हुआ है कैबिनेट के निर्णय के बाद, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का एक ये बड़ा अहम हिस्सा है। इस बार का जो ये अनाउंसमेंट हुआ है, इसकी खास बात यह है कि इसमें दक्षिण भारत के राज्यों को ऊपर केंद्रित है, क्योंकि इस बीच में वहां पर कई ऑटोमोबाइल हब आ गए हैं, तिरुपति जैसे मंदिर बने हुए हैं, कई कोलार माइंस और कई जगह टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, और पूरा दक्षिण भारतीय क्षेत्र बहुत तेजी से औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में यहां पर ये जो हमारे रेलवे के ट्रैक थे उसमें कंजेशन की समस्या बहुत आ रही थी। इस बार एक अच्छा काम कैबिनेट ने यह किया है कि इसके टारगेट डेट भी अभी से निर्धारित कर दी गई है। अधिकतर शुरुआत की डेट दी जाती थी, टारगेट डेट नहीं दी जाती थी। इस बार कैबिनेट ने एक टारगेट डेट भी दी है 29-30 की, और जो एक मेरा आकलन है करीब 2,121 गांव
1: जी
3: और 17 जिले इससे लाभान्वित होंगे, और करीब 47 मिलियन टन हम ज्यादा माल का दोहन कर सकेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो एक रेलवे की खासियत है, रेलवे से जब कोई माल ढोया जाता है तो उसमें रोड के कंपेरिजन में सड़क मार्ग के तुलना में 1/8 हमारा एनर्जी खर्च होती है। तो इससे एक आकलन ये भी है कि करीब 8 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी, और जो एक पॉल्यूशन होता है उसको एक CO2 में नापा जाता है, आजकल का स्केल है, तो 42 करोड़ KG कम हम पर्यावरण में CO2 छोड़ेंगे।
1: जी ललित जी, अभी आपने कंजेशन की बात की थी, तो करीब 1,196 किलोमीटर नए ट्रैक जुड़ेंगे जिससे रेलवे लाइन की क्षमता बढ़ेगी, और जाहिर सी बात है इसका सीधा फायदा यात्रियों और मालगाड़ियों के संचालन को मिलेगा। और आपने एक बात बोली कि 2029-30 तक की टाइमलाइन निर्धारित की गई है जब ये सारी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि इससे यात्री अनुभव और माल ढुलाई में किस तरह के परिवर्तन आगे चलकर हमारे सामने होंगे?
3: देखिए निखिल जी, इसमें अगर मैं बात करूं तो इस पूरा जो 540 किलोमीटर है इसके 5 हिस्से हैं। एक जैसे है अराकोनम से रेनुगुंटा, ये जगह ऐसी है जहां पर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति लोकेटेड है
1: जी।
3: और वहीं पर हमारे कई सारी इंडस्ट्रीज भी लोकेटेड है। जैसे अराकोनम से रेनुगुंटा की जो 77 किलोमीटर लंबी लाइन है, इससे जो यात्री लोग ज्यादा ट्रेनें तिरुपति मंदिर के लिए चाहते हैं, और साउथ और वहां पर एक ऑटोमोबाइल का भी बहुत बड़ा हब है, श्री सेंटर करके एक जगह है नजदीक में चेन्नई के उत्तर में, तो उन सभी जगहों को यातायात की सुविधा और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फिर ये दूसरा इन्होंने एक व्हाइट फील्ड टू बंगारपेट 4th लाइन है
1: जी।
3: अभी इस बीच में क्या हो गया, बेंगलोर से चेन्नई के बीच में भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो इसमें जो बेंगलोर से जो चेन्नई की तरफ ट्रैफिक जाएगा, तमिलनाडु की तरफ ट्रैफिक जाएगा, उसमें ये बहुत बड़ा कैपेसिटी क्रिएशन हुआ है, एक नई क्षमता बढ़ी है ज्यादा ट्रेनें ले जाने की। फिर एक होसूर से ओमालूर डबलिंग है, ये 147 किलोमीटर का है, ये हमारी बेंगलोर होसूर सलेम एक्सिस, आप समझिए पूरा मैन्युफैक्चरिंग का हब है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स, कंटेनर्स, इंडस्ट्रियल ट्रैफिक और काफी सारी जो हमारे औद्योगिक जगत की इकाइयां हैं यहाँ पर स्थित हैं। उन सबको मुश्किल आ रही थी कि वो ट्रेन से माल भेज नहीं पा रहे थे, और ट्रेन से माल भेजने से माल की लागत बहुत कम हो जाती है। इस बेंगलोर होसूर सलेम एक्सिस में जितने भी हमारी औद्योगिक इकाइयां हैं उनको अपनी भार वहन क्षमता में जो उनकी पैसा लगता था उसमें बहुत कमी महसूस होगी।
1: ललित जी, आपने जैसे यहाँ पर बताया कि माल ढुलाई की आपने बात की है, तो हमने देखा कि इन रूटों पर कोयला, सीमेंट, स्टील, खाद्यान्न और पेट्रोलियम उत्पादों की अधिकतम ढुलाई की जाती है, तो जो अब नई क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं, इससे उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचने और तैयार उत्पाद आम लोगों तक पहुंचाने में कितनी मदद मिलेगी?
3: इसमें जो अभी आकलन है कि करीब 47 मिलियन टन हम ज्यादा माल भेज पाएंगे। और एक बात और होती है, माल वाहन के अलावा हमारे देश की समस्या है कि वो मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन एक ही ट्रेन में चलती है, एक ही ट्रैक है, तो उसी से हमको मालगाड़ी भी चलानी पड़ती है, उसी से हमें पैसेंजर ट्रेन भी चलानी पड़ती है। तो इसकी वजह से हम लोग, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग होती है, मालगाड़ी 40-50 किलोमीटर पर चलती है और मेल एक्सप्रेस ट्रेन 110 किलोमीटर पर चलती है, दो डिफरेंट गति की ट्रेनें एक ही रूट से चलाई जाती है, तो हम लोग उसका दोहन नहीं कर पाते हैं। जब मल्टी ट्रैकिंग हो जाएगी, थर्ड और फोर्थ ट्रैक हो जाएगा, तो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस वाली लाइन से मालगाड़ियां चलेंगी और इस वाली लाइन से मेल एक्सप्रेस कोचिंग ट्रेन चलेंगी, तो उससे हम ज्यादा दोहन कर सकते हैं अपनी आधारभूत क्षमताओं का। और दूसरा ये कि मेंटेनेंस के लिए, हमको आज की तारीख में इतना ज्यादा ट्रेन चलती थी कि मेंटेनेंस के लिए टाइम नहीं मिलता, तो उसमें मेंटेनेंस भी हम ट्रैक की अच्छे से कर सकेंगे, जिससे कि हमारी सुरक्षा को भी एक नया आयाम मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है, आपने देखा होगा कई जगहों में, कई सेक्शन में, आपने रोड में भी देखा होगा कि ट्रैफिक ऐसा होता है कि सुबह एक तरफ जाता है, शाम को एक तरफ आता है, तो इक्वल नहीं रहता। हमारी मल्टी ट्रैकिंग होती है, तो हम ये कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में ज्यादा ट्रैफिक है उसमें तीन लाइन खोल दी, जिसमें कम ट्रैफिक है उसमें कम लाइन करी, तो उससे ट्रैफिक की बैलेंसिंग करने में भी हमें बहुत सुविधा मिलती है।
1: ये जो परियोजनाएं अब यहां से शुरू की जा रही हैं, तो देखा ये भी जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटक स्थल जो हैं वहां तक बेहतर रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो इसका फर्क इन बातों में भी पड़ेगा कि पर्यटन बेहतर होगा, स्थानीय कारोबार को मौके मिलेंगे और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
3: इसमें देखिए कई तरह से फायदे होते हैं। पहले तो पंक्चुअलिटी जो ट्रेन की होती है, अभी क्या अगर मान लो बड़ा सघन ट्रैफिक चल रहा है किसी सेक्शन में, तो उसमें आप चाहे ना चाहे ट्रेनें अपने टाइम से चल नहीं पाती, इसलिए नहीं कि वो चल नहीं सकती ज्यादा स्पीड से, क्योंकि उनको चलने के लिए जगह ही नहीं मिलती। तो अब इससे पंक्चुअलिटी में सुधार होगा, ट्रेनें समय पर चलेंगी और टाइम टेबल में एडिशनल ट्रेन का प्लानिंग कर सकते हैं। और फिर मान लो जी कुछ गड़बड़ हो भी जाती है कभी ट्रैक में, कभी कुछ विघ्न बाधा आ जाती है, कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, कभी कोई कैटल ट्रैक के ऊपर आ जाता है, कभी कोई बोल्डर आ जाता है, कई तरह की बाधाएं आती हैं, उसमें ट्रैफिक एकदम थम सा जाता है। अगर आपके पास एडिशनल कैपेसिटी होगी तो वो एक कुशन की तरह काम करती है और आपको बाधाओं के होने के बावजूद समयबद्ध तरीके से आपकी मेल एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ियां अपेक्षित स्थान तक पहुंच जाती हैं।
1: ललित जी, अभी सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि ट्रेनों की समयबद्धता में अधिकतम सुधार हो, ट्रेन संचालन बेहतर हो, सफाई की जो बात है वो बेहतर हो और यात्रियों को जो अनुभव है उसको और ज्यादा अच्छा करने का प्रयास किया जाए। तो मौजूदा परियोजनाएं जो रेलवे के लिए शुरू की जा रही है, आपको लगता है कि जो हमारा बढ़ता हुआ रेलवे का ट्रैफिक है उसमें ये काफी मददगार साबित होगा?
3: बिल्कुल अवश्य, चाहे समयबद्धता हो, चाहे संरक्षा हो, चाहे साफ सफाई हो, ट्रेन की साफ सफाई के लिए भी टाइम चाहिए। अगर आपको एक टाइम देना है जिससे कि आपके पास टर्मिनल्स में ज्यादा समय मेंटेनेंस के लिए, साफ सफाई के लिए हो और यात्री के अनुभव में बढ़ोतरी हो, और आज की तारीख में सबसे ज्यादा यात्री को आवश्यकता होती है उसकी ट्रेन समय से चले और समय से गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, रस्ते में जहां पर उसको पानी भरना है ट्रेन में पानी भरे, जिससे कि उसको रस्ते में पानी की कोई समस्या न हो, और जो कैटरिंग हॉल्स होते हैं जहां पर को समय पे खाना देना है, अगर जिस जगह पे खाना लोड होता है ट्रेन में उस जगह पे ट्रेन को सही टाइम पर पहुंचना जरूरी होता है। जब एक कैपेसिटी इन्हांसमेंट होता है तो वो सब फायदे हो जाते हैं और इन सभी चीजों की आपूर्ति कर पाते हैं। और जिस एरिया में ये हो रहा है, दक्षिण भारत के, उसमें करीब 52 लाख लोग रहते हैं, तो उन 52 लाख और जो 121 गांव है उनको तो डायरेक्ट इसका फायदा मिलेगा। उनको न सिर्फ ये फायदे मिलेंगे बल्कि ये जो हम नया कंस्ट्रक्शन होगा, जॉब के अवसर बढ़ेंगे, कई ठेके दिए जाएंगे इसमें टी के, ट्रैक के, स्लीपर के, सिग्नलिंग के, तो इससे पूरी जो एक इकोनॉमिक गतिविधि होती है जो वहां की, उन लोगों के जीवन स्तर में भी फर्क आएगा, क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ेगी। कंस्ट्रक्शन के दौरान ही काफी सारे चीजें ऐसी होती हैं जिससे कि आम जनता को डायरेक्ट फायदा पहुंचता है।
1: बिल्कुल, अभी अगर दो बातें हम एक साथ लेकर के चलें, पहली ये कि आज रेलवे से करोड़ों लोग ट्रेवल करते हैं, अपनी यात्रा पूरी करते हैं, हजारों गांवों के लोग उनसे यात्रा करते हैं, शहरों के लोग यात्रा करते हैं, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के जो लोग होते हैं प्रेफर करते हैं कि रेलवे से ही अपनी यात्रा को पूरी कर सकें। वहीं दूसरी ओर पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है, अगर दोनों को समन्वय करके हम देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि बीते कुछ वर्षों में या एक दशक की हम बात करें, किस तरह से बदलाव हम देख पा रहे हैं रेलवे में?
3: रेलवे में सबसे बड़ा बदलाव, मैंने तो काफी पूरी अपनी लाइफ टाइम रेलवे में ही निकाला है, तो जो सबसे बड़ा बदलाव मैंने पिछले एक दशक में देखा एक तो इस पीरियड में फंड की जो होती है, जो निधि उपलब्धता होती है, अब इंजीनियर्स लोग प्रोजेक्ट्स को तभी बढ़ा पाएंगे जब उसके लिए पैसा हो।
1: बिल्कुल।
3: तो इस पूरे पीरियड में पैसे के, जैसे बोलते हैं, नल खोल दिया है, खासकर रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उसमें हमने ये पाया कि अब कोई भी प्रोजेक्ट रेलवे का जो महत्वपूर्ण होता है वो इसलिए नहीं रुकता क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं है। दूसरा, ये

0: कई सारे आदेश जारी किए गए जिससे कि जो फील्ड का जो ऑफिसर्स हैं जमीनी स्तर पर काम करते हैं उनकी डीआरएम्स की जीएम्स की पावर बहुत बढ़ा दी गई है। जैसे कई डिसीजन जिसके लिए पहले हर बार रेलवे बोर्ड जाना पड़ता था, दिल्ली में रेल मंत्रालय जाना पड़ता था, एक बहुत बड़ा तबका रेलवे का महकमा दिल्ली और अपने क्षेत्र के बीच में यात्राओं फाइलों को घुमाने में लगा रहता था, अब वो सब खत्म हो गया है
1: जी।
0: अब आपको जिन निर्णयों के लिए आपको दिल्ली आना पड़ता था वो आप चेन्नई में ले सकते हैं, गुवाहाटी में ले सकते हैं, अहमदाबाद में ले सकते हैं। दिल्ली की तरफ से बस एक ही दबाव रहता है जो भी प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए उनको जल्दी खत्म किया जाए
1: जी। जिस तरह से आपने बताया कि ये सारी चीजें हो रही हैं, इसके अलावा सरकार इस बात पर भी पूरा ध्यान दे रही है कि यात्रियों को नई ट्रेनों में यात्रा करने का मौका मिले, नई नई ट्रेनें लाई जा रही हैं, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन हो, रैपिड रेल की हम बात करते हैं, या फिर इससे भी कहीं आगे जाने की भी बातें हो रही हैं। जहां एक और पहले इंजन बनाना और रेलवे कोच बनाना बहुत बड़ा काम माना जाता है, आज वो काम आसानी से किया जा रहा है। वहीं एक चीज ये भी है कि सरकार का पूरा फोकस इस बात पर भी है कि माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाया जाए। तो मैं आपसे ललित जी ये पूछना चाहूंगा कि रेलवे के फिट बिजनेस का क्या महत्व है, खासतौर पर इकोनॉमी के लिए, और वस्तुओं की ढुलाई से जो पैसा आता है रेलवे उसको इस्तेमाल करता है उन सारी चीजों को ठीक करने में।
0: आपने बिल्कुल सही बोला, हमें जो पैसा मिलता है वो माल की ढुलाई से ही मिलता है और उसके लिए सबसे जरूरी है रोलिंग स्टॉक जिसे बोलते हैं वैगन
1: जी,
0: इंजिन्स और कोचेस, ये हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। अब आपको बताता हूँ, आज से कुछ साल पहले तक, एक दशक पहले तक पूरे देश में 400-500 इंजिन्स का प्रतिवर्ष निर्माण होता था, आज हम लोग करीब 1500 इंजिन हर साल बना रहे हैं। और ये जो इंजन बना रहे हैं इनकी जो क्षमता है, इनकी हॉर्स पावर जो है पुराने जमाने के इंजनों से बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे देश की यह रही है, जिसका कि अभी जो पश्चिम एशिया में तेल का संकट आया उसका पता चला है कि हमारे देश में पूरा संपूर्ण 70,000 के लगभग जो हमारा रूट किलोमीटर है, पूरा ब्रॉडगेज का जो नेटवर्क है वो पहाड़ी जो हिल स्टेशन की चेन छोड़ दीजिए उनको छोड़ के, जहां से माल यातायात वाहन होता है वो पूरा इलेक्ट्रीफाइड है
1: जी।
0: तो हमें अपना माल एक जगह से, और जो बिजली बनती है हमारे देश में तो कोयला जला के बनती है, कोयले का उत्पादन हमारे देश में ही होता है। तो आज रेलवे का ट्रांसपोर्ट वेस्ट एशिया या विश्व की किसी भी जगह की तेल के आपूर्ति पर निर्भर नहीं है, और तेल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी हो रेलवे अपनी उसी गति से चलती रहेगी, क्योंकि हम लोग ट्रेन चलाते हैं बिजली से, तो ये एक बहुत बड़ा उपाय है। दूसरा, ट्रेनों की लंबाई, हमने अब जो इंजन अधिक गति से ट्रेन चलाने के लिए हमें पावरफुल इंजन की जरूरत होती है। अभी जो आपके मधेपुरा में हमारे WAG-12 इंजन बन रहे हैं उसमें एक इंजन की पावर 12,000 हॉर्स पावर है
1: जी।
0: जो अभी सीमेंस को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गुजरात के दाहोद में उसका निर्माण होगा वो तो उससे ही पावरफुल है, उसमें उतनी जगह में ट्विन इंजन अगर करें तो उसका 18,000 हॉर्स पावर निकलेगा, क्योंकि उसमें मधेपुरा का ट्विन इंजन है, यहाँ का सिंगल इंजन है। तो यहाँ पे भी दो इंजन लगा दो, यहाँ का एक एक इंजन 9,000 हॉर्स पावर का है, जो कि समूचे विश्व में उतनी कैपेसिटी का हॉर्स पावर का इंजन है ही नहीं
1: जी। ललित जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे पूर्व और मध्य रेलवे विभाग के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
3: आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए सुनते हैं असलम साबरी कव्वाल और साथियों की आवाज में कव्वालियां।

सामने भी आप सुन रहे थे अनारकली फिल्म से नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी चितलगा रामचंद्र ने और बोल थे राजेंद्र किशन के। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम की अगली पेशकश सीमा फिल्म से।

साथियों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे और लीजिए एक और खूबसूरत गीत आपके लिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। इनका नाम प्यार की दास्तान।

यह जुमरू फिल्म का ये गीत आपके लिए, किशोर कुमार के लिए।

बातियां आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में गीत। और लीजिए अब आपके लिए ला रहे हैं माया फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

0: सब तो है दिल को समझाना,
1: हम सब तो है दिल को समझाना,
0: ये मस्जिद है वो बुतखाना, मकसद तो है दिल को समझाना समझाना समझाना।

0: सदियों गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गीत सुनहरे यही होता है संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके ओडिशा में 400 गुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे 4th लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रूपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाले बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व विकास सम्मेलन में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास और अवसरों को बढ़ाने के लिए ऋण, बाजार और व्यापार के स्पष्ट नियमों तक आसानी पहुंच की आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ शिक्षा, कौशल और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से उन्हें देश के विकास का वाहक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास

एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। दूतावास ने कहा कि यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले आधिकारिक आव्रजन वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के बगैर प्रतिबंधित क्षेत्र में आएंगे तो उन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहब्बी ने कहा कि जो जहाज बिना इजाजत के इस क्षेत्र में आएंगे उन्हें बाद में हॉर्मूज जल डमरू मध्य का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है और उन्हें बंदरगाह बीमा और दूसरी सेवाएं देने से मना किया जा सकता है। यह चेतावनी ईरान के तेल टैंकरों पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के बाद आई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए इनकी निंदा की और संयुक्त राष्ट्र तथा सुरक्षा परिषद से कार्रवाई करने की अपील की। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया है। भारत ने 4 स्वर्ण 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार आकाशवाणी दिल्ली का। ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 3 बजने वाले हैं कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में 400 घोड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक की वापसी का भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक कन्वर्जेंस आधारित प्रणाली के माध्यम से काम करती है, जिसके तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों को तय समय सीमा के भीतर समाधान के लिए संबंधित कंपनियों को डिजिटल रूप से भेज दिया जाता है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने पिछले 10 दिनों में देश में अलग अलग जगहों पर 6 बड़ी कार्रवाई की। इन छापेमारी में 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित इंडियन स्टार कछुए, 12 जिंदा टोके गेको, एक तरह की छिपकली, लगभग 24 किलोग्राम पैंगोलिन के शल्क और करीब 500 ग्राम बाघ की हड्डियां जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन ऑपरेशनों के सिलसिले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। DRI के अनुसार जब्त की गई ये अलग अलग चीजें संरक्षित वन्य जीवों की तस्करी को उजागर करती हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया है कि टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे आयोजन में

अभी ना जाओ के रात बाकी है। नीलू शर्मा की आवाज में आपने सुनी ये बेहद प्यारी गजल।

और गजल गीत का कार्यक्रम मीलू शर्मा की इस गजल के साथ संपन्न होता है। श्रोताओं, प्रातः के 4 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए आप सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में कर्नाटक संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे रघुरमन जी का बांसुरी वादन, राग मध्यमवती में। तो आइए सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम बांसुरी वादन प्रस्तुति जी रघु रमन जी की।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 19वीं तिथि। तदनुसार 10 सितंबर सन 2026। श्रोताओं, सुबह के 4:54 और ठीक 30 सेकंड हुए हैं। हम इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

श्रोताओं, यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। हम इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी आपको दे दें। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे 5 बजे हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार। बजकर 10 मिनट का समय रहेगा आओ योग करें कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज आप जानेंगे दीर्घ श्वास प्रेक्षा और आसन के बारे में। 5:20 पर देशभक्ति गीत आप सुन सकते हैं और स्वर रंजनी कार्यक्रम भारतीय सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आप आज सुनेंगे उस्ताद अहमद रजा द्वारा प्रस्तुत राग आहिर तौड़ी। उनकी प्रस्तुति विचित्र वीणा स्वर में होगी। समय रहेगा 5:30। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी 6:00 हिंदी समाचारों के साथ। 6:05 का समय अंग्रेजी समाचारों का है। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर चिंतन कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें आप सुनेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी के विचारों पर चिंतन। 6:40 का समय रामचरितमानस से अयोध्या कांड भाग 44 का है। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ये थी संक्षिप्त जानकारी। प्रातः के 5 बजने को है खुशी पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: अमृत छाड़ भिख खाई माया मोह परम पैपुले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संगत ते है मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखु सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखु सरनाई
1: सो कहौ टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाई दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाई होवै सिफत खसम्मदी

बाल जनम जनम दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठे आसोहिया सब नादा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठे आसोहिया सब नादा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।

बिन सतगुर सेवे जीय के बंदना विच हौ मैं कर्म कमाहे बिन सतगुर सेवे ठौर न पावही मर जम्मह आवह जाहे बिन सतगुर सेवे जीय के बंदना विच हौ मैं कर्म कमाहे बिन सतगुर सेवे ठौर न पावही मर जम्मह आवह जाहे बिन सतगुर सेवे फिक्का बोलना नाम न वसै मन आए नाम न वसै मन माहे नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर

नानक साई भली परीत जित साहेब सेते पत रहै।

जिन सेविया तिन फल पाया, तिस जन की सब भुख।

ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ।

0: नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया
1: सुनो पाला पहला नानक में शरीर का एक रथ कृष्वा हो जुग जुग फेर बताइए ज्ञानी पूजता है साधू रस दो का चरम गिरसवा हो तेरे तेरा जते का जोर गिरसवा हो द्वापुर तपे का सत गिरसवा हो तर जुग रथ गिन का पूरा कह रुतवा हो
0: पहला शाम कहे संभ स्वामी।

कपड़े पहरे पठानी अमल किया।

0: ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰਨਾਲੇ
1: ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ